印度德里广播电台听众朋友们，现在我们播送阿贝达·巴云唱的一首歌曲。

सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगीं। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचान कर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगीं कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी।

This ini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Penyiar Anda Mandira Kumari beserta dengan seluruh awak Saksi Bahasa Indonesia dari studio di sini di Ibu Kota India, New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa cara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari berita penting, Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan bahwa kemampuan maritim yang kuat merupakan kunci bagi pengaruh ekonomi dan strategis negara. Dia meresmikan 3 kapal perang Angkatan Laut buatan dalam negeri di Kolkata. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat di seluruh dunia karena telah menjadikan Hari Yoga International tahun 2026 sebagai perayaan global. Pembicaraan sedang berlangsung di Swiss antara Amerika Serikat dan Iran untuk memperkuat perjanjian sementara dan mengkonsolidasikan upaya mengakhiri konflik di Asia Barat. India akan menjadi tuan rumah pertemuan 2 hari para penasihat keamanan nasional BRICS di New Delhi mulai hari ini. Tim hoki wanita India menjuarai Piala FIH Nations setelah mengalahkan tuan rumah Selandia Baru 2-0 di final. Dalam kriket, India menjuarai seri Tri Nation A setelah mengalahkan tuan rumah Sri Lanka dengan selisih 66 run di final. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi menekankan pentingnya kekuatan maritim di dunia modern dengan menegaskan bahwa kemampuan maritim yang kuat merupakan faktor penentu pengaruh ekonomi dan strategis suatu negara. Dia menyatakan bahwa India sepenuhnya memahami realitas ini dan sedang mempersiapkan diri sesuai dengan itu. Perdana Menteri meresmikan 3 kapal Angkatan Laut yang dirancang dan dibangun di dalam negeri, yaitu Fregat Solomon Canggi, INS Dunagiri, kapal survei besar INS Sansodhak, dan kapal perang anti kapal selama perairan dangkal INS Agra di Pelabuhan Syama Prasad Mukherjee di Kolkata kemarin. Perdana Menteri Narendra Modi mencatat bahwa lebih dari 200 UMKM berkontribusi dalam pembangunannya yang menghasilkan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi yang signifikan di seluruh negeri. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat di seluruh dunia karena telah menjadikan Hari Yoga International tahun 2026 sebagai perayaan global. Dalam unggahan di media sosial, Perdana Menteri mengatakan bahwa sangat menggembirakan melihat yoga menyatukan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat dan berbagai negara dalam upaya bersama untuk mencapai kesejahteraan dan kesehatan yang baik. Dia berharap hari tersebut akan menginspirasi lebih banyak orang untuk menjadikan yoga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka di masa mendatang. India akan menjadi tuan rumah pertemuan Menteri Energi BRICS ke-11 di Gurugram, Haryana pada tanggal 25 dan 26 bulan ini di bawah kekuatan BRICS India tahun 2026. Pertemuan tersebut akan berfokus pada 3 prioritas utama, keamanan dan keberlanjutan energi, akses dan kesetaraan energi, serta teknologi dan inovasi. Kekuatan BRICS India tahun ini dipandu oleh tema Building of Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Menteri Perdagangan dan Industri Persatuan Piyush Goyal mengatakan bahwa India dan Uni Eropa diperkirakan akan menandatangani perjanjian perdagangan bebas yang telah lama dinantikan pada bulan Desember tahun ini. Dengan perjanjian tersebut kemungkinan mulai berlaku antara Februari dan Maret tahun depan.
भरभी चारा दालम सब वो आचारा दी मुंबई के मार इंडिया मंगाता कान बाबा पर जानजी अंतर सबूत आ कन मंबड़ी कन एक्सेस बागी पल पलाकू उषा इंडिया का हामपिर सलूरु पासा रेरो पा देंगन तिंकत भी मासुक यांग मंदेका तिनोल सहिंगा से चारा सिग्निफिकेंट मनिकात कान पलवांग एक्सपोर डेलीगासी अमेरिका सरी का दान ईरान तेला ममूलाई पंबीचान लांगसुंग तिंका तिंगी दी वर्गेन स्टॉक स्विस यंग बर्तुजुआन मम परकुआत पर जानजन से मंतारा यंग पा यंग रापू अंतारा कदुआ नगेरा दान ममाजू कान उपाय मंगाहिरी कॉन्फ्लिक्ट आसिया भारत वाकिल प्रेसिडेंट अमेरिका सरी का जे डी वांस ममिम पिन डेलीगासी अमेरिका सरी का सेमेंतारा डेलीगासी ईरान दिमिम पिन ओले कतुआ पार्लियामेंट मोहम्मद बगेर गल गरीबाफ धनवंतरी लुआर नगरी अब्बास अराकची पंबीचान तरसबुद्दी मेदियासी ओले कतर दान पाकिस्तान पर तेमुआन इनी बड़लांगसुंग कतिका तेहरान मनियाता कानबाबा सेलोथ हॉर्मुस कम्बाली दी तुतुप आकीबत सेरांगन इसराइल यांग बर कलांजुतान तर हदप लेबनान नामुन मिलीतर अमेरिका सरिका मंगाता कानबाबा जालोर पर आयर अंतर सबूत तेताप तरबुका बागी सेम्बा कापल क्लॉसल परतामा दाड़ी नोता कासा पहाम एम्पत बिलास पॉइंट अंतरा तेहरान दान वॉशिंगटन यांग दी पुब्लिकासी कान विंगू लालू मंगहारूस कान गेंचातन संजाता दिसेमवा फ्रंट तरमासुक लेबनान तेम्पात पर तेम्पुरान मनिकात अंतारा इसराइल दान कोलम्पोक बर संजाता हिजबुल्ला यांग दी दुगुंग ईरान वाकिल प्रेसिडेंट अमेरिका सरी कत बर तेमू पारापमिम पिन उतामा ईरान देंगान पम्बहासान यंग बर फोकस पाडा प्रोग्राम न्यूक्लियर ईरान स्टेबिलिटास रीजनल दान मंजागा सेलामत हॉर्मुज मंजागा सेलात हॉर्मुज यांग वायतल तेताप तरबुका बर बिचारा कपाडा मीडिया मंजे लांग पर तेमन वाकिल प्रेसिडेंट अमेरिका सरी का जे डी वांस मणिभूत न्या सबागे मोमन बर से जारा दालम पम विचारण दामाय अंतारा कदुआ नगेरा दिया मंगाता कान तुजवन पर तेमन तर सबूत अडाला मंबू का लंबारान बारू उन्तुक मंगुबा हुबुंगन अंतारा अमेरिका सरी का दान ईरान देलीगासी अमेरिका सरी का तियांग तरदीरी दारी उतुसान कुसुस स्टीव विटकॉफ दान मनान तु प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जयर कुस नरजुगा मंगाडा कान पर तेमन देंगान तीम मेदियासी पाकिस्तान के मान सेमेंतारा तीम नेगोसियासी ईरान दान मेदियतर कतर जुगा मंगाडा कान पंबीचारण दी मनस्टॉक सेमेंतारा ई तू सात पंबीचारण दामाय दी मुलाई प्रेसिडेंट अमेरिका सरी का ट्रंप के मारिन मंगांचाम आकान मनेरांग ईरान लागी दालम उंगाहन मीडिया सोशल प्रेसिडेंट ट्रंप मंगाता कान ईरान मुमकिन मंगाता पी सेरांगान यंग सरूपा अताउ लभी इंतेंस जी का तिड़ा

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता हो गए ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए

0: 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ MIFF 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ प्रति

0: निधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
1: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: हम लिख के गया ऐसा करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
3: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
2: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
4: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2-दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC NET जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी और पुरुष हॉकी में भारत

0: India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्तहकम बहरी सलाहियतें किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने में एक फैसलाकुन उंसुर का किरदार अदा करती हैं और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की दो रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। इम्तहान का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी 2026 के UGC नेट इम्तहान का आगाज आज से कराएगी। अमरीका के नायब सदर जेडी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त जारी है। वफूद ने स्विट्जरलैंड में मीटिंग की है और मर्दों के हॉकी में FIH प्रो लीग रोटरडम मरहले के अपने आखिरी मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक मजबूत समंदरी सलाहियत किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने का फैसलाकुन उंसुर होती है और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि समंदरी सलाहियतों का हामिल कोई मुल्क मजबूत होता है और इक्तसादी और दिफाई तौर पर ज्यादा मौसर होता है।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: वजीर आजम ने यह राजधानी मुल्क ही में तैयार किए गए जंगजू जहाज दूनागिरी, जायजा लेने वाले जहाज संशोधक और गहरे पानी में सरगर्मियां अंजाम देने वाले आबदोस चिकन बहरी जहाज एग्रे को कल बहरिया के कामकाज में शामिल करते हुए किया। इन जहाजों को बहरिया के जंगजू जहाज तैयार करने वाले ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इनकी तामीर गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने की है। इन बहरी जहाजों का मकसद जंगी सरगर्मियों को मुस्तहकम बनाना, समंदर के जायजे लेना और आबदोस शिकन कार्रवाइयां अंजाम देना है।
2: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
1: वजीर आजम मोदी ने दुनिया भर के लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने योग के 2026 के बैन अलाक्वामी दिन को एक आलमी तकरीब की शक्ल दी। वजीर आजम ने कहा कि ये बात हिम्मत अफजा है कि योग की वजह से दुनिया के मुल्कों में जिंदगी के सभी शोबों के लोग तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत के लिए यकजा हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस दिन से मजीद लोगों को तहरीक मिलेगी और वो योग को आने वाले वक्त में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की सैर की। उन्होंने चीता प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया जो मुल्क में चीतों के खत्म हो जाने के बाद जंगल में इनकी बाजाबादकारी के लिए भारत का एक अहम कदम है। सदर जमहूरिया ने अपने दौरे में चीतों के बंदोबस्त के इलाके का दौरा किया। उन्हें अफसरों ने इस प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल की जानकारी दी। कूनो मुल्क की पहली ऐसी जगह है जहां चीतों की बाजाबादकारी की गई है। इस जगह को प्रोजेक्ट चीता के तहत तैयार किया गया है क्योंकि ये इनके लिए एक मुनासिब और वाफर शिकार वाली जगह है। इसके अलावा यहाँ इंसानी मुदाखलत भी निस्बतन कम होती है।
3: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कूनो नेशनल पार्क की सफारी का दौरा किया। उन्होंने सहारिया कबीले के अरकान से भी बातचीत की, जो चीता प्रोजेक्ट

0: के लिए CBSE के सरकारी बयानात पर ही भरोसा करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2026 के पद्म इनामात सिविल अवार्ड्स की कल दूसरी तकरीब में अदा करेंगी। इस मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के हिस्से के तौर पर आपके लिए 15 खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
1: लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
2: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
3: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
4: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: आप इस गुफ्तगू का आज और कल 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन ऑफिशियल YouTube पर भी सुन सकते हैं। 19वां मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल मिफ 2026 कल शाम एक शानदार तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। मुंबई में इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने गैर अफसानवी सिनेमा के लिए दुनिया में मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल को एक सबसे पुरवकार फेस्टिवल करार दिया। पोलैंड की दस्तावेजी फिल्म सिल्वर को बैन अलावामी मुकाबला जाती जुमरे में बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म के लिए पुरवकार गोल्डन कॉन्च एजाज से नवाजा गया। एक रिपोर्ट।
5: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, इत्तलात और नशरियात की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी जनाब प्रभात और दीगर शख्सियात ने मुख्तलिफ जुमरों में बेहतरीन फिल्मों को 18 एजाजात अता किए। बैन अलावामी मुकाबला जाती जुमरों में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म के लिए माया सॉन्ग को सिल्वर कॉन्च के एजाज से नवाजा गया, जबकि अंडर द स्नो को बेहतरीन मुख्तसर अफसानी फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च एजाज से नवाजा गया। कौमी मुकाबला जाती जुमर में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च का एजाज आर्म स्ट्रॉन्ग फ्रॉम अमंगलम कोविल स्ट्रीट को दिया गया, जबकि द लास्ट शेल्टर ने विकसित भारत वंदे मातरम के 150 साल भारत एट द रेट 2026 से मुतालिक बेहतरीन शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड हासिल किया। मुंबई से अंकित।
0: जबकि स्विट्जरलैंड में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इलाकाई सलामती के मामलों से निपटने के लिए भी सीनियर वफूद की बातचीत हुई। जेरी वांस ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुज़ाकरातकारों के दरमियान बातचीत में मजीद पेशरफ्त का इम्कान है। अमरीका और ईरान के वफूद के दरमियान स्विट्जरलैंड के सियाहती मकाम बर्जन स्टॉक पर बंद कमरे में बातचीत शुरू की गई। मीटिंग से पहले नामनिगारों से बात करते हुए जेरी वांस ने कहा कि मुज़ाकरात के सबब पहले ही हौसलाकुन नतीज बरामद हुए हैं। मुज़ाकरात के दौरान इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिशों समेत इलाकाई सिक्योरिटी के मामलों के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खसूसी तवज्जो दी गई। मर्दों की हॉकी में भारत ने कल FIH प्रो लीग रोटरडम मरहले के अपने आखिरी मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हरा दिया। भारत की तरफ से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। कप्तान हार्दिक सिंह को उनकी बेहतरीन क्यादत और शानदार कारकर्दगी के लिए मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
6: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने भारतीय बहरिया में 3 जंगी जहाजों को शामिल किए जाने की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में तैयार करदा 3 नए जंगी जहाज को भारतीय बहरिया में शामिल किए। वजीर आजम ने कहा कि तरक्की, सलामती और खुशहाली सब समुद्र से जुड़े हुए हैं। रोजनामा इनकलाब ने आलमी योमी योग से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, आलमी योगा डे पर सदर जमहूरिया और वजीर आजम समेत दिगर पार्टियों के लीडरों ने योगा में हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए योगा जरूरी, योग ने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाजिन और बामकसद जिंदगी का रास्ता दिखाया है।
0: और आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्तकम बहरी सलाहियतें किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने में एक फैसलाकुन अंसुर का किरदार अदा करती हैं और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 2 रोज़ा मीटिंग की मेजबानी करेगा। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी 2026 के UGC नेट इम्तिहानात का आगाज आज से कराएगी। और अमरीकी सदर जेरी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ जारी है। वफूद ने स्विट्जरलैंड में मीटिंग की है।

0: इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं शास्त्र संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वर गंगा में अर्चना सिंह का राग तोड़ी।

अभी आप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा सुन रहे थे, जिसमें आपने अर्चना सिंह से सुना राग तोड़ी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम आर गेस्ट, जिसमें डॉक्टर मुदिता अग्रवाल, डीन स्कूल ऑफ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, बता रही हैं योगा फॉर हेल्दी एजिंग के बारे में। होस्ट है नीतीश अरोड़ा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

दुनिया सरकार के करम से भरती है सबकी झोली दरबार मोहतरम से, हर एक गमजदा को अधी है निजा।

आशिकों का मेला लगा हुआ है, दर्दी सवालियों का मजमा जमा हुआ है, बैठा हुआ है कोई कोई खड़ा हुआ है, पूरा सवाल हर एक मजबूर का हुआ है, लुत्फ

शाह-ए-आली ऐसा ही आदे जमाना, दुखियों का भी गसों का सुन लीजिए फसाना। हर एक के लिए है बाबा का आस्ताना, दुश्मन हुआ जमाना कोई नहीं ठिकाना।

भट की घटा लाई क्या छुपा के, घटा लाई क्या छुपा के, बिन कारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला।

0: ये तो बतला। सुन तुम मेरी सहेली को पूछो पहली, कल रात हुई क्या बात ये तो बतला।
1: दोस्तों ग्रामीण तरानी दिगर राम तर्जुमाइद के बैस उदाइये महम रफी बा आशमी बौशाद।
2: मैंने कहा मिस

قد جاءكم بصائر من ربكم

0: الله العظيم.
1: التعليق وموضوعه اليوم الدولي لليوم.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता, हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी।

पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिल्सिक से साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 당근.
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: और सभी सुनने वालों को और मंजुला तुम्हें भी मेरा यानी रश्मि कुकरेती का भी प्यार भरा नमस्कार।
1: और आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर।
2: और मंजुला सोचो अगर धरती की सांसों की आवाज होती तो वो कैसी होती? शायद बारिश की बूंदों जैसी।
1: बिल्कुल।
2: और पत्तों की सरसराहट जैसी, या फिर पक्षियों की मधुर आवाज जैसी। क्योंकि आज है विश्व रेन फॉरेस्ट डे।
1: अच्छा।
2: और रेन फॉरेस्ट जो है वो न केवल हमें स्वच्छ हवा देते हैं

0: बल्कि अनगिनत जीव जंतुओं और वनस्पतियों का घर भी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा तुम्हारी हमारी हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल सही कहा रश्मि जी। और अब आज का सवाल आप सबके लिए, अगर आपको 2 दिन की छुट्टी मिले तो कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों जाना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें इस मेल आईडी पर भेज दीजिए जो है fmgoldg@gmail.com। वो कौन सी जगह होगी, पहाड़, समंदर, जंगल या फिर अपने घर का एक खूबसूरत सा कोना?
0: बिल्कुल हमें जरूर बताइए और चलिए हरियाली की ओर और चलिए सकारात्मकता से भरे इस सफर की ओर, जिसकी शुरुआत हम करते हैं इस सवाल के साथ। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए यह कार्यक्रम जिसका नाम है
1: घर आंगन।
0: जी।

0: और अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी शतरंज। और कहते हैं कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, अगर हौसला हो तो कैमरे की एक नजर भी आपको दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा सकती है।
1: और मंजुला, आज बात एक ऐसी ही प्रेरणादायक महिला की हो रही है, और असम की बेटी गीतिका तालुकदार की, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। गीतिका तालुकदार फीफा वर्ल्ड कप

0: 2026 को कवर करने वाली भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट बन गई है और ये उपलब्धि सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश खासकर पूर्वोत्तर भारत की महिलाओं के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत गर्व का ये पल है।
1: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों गीतिका इसके पहले भी रूस 2018 और 2022 फीफा वर्ल्ड कप कवर कर चुकी हैं और अब 2026 में लगातार तीसरी बार उन्हें फीफा से आधिकारिक मान्यता मिली है। उनकी तस्वीरें सिर्फ मैच नहीं दिखाती बल्कि खिलाड़ियों की भावनाएं, दर्शकों का जुनून और खेल की आत्मा को कैद करती है। गीतिका ने ओलंपिक, विमेंस, फीफा वर्ल्ड कप और कई अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को भी अपने कैमरे में उतारा है।
0: और देखिए जो ये फोटो, जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आज भी महिलाओं की संख्या थोड़ी सी कम है, पर जो गीतिका तालुकदार है ना, उन्होंने अपने हुनर और मेहनत से ये साबित कर दिया है कि सपनों को सच करने के लिए चाहिए सिर्फ जुनून। और हम सलाम करते हैं देश की इस बेटी को जिसने असम से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर अपनी पहचान बनाई है।

0: अभी हम सुन रहे थे हेमा सरदेसाई को फिल्म चक दे इंडिया। और रश्मि जी, आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी लेखनी में महिलाओं का बहुत ही सुंदर रोल होता था। सिर्फ कविता और गीतों तक सीमित नहीं थी, उन्होंने समाज, रिश्तों और सबसे बढ़कर महिलाओं के मन को बहुत ही गहराई से समझा। उनकी कहानियों की महिलाएं शांत जरूर थी लेकिन कमजोर कभी नहीं। उस दौर में जब महिलाओं की आवाज अक्सर घर की चार दीवारी तक सीमित कर दी गई, टैगोर ने अपनी रचनाओं में उन्हें सोचने, सवाल करने और अपनी पहचान बनाने का साहस दिया।
1: जी बिल्कुल सही कहा मंजुला। और अगर आप पढ़ें स्थिर पत्र, जो इसकी नायिका है मृणाल, इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वो एक ऐसी महिला है जो अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखती है। उसका विद्रोह ऊंची आवाज में नहीं है बल्कि उसके अपने फैसले में दिखाई देता है। वो समाज से ये भी कहती है कि एक स्त्री सिर्फ किसी की पत्नी या किसी की बहू नहीं है, वो है एक स्वतंत्र व्यक्तित्व।
0: और चोखेर बाली की विनोदनी भी टैगोर की बेहद प्रभावशाली महिला पात्रों में से एक है। उसके भीतर भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, बुद्धिमत्ता है। टैगोर ने उनके माध्यम से उस समाज पर सवाल उठाया जो महिलाओं की भावनाओं के समझने की बजाय उन्हें नियमों में बांध देता था। और घरे बायरे की विमला, उसके बारे में आप बताइए रश्मि जी।
1: हाँ बिल्कुल, वो है प्रेम, कर्तव्य और अपनी पहचान के बीच उलझी संवेदनशील स्त्री। उसके भीतर अपने अस्तित्व को समझने की एक बेचैनी है और यही उसे बेहद मानवीय बना देती है। देखिए, नष्ट नीड की जो चारुलता है उसको कोई बुला सकता है मंजुला? नहीं ना। और घर में सब कुछ होते हुए भी उसका एक अकेलापन है, उसकी अधूरी इच्छाएं हैं और उसके भीतर जो छुपी हुई प्रतिभा है ना, वो सच में दिल को छू जाती है। टैगोर ने ये दिखाया है कि स्त्री का सबसे बड़ा दर्द अक्सर वही होता है ना मंजुला, जिसे कोई भी देख नहीं पाता।
0: बहुत ही खूबसूरत बात कही। और रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि उन्होंने महिलाओं को देवी बनाकर दूर नहीं रखा, उन्होंने उन्हें इंसान की तरह लिखा।

संवेदनशील, मजबूत, सपने देखने वाली और अपनी पहचान खोजने वाली। उनकी लेखनी आज भी हमें एक एहसास कराती है कि महिला को की असली ताकत उसकी आवाज, उसकी सोच और उसके आत्मसम्मान।

0: ये गीत आप सुन रहे थे परिणीता फिल्म से, और सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ थी। और इस गीत में भी एक प्रश्न था मंजुला, उन्होंने पूछा कि घटा से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है, और तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही सवाल था ना, जरा दोहराओ तो।
1: बिल्कुल, मैं फिर से आज का सवाल दोहराऊंगी कि सबके लिए अगर आपको 2 दिन की छुट्टी मिले तो कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों जाना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें इस मेल आईडी पर भेजें, fmgoldg@gmail.com। वो कौन सी जगह होगी, पहाड़, समंदर, जंगल, या फिर आपके घर का एक आरामदायक कोना?
0: हाँ, एक बारी फिर ईमेल आईडी बता दूं, fmgoldg@gmail.com, यानी घर आंगन, fmgoldg@gmail.com। जल्दी से भेज डालिए अपने सवाल, अपने जवाब, और हम आपको सुनवाएंगे जल्द ही।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा पुल जो सीमेंट, लोहे या पत्थर से नहीं बना है, बल्कि पेड़ों की जीवित जड़ों से तैयार किया गया है। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन भारत के खूबसूरत

0: राज्य मेघालय में ये हकीकत है। मेघालय को यूं ही बादलों का घर नहीं कहा गया है दोस्तों, यहाँ प्रकृति और इंसान का रिश्ता सदियों पुराना है। खासकर खासी और जयंतिया पहाड़ियों में ऐसे अद्भुत लिविंग रूट ब्रिजेज मिलते हैं जिन्हें बनाया नहीं जाता बल्कि उगाया जाता है।
1: वाह क्या बात है। इन पुलों को तैयार करने के लिए रबड़ फिग या भारतीय रबड़ के पेड़ की मजबूत जड़ों को वर्षों तक सही दिशा में बढ़ाया जाता है और बांस और लकड़ी की सहायता से जड़ों को नदी या खाई के ऊपर फैलाया जाता है, जो ये धीरे धीरे जड़ें आपस में गुथकर इतना मजबूत पुल बन जाती हैं कि दर्जनों लोग एक साथ उस पर चल सकते हैं।
0: और इन पुलों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि और भी अधिक मजबूत होते जाते हैं। जहां पे आम रेगुलर पुलों को लगातार मरम्मत की जरूरत पड़ती है, वहीं ये जीवित पुल प्रकृति के साथ मिलकर खुद को और भी सुदृढ़ बनाते रहते हैं।
1: और जो मेघालय का प्रसिद्ध डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है ना मंजुला, वो जो है नोगरियाट में है और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये जो पुल है ये 2 मंजिलों वाला है और प्रकृति और मानवीय धैर्य का अद्भुत उदाहरण है। और वहीं कई ऐसे पुल भी हैं जो 100 से 200 वर्ष से अधिक पुराने हैं और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके जीवन का अहम हिस्सा आज भी हैं।
0: बिल्कुल। और इन जीवित पुलों को संरक्षित और दुनिया के सामने उसकी महत्ता को पहुँचाने में पर्यावरणविद हेली वॉर का योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। उन्होंने वर्षों तक इन पुलों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के लिए काम किया। प्रकृति संरक्षण के प्रति उनके इसी समर्पण के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया।
1: तो अगली बार जब आप किसी पुल से गुजरे ना तो मेघालय के उस अनोखे पुलों को जरूर याद कीजिएगा जिन्हें इंसानों ने बनाया नहीं बल्कि प्यार धैर्य और प्रकृति के सहयोग से उगाया है। वाकई में मंजुला मुझे लगता है प्रकृति सबसे बेहतर और सबसे खूबसूरत इंजीनियर है ना।

0: और जो सवाल तुमने मंजुला पूछा था ना कि कहाँ जाना चाहते हो, एक जवाब आ गया है। इदरीस सैफी कह रहे हैं कि लद्दाख जाना चाहते हैं। उन्होंने कारण नहीं बताया, पर मुझे लगता है कि जो वहाँ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ पे पेंगोंग झील है, नुब्रा वैली है, और जो बौद्ध संस्कृति और मठ है, और तारों भरा आसमान है, और फोटोग्राफी का तो वो स्वर्ग है। शायद इसीलिए वो कह रहे हैं, क्योंकि आप भी गई है लद्दाख और मैं भी गई हूँ लद्दाख। बहुत खूबसूरत है,
1: बहुत ही खूबसूरत है, और जो वहाँ का नजारा है आपको रियल नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे हम किसी फिल्म में देख रहे हैं वो सारे सीन, तो शायद यही वजह रही।
0: तो हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बाकी श्रोता भी लिखकर भेजेंगे, हमें मेल करेंगे fmgoldga@gmail.com पर, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे।
1: और तब तक बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो हमारे भारतीय परंपरा के साथ जुड़ी है। साड़ियाँ, साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं है रश्मि जी, बल्कि भारत की जीवित विरासत है। इसके धागों में इतिहास है, रंगों में संस्कृति है, और हर बुनाई में सदियों पुरानी कहानियां छिपी है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही साड़ियों की जो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अपने भीतर एक अनोखी कहानी भी समेटे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की नौवारी साड़ी से। नौवारी यानी नौ गज लंबी साड़ी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका ड्रेपिंग स्टाइल जो धोती की तरह पहना जाता है, और कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य के दौर में महिलाओं को घुड़सवारी, युद्ध कला और दैनिक कार्यों में सुविधा मिले, इसलिए ये शैली लोकप्रिय हुई। और यही वजह है कि नौवारी साड़ी सिर्फ परिधान नहीं बल्कि महिलाओं की शक्ति, आत्मनिर्भरता और साहस का प्रतीक मानी जाती है।
0: और जो ये विषय तुमने लिया है, मैं समझ गई मंजिला, बहुत खूबसूरत तुमने ये जो नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है, और ये साड़ी जो पहनी हुई है ये है मूगा सिल्क की, बहुत सुंदर है,
1: बहुत,
0: और जो असम की साड़ी है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी प्राकृतिक सुनहरी चमक जो समय के साथ और निखरती है। ये सिल्क बहुत टिकाऊ होती है, और असम की जलवायु में तैयार होने वाला ये रेशम दुनिया भर में अद्वितीय माना जाता है। कई परिवारों में तो ना मंजुला, जो मूगा सिल्क की साड़ियां होती है ना, वो पीढ़ियों तक संभाल कर रखी जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा, और ये साड़ी भी जो मैंने अभी पहन रखी हुई है मेरी मम्मी का है। और असम की ही एक और खास पहचान है एरी सिल्क, जिसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है। इसमें रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, और इसी तरह कमल के डंठल्स के रेशे से तैयार की जाने वाली लोटस सिल्क साड़ियां आज सस्टेनेबल और क्रुएल्टी फ्री फैशन का शानदार उदाहरण बन चुकी है। तो प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और सौंदर्य का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है।
0: कितना सुंदर विचार है ये कि सौंदर्य भी है और हम संवेदनशील भी है प्रकृति के प्रति। और क्यों ना हम दूसरी साड़ियों की बात करें। बात करें भाई साड़ियों की क्वीन जो है बनारसी साड़ी की, भाई ये वाराणसी की जो कला है उसमें महीन जरी होती है, जो बूटे होते हैं, भव्य कलाकारी होती है, इसीलिए तो बनारसी साड़ी आज भी दुनिया भर की भारतीय हस्तशिल्प की पहचान मानी जाती है। और यही वजह है कि आज भी अनगिनत जो दुल्हन बनती है ना उनकी पहली पसंद अगर पूछोगे तो वो कहेंगी भाई बनारसी साड़ी होनी चाहिए। और साथ में गुजरात की बांधनी साड़ी, उसके रंग बिरंगे बिंदु डिजाइन जो है वो उत्सव का प्रतीक होते हैं, और कश्मीर की कानी सिल्क साड़ी अपनी महीन बुनाई और शाही अंदाज के लिए विशेष पहचान रखती है।
1: बिल्कुल सही। अगर आप बिहार की बात करें तो भागलपुरी सिल्क साड़ी भी अपने प्राकृतिक चमक और विश्व लोक कला को अपने रंग और आकृतियों के माध्यम से जीवंत कर देती है। वैसे साड़ियों की ये सूची और भी लंबी है। भारत के हर कोने में एक नई बुनावट, एक नया रंग, एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है।
0: लेकिन आज के लिए भाई बस करो, क्योंकि इन धागों में इतिहास है, रंगों में पहचान है, और हर साड़ी कहती है भारत की एक नई जगह की कहानी बताती है, और संस्कृति की खुशबू बताती है, और परंपरा का श्रृंगार 6 गज में लिपटा है पूरे देश का प्यार।
2: चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे,

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे को फिल्म बहारों के सपने, और एक मेल लगता है और आ गया जो रश्मि जी पढ़ने वाली है।
1: ये एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, चरणदास जी, ये बता रहे हैं शिमला जाने के उन्हें अच्छा लगता है, और वो एक बात बहुत अच्छा संदेश भी दे रहे हैं मंजुला, वो कह रहे हैं क्यों ना पेड़ पौधे लगाए जाएं और पूरी धरती को सुंदर बनाया जाए तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी, और वैसे तो मैं शिमला जाना चाहता हूँ पर शिमला जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा, उन्होंने दोनों बातें कही, उन्हें शिमला जाना भी है और उनका ये कहना है कि अगर हम पेड़ पौधे ढेर सारे लगाए तो हर शहर शिमला बन जाएगा।
1: और राजू अग्रवाल चौधरी हिसार से हैं, ये भी जुड़े हैं।
0: बिल्कुल, तो अब हम बात करेंगे कि अक्सर एक शब्द हम सुनते हैं गृहिणी, अरे वो तो बस एक हाउसवाइफ है, लेकिन क्या ये गृहिणी केवल घर संभालने वाली महिला होती है? शायद नहीं,
1: बिल्कुल नहीं,
0: बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि वो केवल गृहिणी नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माता है। किसी भी देश की पहली पाठशाला वो उसका घर ही होता है, और उठ उस पाठशाला की पहली शिक्षिका माँ होती है। वही बच्चों को ईमानदारी, अनुशासन, संवेदनशीलता और संस्कारों का पाठ पढ़ाती है। एक डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, सैनिक या नेता बनने से हर व्यक्ति एक परिवार का सदस्य होता है उसके पहले, और उसके व्यक्तित्व की नींव घर में ही रखी जाती है।
1: जी, जो गृहिणी होती है वो दोस्तों भोजन ही नहीं बनाती, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, घर ही नहीं सजाती बल्कि रिश्तों को भी सहेजती है। वो केवल बजट ही नहीं बनाती बल्कि सीमित संसाधनों में संतुलन और प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मैं तो कहूंगी सबसे अच्छी मैनेजर जो होती है वो घर की जो गृहिणी होती है, वो छोटा सा जिसे कहते हैं ना एक पूरा घर, हाउस होल्ड मैनेज करती है। देखो, उसको ना कोई वेतन होता है ना कोई छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी उसका योगदान जो है वो अनमोल है। उसके श्रम और त्याग और समर्पण का कोई मूल्य ही नहीं है, वो किसी आंकड़े में मापा ही नहीं जा सकता। वो तो अपने परिवार के माध्यम में, सच कहूं, समाज और राष्ट्र के भविष्य को आकार देती है। दोस्तों,
0: बिल्कुल सही कहा। और आज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें उन लाखों गृहिणियों को भी सम्मान देना चाहिए जो बिना किसी पहचान या फिर प्रशंसा की उपेक्षा के प्रतिदिन राष्ट्र निर्माण में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा रही हैं।
1: तो जब अगली बार आप किसी महिला को कहें ना सिर्फ हाउसवाइफ या कहते सुने तो याद रखिए कि वो केवल गृहिणी नहीं है बल्कि एक राष्ट्र निर्माता है, और सच बताऊं वो घर का आधार है। और जैसे खुशबू बिखेरती है ना, वो ऐसे खुशबू बिखेरती है पूरे घर में जैसे हो कोई रजनीगंधा।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी रजनीगंधा। और लग रहा है कि आप फिर से एक मेल पढ़
1: रही हैं। जी बिल्कुल, एक और संदेश आया है हमारे पास पूनम का मुंबई से। वो कह रही है मैं फूलों की घाटी जाना चाहती हूँ। तो ये है वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड के चमोली जिले में है। और इसमें यहाँ मंजुला बहुत दुर्लभ और सुंदर फूल रहते हैं और बर्फीली चोटियाँ, हरी भरी वादियाँ, वाह शांत वातावरण है। कहती है कि यहाँ पर ट्रैकिंग का बहुत आनंद है, यहाँ पहुँचने के लिए ट्रैक करना पड़ता है।
0: बिल्कुल जी जी, मैं जा चुकी हूँ और बहुत ही खूबसूरत जगह है।
1: भाई रास्ते में झरने हैं, नदियाँ हैं, मनमोहन दृश्य है। तो हम तो कहते हैं आप जरूर जाइए, अपना सपना पूरा कीजिए। और कहीं कुछ मंजुला और कुछ कहना चाह रही हैं?
0: बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आगे आप लोग और भी मेल भेजिए, अपनी इच्छा जाहिर कीजिए कि दो दिन की छुट्टी के बाद आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। हमारा मेल आईडी नोट कीजिए, fmgoldga@gmail.com। और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी जो हमारे सबसे जुड़ी हुई है। हम अक्सर अपने जीवन में तनाव, चिंता और थकान के का कारण काम के दबाव को समझते हैं, समय की कमी को समझते हैं या परिस्थितियों को मानते हैं। लेकिन रश्मि जी, कई बार असली कारण हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक लोग, हानिकारक आदतें और टॉक्सिक विचार होते हैं जो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कम करते हैं।
1: मुझे लगता है उनकी तरफ तुम देखा ही मत करो, है ना। क्योंकि कभी ऐसा सामना भी हो ना जो इस प्रकार के लोग मिले, तो उनसे संबंध तोड़ना हमेशा संभव तो नहीं होता, लेकिन स्वस्थ दूरी बना लें और अपने मानसिक शांति को प्राथमिकता दीजिए और सीमाएं तय कीजिए, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और इसी तरह कुछ आदतें भी हमारी जीवन में जो है वो टॉक्सिसिटी का काम करती है। हर समय अपनी तुलना दूसरों से ना करें, सोशल मीडिया पे ना रहें, और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे विचार। कई बार हमारा सबसे बड़ा आलोचक कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं होते हैं। मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, मेरे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये सब विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब भी ऐसे विचार आए उन्हें चुनौती दीजिए, अपने आप से वही बातें कीजिए जो अपने किसी प्रिय मित्र से करते हैं।
1: जी बिल्कुल, एक बात याद रखिए कि

0: बगीचे में जो है स्वस्थ पौधे उगाने के लिए उसके लिए नए बीज लगाना पड़ता है, खरपतवार हटानी पड़ती है, तो जो जीवन में खुशियां बढ़ाने के लिए अच्छी चीजें जोड़नी पड़ती हैं। और साथ ही ये भी सोचिए कि स्पर्धा जो है वो अपने आप से करें, अपने आलोचक खुद बनिए, और जो दूसरे अगर कभी आलोचना करें तो उसे भी स्वस्थ आलोचना मानकर अपने में सुधार करने की जरूर कोशिश करें। क्यों मंजुला?
1: बिल्कुल सही। तो आइए छोटा सा संकल्प लें कि ऐसी आदतों से हम दूरी बनाएंगे और पॉजिटिविटी जो है सकारात्मकता वो हमेशा बना के रखेंगे।
0: जी।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म तीन देवियां से, खूबसूरत सा गीत।
1: और यहाँ तीन देवियां हैं और स्टूडियो में दो देवियां हैं।
0: बिल्कुल सही। और अभी इन देवी को एक और मेल आया है हमारे पास। वंदना जी लिख रही हैं, संदेश आया है

0: का न्यू दिल्ली से कि उनको रणथंभौर नेशनल पार्क जाने की बहुत इच्छा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपकी इच्छा पूरी हो बहुत ही जल्द। और ये मेरा भी फेवरेट है, तो भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जहां बाघों को उनके प्राकृतिक आवास देखने में रोमांच मिलता है।
1: जी, वहां पर देखिए बाघ तो है ही, साथ में सांभर, चीतल और नीलगाय भी है। और भाई सफारी का जो रोमांच है वो

0: फिर सफारी के दौरान जंगल, झीलों और वन्य जीवों को करीब से देखने का मौका मिलता है। और जो किला है ना रणथंभौर किला, वो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। मंजुला, बहुत खूबसूरत जगह है रणथंभौर। और फोटोग्राफी का तो क्या कहने भाई, मजेदार फोटोग्राफी, प्रकृति का आनंद।
1: और टाइम आपके लिए सबसे अच्छा अक्टूबर से लेके फरवरी तक रहेगा, क्योंकि उस वक्त ठंड में जाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी।
0: जी बिल्कुल, जब जंगल की खामोशी में बाघ की हार सुनाई दे तब समझो रणथंभौर ने अपना असली जादू दिखाया है ना। तो वो किस्मत वाले होते हैं जो जिनको वहां बाघ देखने का अवसर मिले।
1: बिल्कुल, तो चलिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और अब बात कुछ ब्यूटी की। सौंदर्य का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता है दोस्तों, बल्कि स्वस्थ रहना भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी पसंदीदा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो त्वचा, बालों और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं।
0: जी आइए जानते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मौजूद कुछ आम जो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें पहचानने के आसान तरीके क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैराबीन्स की। ये प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उत्पाद लंबे समय तक खराब ना हो। लेबल पर मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन जैसे नाम दिखे दोस्तों शैम्पू में तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए।
1: और दूसरा है सल्फेट्स। ये शैम्पू और फेस वॉश में झाग बनाने के लिए डाले जाते हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट यानी SLS संवेदनशील त्वचा को रूखा बना सकते हैं। और तीसरा नाम है जो नाम नहीं है बल्कि उस पर लिखा होगा, अगर आपके बॉटल्स पे आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और आर्टिफिशियल कलर्स, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्रेग्रेंस, परफ्यूम या आर्टिफिशियल कलर्स जैसे साधारण शब्दों के पीछे दर्जनों केमिकल्स छिपे हो सकते हैं। इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाले उत्पादों को सोच समझ के चुनना चाहिए।
0: जी, जो भी खरीदे पढ़े जरूर कि क्या उसमें है मौजूद चीजें क्या है। एक और ऐसी चीज है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है मिनरल ऑयल या लिक्विड पैराफिन। ये पेट्रोलियम से प्राप्त एक सस्ता तेल होता है दोस्तों, जिसे कई क्रीम, लोशन और हेयर ऑयल में भी मात्रा बढ़ाने और लागत कम रखने के लिए मिलाया जाता है। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक डाइज भी होते हैं, जो भी भाई मैं तो कहूंगी चिंता का विषय ही रहेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है मंजुला कि इन्हें पहचाने कैसे।
1: बहुत ही आसान है कि खरीदारी करते समय ब्रांड या विज्ञापन पर नहीं बल्कि जो इंग्रेडिएंट लिस्ट पर ध्यान दें। तो याद रखिए, जागरूक उपभोक्ता बनना ही सबसे बड़ा सौंदर्य मंत्र है। सुंदरता तभी सार्थक है जब उसके साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा भी जुड़ी हो।
0: हाँ, और मैं तो ये कहूंगी मंजुला, मेरे साथ परेशानी ये होती है कि चश्मा नहीं होता तो मैं पढ़ ही नहीं पाती इंग्रेडिएंट ज्यादातर दोस्तों। ये इंग्रेडिएंट बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखे होते हैं, तो सही तरीका ये होता है कि अपने मोबाइल कैमरा से उसकी फोटो खींच लीजिए और उन्हें एनलार्ज करके पढ़ लीजिए, भाई कहीं इसमें पैराबीन तो नहीं है, सल्फेट तो नहीं है, जो है ये मिनरल ऑयल तो नहीं है, ये सब देखिए, ये सब पढ़ लीजिए। जागरूक उपभोक्ता बनेंगे तो ये सबसे बड़ा सौंदर्य का मंत्र है ना।

0: अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म है अपना देश। इसी के साथ हमारा आज का सफर यहीं तक। उम्मीद है आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए। दीजिए मंजुला और
1: रश्मि कुकरेती को इजाजत और स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन

0: लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar arrived in Mongolia today for an official 2-day visit. In a social media post, Dr. Jayashankar shared this information and said that he is looking forward to fruitful engagements to advance the special partnership between India and Mongolia. During the visit, the External Affairs Minister will meet with the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Batsetseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. President Draupadi Murmu today interacted with cheetah mitras and members of the Saharia tribe at Kuno National Park in Madhya Pradesh's Shivpur district. She appreciated their contribution to Project Cheetah and said the active participation of local communities is playing an important role in the success of the ambitious conservation program. Earlier, the president went on a safari in Kuno National Park and reviewed the progress of the cheetah reintroduction project. She also visited the Cheetah Command and Control Center, where she viewed an exhibition on Project Cheetah and was briefed on the monitoring, tracking and conservation measures being undertaken for the animals. India will host the 2-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the meeting. A report.
2: During the meeting, the National Security Advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The National Security Advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS joint working groups on counter-terrorism and on security in the use of information and communication technologies. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
1: In Uttar Pradesh, notorious criminal Lalan Singh, carrying a combined bounty of 1,25,000 rupees, was killed in an encounter with the Uttar Pradesh Special Task Force in Saharanpur last night. Police said the shootout took place on the Sarsawa Nakur Road. A resident of Samastipur district in Bihar, Lalan Singh was wanted in several serious criminal cases, including the shooting of a sub-inspector and robbery of his service.

0: pistol in Varanasi and a firing-cum-robbery case in Chandauli district. In Jharkhand, at least 8 people were killed and several others injured in multiple lightning strikes reported from different parts of the state during the past 24 hours. The incidents were reported from Ramgarh, Giridih, Khunti, Deoghar, Dhanbad and Sahibganj districts. The injured have been admitted to hospitals for treatment. Officials said that some of them are in serious condition. Meanwhile, authorities have advised people to remain alert during thunderstorms and adverse weather conditions. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. IMD has also predicted heavy rainfall conditions at isolated places over sub-Himalayan West Bengal, Karnataka, Telangana, Kerala, Goa, Odisha and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Lakshadweep, Puducherry and Karaikal during the day. The Met Department has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andaman and Nicobar Islands, Jammu and Kashmir and Ladakh today. An explosion ripped through Qatar's key natural gas export infrastructure, injuring at least 54 people, while 18 others remain missing. According to official reports, the blast occurred in the Ras Laffan industrial area last night, one of the world's most important energy hubs, during ongoing efforts to resume operations at the facility following earlier disruptions linked to regional conflict. The incident triggered a major fire at the Barzan gas supply facility, prompting emergency response teams to rush to the site. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in afternoon trade. Today, the Sensex climbed 360 points to 77,163, while the Nifty rose 105 points to 24,118 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है हमारे लाइव रेडियो कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही फिल्म से। आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपके अपने दोस्त और होस्ट इस लाइव रेडियो कार्यक्रम की रहना तवर प्यार भरा खुशनुमा नमस्कार। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनते हैं ये संदेश, फिर शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
3: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
1: तो प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए रैना तवर का, और कार्यक्रम शुरू हो चुका है आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ के इस विशेष फिल्मी कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही फिल्म से। और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज के इस आधे घंटे के सफर में हम ले चलेंगे आपको 70 की दशक की एक बेहतरीन लोकप्रिय फिल्म जिसका और जिसकी कहानी, जिसके संवाद, जिसके गीत और उसकी आइकॉनिक किरदारों के लिए जो आज भी आपके दिलों में राज करती है। जी हाँ, खैर बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी फिल्मों की बातें होंगी और उसके साथ आप इस ये 70 की दशक की जो फिल्म की बात कर रही हूँ इसमें देखिए मैं हूँ तो आपको कुछ तो कहना होगा, तो यानी कि मैं आपको दूंगी एक हिंट और आपको पहचानना होगा कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं और इस फिल्म में कौन कौन थे, वो भी हम आपको बता देते हैं, हिंट भी दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा इस कार्यक्रम में थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए। जी, इसके साथ एक हिंट ये है कि 1976 में रिलीज हुई थी फिल्म और इसमें जो किरदार थे, जो सुपरस्टार थे, वो मनोज कुमार और खूबसूरत अभिनेत्री हेमा मालिनी जी और दमदार अभिनेता प्राण साहब भी थे। तो टाइप कीजिए फटाफट ipradiodelhi@gmail.com, क्योंकि हमें रहेगा आपके मैसेज का इंतजार। जो सबसे पहले हमें मैसेज करके भेजेगा वो हमारा आज का इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता होगा।

0: फेवरेट हमारे आप सभी हैं, मगर जो सबसे पहले भेजेगा वो जो गेस करके हमें बताएगा तो मजा आएगा, है ना। तो चलिए जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में आपके साथ ipradiodelhi@gmail.com। जल्दी से टाइप कीजिए, अपना जवाब भेजिए, हमें रहेगा आपके जवाब का इंतजार। और हम सुनते हैं उसी से जुड़ा ये वाला गीत। यो यो
1: अरे मेरा पेट्रोल पंप, ये टैंकी खाली है, भर दो ना इसे।
2: ये लो बॉटल और भर दो सबके ग्लास।
3: ये माल चलेगा नंबरी सेठ, रानी छाप है।
4: रानी छाप हो या राजा छाप, यारों को चालू माल नहीं चलता।
3: तो फिर क्या दारू के अड्डे पे झक मारने के लिए आया है?
4: यारों के मुंह मत लग लौंडिया।
0: देखा कितनी सारी बातें हो रही हैं और आप हमें मैसेज करके भेज रहे हैं, हमें फटाफट से गेस कीजिएगा और बताइएगा कि क्या हम किसकी बातें कर रहे हैं, कौन सा गीत है, कौन सा गाना है। और हम इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का ipradio@delhi.gmail.com पर। फटाफट से हमें मैसेज करके जवाब दीजिए कि किस फिल्म की हम आज बात कर रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ रहना तवर और कार्यक्रम है एक ही फिल्म से।
1: अरे तेरे प्रेमी तो इधर है हम।
5: अरे हमें पिला प्रेम से जितनी पिलानी हो।

ये है लता मंगेशकर की आवाज का खूबसूरत नगमा। तो बहुत सारे जो मैसेज हमें आ रहे हैं, सबसे पहले जिसने हमें ये सही जवाब दिया मैसेज करके, वो हमारे आज के फेवरेट श्रोता कौन है? जवाब है जी डीबी राणा नेहरू विहार से, दिल्ली से। उन्होंने हमें मैसेज किया और एकदम सही बताया कि हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है दस नंबरी। जी हाँ, दस नंबरी। और सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे और सभी श्रोता को निराश बिल्कुल ना हुए, क्योंकि सभी हमारे दिल के बेहद करीब हैं। बस ये एक छोटा सा बहाना है, आपसे कुछ तो करवाना है, है ना, रहना है तो कुछ तो कहना है। तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं 1976 में रिलीज हुई एक लोकप्रिय बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म दस नंबरी की, जिसे मदन मोहल्ला द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया। लेकिन कहा जाता है कि इस फिल्म के कई हिस्सों में मनोज कुमार साहब ने ही खुद निर्देशित किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिल्म का नाम दस नंबरी उस समय काफी चर्चा में रहा? पुलिस की भाषा में दस नंबरी उस अपराध को कहा जाता है जिसका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में यानी कि दस नंबर पे रखा जाता है। और इस फिल्म में मनोज कुमार का किरदार इसी टैग के साथ बड़ा होता है और अंडरवर्ल्ड का नाम डॉन बन जाता है।

बहुत सारे मैसेजेस हमें आ रहे हैं, इस तरह से जुड़े रहिएगा ipradiodelhi@gmail.com। आप सुनते रहें आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, मैं हूँ आपके साथ रैना तवर। और बहुत सारे मैसेज, बिट्टू गंगनेजा, पूनम गंगनेजा जी का हमें मैसेज आया है, राधेश्याम देवांगन, देवांगन जी का, जगदीश देवांगन जी का, चंपा जी का, इंदिरापुर नगर भवन पुर से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज जी का भी, स्वर्ण सिंह जी का, अजीत भावसर का भी।

जी हाँ, दुनिया एक नंबरी और मैं 10 नंबरी। वाह, इस फिल्म के कई दृश्य उत्तर भारत की खूबसूरत लोकेशन पर फिल्माए गए। हालांकि उस दौर में तकनीकी सुविधाएं कम थी, फिर भी फिल्म के दृश्य और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को बहुत पसंद आए। मनोज कुमार ज्यादातर देशभक्ति फिल्मों में किरदार निभाते थे, जिसके वजह से वो भारत कुमार के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। इस फिल्म में निभाया किरदार बिल्कुल विपरीत था। लेकिन कहते हैं ना, किरदार कितना भी अलग क्यों ना हो, लेकिन अगर अदाकार अच्छे हों, किरदार निभाने वाले अच्छे हों, तो वो दिल पे छाप छोड़ ही जाते हैं, जैसे मनोज कुमार साहब ने इस फिल्म में छोड़ दिया, यानी कि दर्शकों का मन मोह लिया। और हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए, जैसे कि छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश सिंह, प्रिंस वर्मा, निखिल यशस्वी जी का हमें मैसेज आया है, और उसके बाद सुनील पाठक जी का मैसेज आया है। हमारे पास कमल पाठक, कमल होत्रा, अनारकली बाजार पंजाब से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। और नमस्कार जी, अनिल मोहन जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। और शानदार प्रस्तुति, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से इन्होंने हमें मैसेज किया है। और संगीत सुहानी इनके नवाब खान से का भी मैसेज आया, वारली मुंबई से नवाब जी का, इशरत जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमें मैसेज करते रहिए और सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम, जो कि है एक ही फिल्म से।

क्या बात है, लता मंगेशकर की आवाज़ का ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे हैं। और जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूँ आपके साथ रहना था। और आज की हमारी जो फिल्म है वो है 10 नंबरी। तो श्रोताओं, इस फिल्म का जो संगीत है वो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल द्वारा रचित था, और इस गीत के मजरूम सुल्तान जी ने लिखे थे। और इस कहा जाता है कि ये मुकेश जी एक अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, यानी कि मुकेश जी की ने भी इनमें गीत दिए हैं। और कहा जाता है कि मुकेश जी की जो आखिरी फिल्मों में से एक ये फिल्म थी जिसमें दिग्गज गायक मुकेश जी ने मनोज कुमार के लिए गानों में अपनी आवाज़ दी। और हमारे पास बहुत सारे श्रोताओं का मैसेज आया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप हमसे जुड़ें ताकि हमें भी लगे कि हम प्रोग्राम्स आपके लिए लाए हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं। और कोई भी प्रतिक्रिया आप सुझाव हमें देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, ये हम अपने इसमें शामिल करेंगे। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसविंदर जस्सी, सीता और गीता हमें मैसेज कर रहे हैं। और इसी तरह से अजीत भास्कर ने जी हमें मैसेज किया है, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता और समडील नवपारा से मुकेश कुमार, श्रद्धा गुप्ता, दीति राधे गुप्ता, दीपक और अंकुर राघव ने मैसेज किया है। सतीश अनेजा ने विमल अनेजा जी ने चंडीगढ़ से हमें मैसेज किया है। और प्यार भरा नमस्कार सभी को, पीएस नावकर जी लिख रहे हैं, निर्मला नवावकर, पीएस नवावकर, और नलवेश्वर नलवेश महाराज से विशाल नवावकर, और मलकापुर महाराज से सुपान तान। बहुत सारे मैसेज हमें आए, वंडीखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, टिंग पिंकी, लवली आरती अरोड़ा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह से जुड़े रहिएगा और सुनिए हमारा अगला ये नगमा इसी फिल्म से।

अरे जो है तुम्हारी जात रे भाई ओही हमारी जात। ना तुम हो यार आलू।

और बहुत सारे मैसेज हमें आए बागपत से, उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार जी का मैसेज आया। जिन जिन के मैसेज अगर आ रहे हैं और मैं नाम ना पढ़ पाऊं तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा, अगली बार जरूर शामिल करूंगी।

0: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला जी का हमें मैसेज आया है, हीरामणि जी का मैसेज आया है हमें। उसी तरीके से हमारे पास नागर कोहला जिला राजनांदा छत्तीसगढ़ से बबलू जामुन प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा बेबी आराध्या का मैसेज आया है, और इसी तरीके से हमारे पास नवाब खान जी का मैसेज आया है, और इश्तेहाब सागिर का जो मैसेज आया है हमें वारली मुंबई से, बहुत सारे मैसेज आए हैं हमें। और इसी ही तरीके से आपने प्यार हमें भेजा, मसरूर हसन जी का मैसेज हमें आ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। संदीप मकर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजीत भावसकर जी, प्रकाश वर्मा जी का, और इसी तरीके से संदीप मकर जी का मैसेज, भागवत वर्मा जी का, शांति लीलावती विनीता रुद्र वर्मा और संतोष खाड़से का मैसेज हमें आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह से सोमदत्त जी का भी बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए हमारे पास। और हम इस फिल्म में बात कर रहे हैं 10 नंबरी के बारे में, तो प्राण साहब ने इस फिल्म में जो किरदार निभाया है वो पूरी फिल्म में कहते ना कि एक अलग ही जान उन्होंने डाल दी, और उन्होंने इस फिल्म में दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए कई अलग अलग रूप और वेशभूषाएं बदली, जिसे दर्शकों ने बहुत ही पसंद किया, और लगभग 1 करोड़ का बजट में ये बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस में करीब 4.5 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई थी, और देखिए 1976 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक ये फिल्म रही।
1: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
2: अच्छा
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती,
2: बाप रे

बहुत सारे मैसेज हमें आए, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप गुरनूर, अविराज, और इसी तरीके से AK फिल्म से बबलेश पवार के इसी मैसेज हमें बहुत मैसेज आए हैं, और इसी तरीके से देव शंकर जी तमोरिया का मैसेज आया है, अजीत भास्कर का, अनिल मोहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र दर्क सुथकर का जी का मैसेज आया है, हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेत सुधार मनोज जी का भी मैसेज हमें आया है, और संजय ढींगिया जी का, उषा मोहन जी का, धर्मेंद्र छिप्पा जी का, रोशन देवगन, धर्मेंद्र छिप्पा, संतोष जी, स्वर्ण सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के।

मैसेज आने का, इसी तरीके से हिरमानी वर्मा जी, हीरामणि जी का, और इसी तरह से हमें प्रोग्राम में अपने प्रतिक्रियाएं भेजते रहिएगा और हमें हमें याद कीजिएगा, क्योंकि तो दोस्तों समय बहुत कम रह गया है, तो जाते जाते बस यही कहूंगी कि आप सुनते रहें आप आपका अपना ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इस कार्यक्रम को मैं लेती हूँ यहीं समाप्ति। कुछ करें ऐसा जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट और आपके दिल को दे सुकून, और जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगी, एक सभ्य और नेक नागरिक बने, कैसे कि अगर कहीं मेट्रो में आप जा रहे हैं तो सीट बुजुर्गों को जरूर दें और जो जरूरतमंद है उनको जरूर दें। तो रैना तंवर को लेती है इस कार्यक्रम से इजाजत, फिर मिलेंगे नई फिल्म नए गीत के साथ, और मुस्कुराते रहें, खुश रहें, गम बहुत है जमाने में यारो, गम बहुत है जमाने में यारो, खुश रहना एक बहाना ही है, एक बहाना ही है खुश रहने के लिए, काफी है दोस्तों। तो सुनते रहें आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है हमारे पंजाबी उर्दू और इंग्लिश हिंदी समाचारों का।
1: उर्दूज खबर सुनोगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिना दे सरकारी दौरे ते मंगोलिया पहुंचे। भारत ते मंगोलिया दरम्यान विशेष भाईवाले नूं अगे वधाउण लई सुचारू चर्चा होण दी उम्मीद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज मध्य प्रदेश विच स्योपुर जिले दे कुनो नैशनल पार्क विखे चीता मित्रा अते सेरिया कबीले दे मैंबरां नाल गल्लबात कीती। पछमी बंगाल सरकार वल्लों अज महंगाई भत्ते विच 20% वाधे दा ऐलान। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी एनटीए वल्लों यूजीसी नेट जून 2026 दी प्रीख्या अज तो शुरू हुई। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ समेत कई सूबियां च गर्ज चमक नाल मीह पैण बारे येलो अलर्ट जारी कीता। ते हुण खबरां विस्थार नाल। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज तो दो दिना सरकारी दौरे ते मंगोलिया पहुंच गए ने। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच यह जानकारी सांझी कीती। उन्होंने कहा कि वह भारत ते मंगोलिया दरम्यान विशेष भाईवाली नूं अगे वधाउण लई सुचारू चर्चा की उम्मीद करते ने। इस दौरे दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया की लीडरशिप नाल मुलाकात करेंगे अते मंगोलिया के विदेश मंत्री बाटमुख बातसेत सेख नाल मुलाकात करेंगे। दौरे दे दूजे गेट ते विदेश मंत्री बुधवार अते वीरवार नूं दक्षिणी कोरिया दी यात्रा करनगे। इस फेरे दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून नाल चर्चा करनगे। ओ वीरवार नूं जेजू विच शांति ते खुशहाली लई जेजू फोरम च मुख भाषण भी देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज मध्य प्रदेश विच स्योपुर जिले दे कुनो नैशनल पार्क विखे चीता मित्रा अते सेरिया कबीले दे मैंबरां नाल गल्लबात कीती। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता विच उन्हां दे योगदान दी शलाघा कीती ते कहा कि इस प्रोजेक्ट दी सफलता च स्थानक भाईचारयां दी सरगर्म हिस्सेदारी अहम भूमिका निभा रही है। इस तों पहलां राष्ट्रपति कुनो नैशनल पार्क विच सफारी कीती अते चीता मुड़ वसेवा प्रोजेक्ट दी प्रगति दा जायजा लिया। उन्हां ने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर दा दौरा कीता। उन्हां प्रोजेक्ट चीता ते लगी प्रदर्शनी भी देखी अते जानवरां दी निगरानी ट्रैकिंग ते सांभ संभाल लई कीते जा रहे उपरालियां बारे जानकारी लई। प्रोजेक्ट चीता दी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 च नामबिया तो लैंदे गए 8 चीतियां नूं कुनो नैशनल पार्क विच छड्डे जाण नाल कीती सी। इस तों बाद दक्षिणी अफ्रीका अते बोत्सवाना तों होर चीते लैंदे गए। लगातार सांभ संभाल ते उपरालियां नाल कुनो विच चीतियां दी आबादी लगातार वध रही है जो भारत दे जंगली जीव संभाल प्रोग्राम च इक महत्व

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया है, जिसमें समाजी बहबूद, बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई है। खवातीन के लिए मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर मंगोलिया के अपने हम मनसब के साथ इकतसादी राबतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के मामले पर बातचीत करने वाले हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज आसाम और मेघालय में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप में अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया है, जिसमें समाजी बहबूद, बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई है। खवातीन के लिए मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया है। रियासती सरकार के मुलाजमीन के महंगाई भत्ते में 20% का इजाफा किया गया है। रियासत के वजीर खजाना स्वपन दास गुप्ता ने शुभेंदु अधिकारी सरकार के पहले बजट में ये ऐलान किया। इस तरह मजमुई महंगाई भत्ता 38% हो जाएगा। इसका इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती सरकार समाजी बहबूद की सभी मौजूदा स्कीमें जारी रखेगी। वजीर खजाना ने यह ऐलान भी किया कि रियासती सरकार के स्कूलों और सरकार की इमदाद से चलने वाले स्कूलों में लड़कियों को 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। जनाब स्वपन दास गुप्ता ने असेंबली में यह ऐलान भी किया कि सरकार मुख्तलिफ खाली ओहदों के लिए 1,00,000 अफराद की भर्ती करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती सरकार खातून उम्मीदवारों के लिए 33% खाली ओहदे रिजर्व करेगी। रियासत के वजीर खजाना ने MLA के मकामी एरिया तरक्याती फंड को 70,00,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस फोर्स में 20,000 सीटों पर तकरूरी की जाएगी। शुमाली बंगाल में एम्स अस्पताल और कैंसर अस्पताल कायम किया जाएगा। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 2 रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में हो रही है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल इस मीटिंग

0: की सदारत कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर और वफूद के सरबरा आज दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। वो उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात के ताल्लुक से नई टेक्नोलॉजियों के रोल के साथ साथ कौमी सिक्योरिटी चैलेंजों की तेजी के साथ बदलती हुई

0: के मुश्तरका वर्किंग ग्रुपों की हालिया मीटिंगों के नतीजों का जायजा भी लेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मामला भी जेरे गौर आया था। दिल्ली से रिशु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग के बैन अल-अक़वामी दिन की अजीम कामयाबी इस हकीकत की अक्कासी करती है कि योग से न सिर्फ दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जिस्मानी तंदुरुस्ती बरकरार रखने में मदद मिल रही है, बल्कि इससे उन्हें एतमाद के साथ मुस्बत जिंदगी जीने की तरगीब भी हासिल हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग जहन को पूरी तरह सुकून और तस्कीन देने का अहम वसीला है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुर में कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया कबीले के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके रोल को सराहा और कहा कि मकामी बिरादरियों की सरगर्म शमूलियत चीतों को महफूज रखने के प्रोग्राम की कामयाबी में अहम रोल अदा कर रही है। इससे कबल सदर जमहूरिया कूनो नेशनल पार्क में एक सफारी पर गई और चीतों की बहाली के प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुतालिका एहलकारों ने सदर जमहूरिया को बताया कि सरदस भारत में 52 चीते हैं और उनमें से 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं। 3 चीतों को जंगली जानवरों की गांधी सागर पनाहगाह में मुंतकिल किया गया है। प्रोजेक्ट चीते का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2022 में किया था। उस वक्त नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाकर छोड़ा गया था। इसके बाद जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते वहां लाए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नाशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर दो मुल्कों के सरकारी दौरे के पहले मरहले में मंगोलिया पहुंच गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो भारत और मंगोलिया के दरमियान खसूसी साझेदारी को आगे बढ़ाने की खातिर मुफीद तबादला ख्याल और बातचीत के मुंतजर हैं। अपने इस दौरे में वजीर खारजा मंगोलिया के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और अपने हमनसब के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर अपने दौरे के दूसरे मरहले में बुध को 2 दिन के दौरे पर जनूबी कोरिया जाएंगे। वो अपने हमनसब चो ह्यून के साथ तबादला ख्याल करेंगे और जुमेरात को जेजू के मकाम पर अमन खुशहाली से मुतालिक जेजू फोरम में क्लीदी खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने मशहूर मारूफ जरई साइंसदान और पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता सरदारा सिंह जोहल से आज लुधियाना में मुलाकात की और पंजाब के जरई बहरान पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद जनाब नबीन ने कहा कि एक ऐसी शख्सियत से बातचीत उनके लिए बायस इफ्तिखार है जिसने ज़राअत के शोबे में गैर मामूली ताउन किया। उन्होंने कहा कि जनाब सरदारा सिंह के साथ बातचीत के दौरान उन्हें ज़रई मामलात पर अहम मालूमात हासिल हुई और उन्हें एतमाद है कि उनके नज़रियात और मशवरे मुल्क के लिए सूदमंद साबित होंगे।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: इत्तेहाद और नशरियात और पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर ममलुकत डॉक्टर एल मुरुगन आज मध्य प्रदेश के 2 रोजा दौरे के तहत भोपाल पहुंचेंगे। डॉक्टर मुरुगन आज शाम भोपाल हवाई अड्डे पहुंचेंगे और वहां से वो रियासती गेस्ट हाउस की जानिब रवाना होंगे, जहां वो भोपाल जिला कलेक्टर के साथ एक मीटिंग करेंगे। कल वो देवास जिले के कनोड तहसील के दोकाकुई गांव जाएंगे, जहां वो एमपीलैड स्कीम के तहत मंजूरशुदा मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे। उमूर खारजा से मुतालिक पार्लियामानी कायम कमेटी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 4 दिन का मुतालियाती दौरा शुरू कर दिया है। इसका मकसद किलीदी सरहदी सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी मामलात का जायजा लेना है। मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर इस कमेटी के चेयरपर्सन हैं। हमारे नामानिगार ने बताया है कि यह कमेटी सरहदी बंदोबस्त और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सूरतहाल का बरसर मौका जायजा लेने के लिए इस महीने की 25 तारीख तक जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह का दौरा करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज आसाम और मेघालय में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने जेली हिमालयी मगरबी बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, ओडिशा और शिमाल मशरक हिस्सों में कहीं कहीं कल तक शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार जजायर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। آئی ایم ڈی کے مطابق چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، ودربھ اور تلنگانہ میں کل

0: तक गर्मी का जोर जारी रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज सुबह वैंकूवर में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 1-3 से हराकर वर्ल्ड कप में अपनी अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। लिवरपूल के सरकर्दा खिलाड़ी मोहम्मद साहले ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ ही मिस्र की टीम ग्रुप जी में सरफहरिस्त आ गई है। इससे कबल आज फ्लोरिडा में ग्रुप एच के एक मैच में केप वर्ड और यूरुग्वे का मुकाबला 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ। आज के मैचों में ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 शुरू होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया है, जिसमें समाजी बहबूद, बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई है। खवातीन के लिए मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर मंगोलिया के अपने हमनसब के साथ इकतसादी राबतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के मामले पर बातचीत करने वाले हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज आसाम और मेघालय में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप में अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. In a major employment and welfare push, the BJP-led West Bengal government today presented its first full budget 2026-27, focusing on social welfare, infrastructure development and employment, and also announced a slew of women-centric schemes. Presented today by Finance Minister Swapan Dasgupta, has announced the recruitment for 1 lakh vacant posts across various state departments. 33% of these new positions will be reserved for women. We have a detailed report from our Kolkata correspondent.
2: The government proposed a 20% hike in dearness allowance for government and semi-government employees, teachers and teaching staff. Pensioners will also benefit from this increase, which will take effect from 1st October. Presenting a deficit budget of 6,070 crore, Finance Minister Swapan Dasgupta called it a roadmap for building a developed Bengal. He also revealed that the state's debt now stands at over 8 lakh crore rupees, making financial discipline a major challenge. The budget includes recruitment for 1 lakh vacant posts, 20,000 in the police force and 50,000 teachers. 33% of these jobs will be reserved for women, with an additional 10% reserved for Agnivids. Key allocations include rupees 36,000 crore for the Annapurna Yojana, over rupees 8,500 crore for agriculture, rupees 8,000 crore for food and supplies, rupees 7,000 crore for higher education, and nearly rupees 18,000 crore for home and health affairs. The government also announced salary hikes for para teachers, civic volunteers, and village police. Anganwadi and ASHA workers will receive an additional rupees 5,000 monthly honorarium, while midday meal cooks will get rupees 1,000 more. Further measures include setting up a tea board for workers' welfare, Ayushman Bharat health cards for migrant laborers, and the One Nation One Ration scheme. In his speech, the finance minister pledged to build a corruption-free administration, promising citizen services that are simpler, more transparent and accountable. Sandipan Dasgupta, Akashvani News, Kolkata.
1: The BRICS National Security Advisors meeting is underway in New Delhi. The two-day meeting, being chaired by National Security Advisor Ajit Doval, brings together security chiefs

0: the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित

0: प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह,

0: घोटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन

0: स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं, जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है दोपहर के 2:30 और ये हुए पूरे 18 सेकंड। स्वागत है आप सभी का हमारी सभा में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम, जी हाँ, जिसका आपके साथ हमें भी बेसब्री से रहता है इंतजार। कार्यक्रम है एक ही कलाकार, और आज आपके साथ इस सफर में आपकी रेडियो हम सफर हूँ मैं सोनाली। तो बस कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार, और आपके समक्ष पेश कर रही हूँ ये गाना, और आप मुझे बताएं कि आज के हमारे कलाकार कौन है। और आपको बस इतना बता दूँ कि ये जो कलाकार हैं ये आपको पर्दे पर नजर नहीं आएंगे, ये पर्दे के पीछे के हैं। और ये पर्दे के पीछे के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। तो बस इतनी हिंट मुझे लगता है बहुत है। अब आप लोग मुझे बताइएगा इस गाने को सुनकर कि ये हम किस कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं फिल्म दादी माँ से ये गीत। और हमने आपसे पूछा था कि हमारे आज के कलाकार कौन हैं, तो देखिए बस हमें इंतज़ार है आप लोगों की जवाब का। बस आपको बता दें कि हमारे जो आज के कलाकार हैं वो बेहतरीन निर्माता और निर्देशक रहे हैं, और उन्हीं की फिल्मों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और उनके जीवन के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये फिल्म में अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और मन्ना डे के साथ इनकी युगल फिल्मों में ये गीत था। और हम आपको बता दें, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं, जी हाँ दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ निर्माता या निर्देशक कहकर नहीं पुकारा जा सकता। एलवी प्रसाद, जी हाँ, हमारे आज के कलाकार एलवी प्रसाद ऐसा ही एक नाम है। 17 जनवरी 1908 को आंध्र प्रदेश के सोमवर रुपाड़ गाँव में जन्मे लक्ष्मीवर प्रसाद राव सपनों की तलाश में मुंबई पहुंचे। संघर्ष इतना था कि कई बार भूखे दिन भी उन्होंने देखे, लेकिन सिनेमा से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। दोस्तों, आपको बता दें, यही वह कलाकार थे जिन्होंने भारत की पहली हिंदी बोलती फिल्म आलम आरा, पहली तेलुगु बोलती फिल्म भक्त प्रहलाद और पहली तमिल बोलती फिल्म कालिदास में अभिनय किया। आगे चलकर यही युवक भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित नामों में शामिल हुआ, जिनका नाम है एलवी प्रसाद, जो है हमारे आज के कलाकार। तो देखिए, हमने बात की, आपको बता दिया, तो बस आप भी हमारे साथ रहें और आइए सुनते हैं उनकी ही फिल्म का एक और गाना। और ये जो फिल्म मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये फिल्म है मिलन। और मिलन की तो खैर बहुत सारे गाने हमने लगातार सुने हैं, पर ये जो गाना है ये थोड़ा सा अलग हटके है। तो आइए सुनते हैं एलवी प्रसाद द्वारा निर्मित ये फिल्म मिलन का ये गीत।

जी हाँ, यही था फिल्म मिलन का गाना। और हमारे आज के कलाकार हैं, जैसे हमने आपको बताया, निर्माता निर्देशक एलवी प्रसाद। तो हम बात कर रहे हैं उन्हीं की फिल्मों के बारे में। एलवी प्रसाद की फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सहजता। परिवार, रिश्ते और जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ उनकी कहानियों का हिस्सा बनती थी। मसलन जो फिल्में हैं, जैसे शारदा, छोटी बहन, बेटी बेटे और दादी माँ जैसी फिल्मों ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई और उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ घर आंगन की खुशबू भी महसूस होती थी। तो ये हैं हमारे आज के कलाकार। और देखिए, हमारे दोस्तों ने हमें बिल्कुल बखूबी बता दिया है कि हमारे आज के कलाकार कौन है। तो हमारे साथ कौन है ये? जी, ये पंकज शर्मा जी हैं और इनके साथ हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, किरण ठाकुर, शशि बल्ला, जगमोहन प्रजापति, आमिर, रमेश कुमार, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर हमारे साथ हैं हमारे और भी दूसरे श्रोता, उनके नाम आपको बता दें। फारूक अली खान हैं, ये कस्बा गुन्नौर यूपी से हैं और इन्हें ये वाला गाना बहुत पसंद आया, तो ही सवरिया ना ही खबरिया। शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। और देखिए, फिर हैं हमारे साथ तुलसी मस्कीन जी, ये लिख रहे हैं, होस्ट सोनाली जी नमस्कार, एक ही कलाकार में आज एलवी प्रसाद जी के बारे में जानकारी, बहुत उम्दा शो में पेशकश गीत, एक से एक सुपर लवली सॉन्ग, हम हो गए परदेसी। जी हाँ, ये गाना बहुत अच्छा है, शुक्रिया, आपको भी पसंद आया इसके लिए। ये है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। तुलसी मस्कीन जी, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से हैं, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना और फिर धर्मेंद्र छिपा जी हैं और इन्होंने इन्हें अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, धन्यवाद। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं, इनके साथ हैं कपिल चीपा, पूजा परिहार। फिर हैं अनिल मोहन जी, ये हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। उषा मोहन टिल्लू नायक हैं और धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलवी प्रसाद जी की। तो जिस तरह से हमने बात की उनकी फिल्मों की, तो आइए सुनते हैं एक और गाना, फिर बताते हैं हमने इसे कौन सी फिल्म से लिया है। अगर आप भी जानते हो तो आप भी हमें बताइए ना कि ये जो गाना मैं आपके लिए अब लेकर आई हूँ, ये कौन सी फिल्म का है।

फिल्म बेटी बेटी से आप ये सुन रहे थे गाना, और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, आवाज थी मोहम्मद रफी के साथ सुमन कल्याणपुर की। और देखिए, हमारे दोस्तों को ये चीज़ ना पता हो, ऐसा कभी हो सकता है, तो ये हमें बिल्कुल सही चीज़ लिखी है अमीना साबिर हुसैन मिरासी मोहम्मद बेगम ने, गांव घिटोरनी नई दिल्ली से, और बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही लिखा है। और फिर ये हमारे साथ हैं, जी हाँ, ये हमारे दोस्त कौन से हमारे साथ हैं, ये हैं नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए। फिर ये हैं बिल्कुल तुलसी मस्किन जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये फिल्म बेटे बेटे का है, और गायक स्वर भी आपने बता दिया रफ़ी जी और सुमन कल्याणपुर। और फिर हमारे साथ हमारे और भी दोस्त जुड़े हैं, जैसे हैं हमारे साथ खनीसर गोट कराची से अमर चानीसर गोट कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, शंकर गुल शर्मा। मैडम जी, आपका प्रोग्राम सुन रही हैं, वेरी नाइस ब्यूटीफुल सॉन्ग कलेक्शन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। फिर ये संदीप मक्कड़ हैं, और इनके साथ हैं ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर पंजाब से। सुदर्शन मुखी जी, आपने भी बिल्कुल सही लिखा है फिल्म बेटी बेटी, धन्यवाद। और ये अमर रमेश कुमार खत्री, जी हाँ, आपने भी

अच्छा हमने आपको बता तो दिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, फिल्म बेटी बेटी। और ये है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और इन्हें ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं निर्माता, निर्देशक और कलाकार एक्टर एलवी प्रसाद की। तो निर्देशक के साथ ही ना एलवी प्रसाद एक दूरदर्शी निर्माता भी थे, जैसे उनकी फिल्म है ससुराल, हमराही, मिलन, राजा और रंक, खिलौना, जीने की राह और बिदाई। ये ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने लोकप्रियता के नए आयाम स्थापित किए। उनकी फिल्मों के पात्र और रिश्ते दर्शकों को अपने लगते थे और शायद यही उनकी सबसे बड़ी सफलता भी थी। तो अभी हमने बात की है उनकी राजा और रंक फिल्म की। तो देखिए, अगर हम आपको उस फिल्म के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन उनकी जो एक मास्टरपीस है खिलौना, खिलौना मतलब संजीव कुमार का गजब का अभिनय और साथ में मुमताज़ की मासूमियत। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने एक्टिंग के साथ साथ निर्माता, निर्देशक और एक ऐसी फिल्म सारे दर्शकों को दी जो आज भी एक मील का पत्थर, एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। खिलौना के बारे में आपसे अलग से किस दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम आपको एलवी प्रसाद जी द्वारा जो निर्मित फिल्म है खिलौना, उसका एक गाना जरूर यहाँ पर सुनाएंगे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्म खिलौना का ये गीत मोहम्मद रफी के स्वरों में। तो ये तो फिल्म खिलौना का टाइटल सॉन्ग था। हम बात कर रहे हैं प्रसाद साहब के निर्माता और निर्देशक के रूप में जिन्होंने फिल्म बॉलीवुड को दी उसके बारे में। उनकी एक और फिल्म की अभी हमने बात की थी, फिल्म थी ससुराल। अब ससुराल में आपको याद होगा एक बहुत प्यारा सा गाना है और ये फिल्म आया है किस पर, राजेंद्र कुमार और बी सरोजा देवी पर। तो आइए वो गाना सुनते हैं और फिर हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे।

भाई आप लोगों की भी प्यारी प्यारी बातों को किसी की नजर ना लगे, कितने प्यार से आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। तो देखिए आप लोगों को खिलौना का गाना पसंद आया, इसके लिए बहुत शुक्रिया अनिल मोहन जी। और फिर हमारे साथ जुड़े हैं स्वर्ण सिंह जी, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अभिराज सिंह।

यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। दोस्तों, एलवी प्रसाद साहब के बारे में बातें बहुत हैं और हम उनके बारे में आपको इतना बता दें कि बाकी दोस्तों के नाम भी मैं शुमार करूंगी, लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि सिर्फ ना प्रसाद साहब ने फिल्में ही नहीं बनाई बल्कि भारतीय सिनेमा की तकनीकी विकास में भी बड़ी भूमिका निभाई। प्रसाद प्रोडक्शंस, प्रसाद स्टूडियो और प्रसाद फिल्म लैब के माध्यम से उन्होंने फिल्म उद्योग को नई दिशा दी। उनके योगदान के लिए उन्हें 1982 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब मैं आपको फिल्म हमराही का एक गीत दे रही हूँ, आप इसे सुनिए और फिर हम आगे बात करेंगे।

फिल्म हमराही की आपको सिर्फ मैंने एक झलक सुनाई इस गीत की, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे तो आप लोगों को थोड़ी सी कमी जरूर लगेगी। फिल्म है एक दूजे के लिए, जिसे 1981 में आई थी और इसके निर्माता थे हमारे आज के कलाकार एलवी प्रसाद। तो हम चलते चलते आपको वो गाना सुनाते हैं और बस फिर इस कार्यक्रम को हम किसी और दिन एलवी प्रसाद साहब की बातों के साथ और आगे बढ़ाएंगे। आइए सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत।

आप सभी को भी मेरा सलाम, क्योंकि अब मैं आपसे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगी। चलते चलते अपने सारे दोस्तों को बता दूं जो हमारे साथ जुड़े हैं। जी हाँ, सुदर्शन मुखी जी जुड़े हैं, राजेश सेन, प्रवीण हागुनी, अनिल मोहन जी, स्वर्ण सिंह, पंकज शर्मा जी, फागुराम यादव, प्रकाश वर्मा, निसार अली जी, इसाक मोहम्मद साहब, पी एस नावकर साहब, देवशंकर तामूरिया, उदयभान पाल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। आप लोग रहते हैं हमारी हौसला अफजाई करते हैं। इस गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। अपनी रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए आज किस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरी व्यू 366.3 मीटर। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में हम आपके लिए लेकर आएंगे पद्मभूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास पर केंद्रित रूपक हमने सूरज को चलते फिरते देखा था। आइए सुनते हैं ये विशेष प्रस्तुति।
1: महाकाल नगरी उज्जैनी की सांस्कृतिक चेतना के सशक्त संवाहक पद्मभूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास की 50वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है रूपक हमने सूरज को चलते फिरते देखा था का पुनः प्रसारण। आलेख अशोक अग्रोही, प्रस्तुतकर्ता डॉ. संजय सिंह वर्मा।

मैं उज्जैनी बोल रही हूँ, मालवा के गौरवशाली अतीत की साक्षी। साहित्य संस्कृति की प्राचीन परंपरा को अपनी गोद में संजोए विक्रमादित्य के विक्रम की शौर्य स्थली और कालिदास की कविता भूमि। मेरे आंचल से प्रवाहित क्षिप्रा नदी ने संस्कृति और आध्यात्म की वो धारा प्रवाहित की जिसके स्मरण भर से ही मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है।

0: और मैं उज्जैनी का गौरवशाली इतिहास हूं। मैंने वीर विक्रमादित्य के शासन का स्वर्ण काल देखा है। मैं उसकी अनुपम न्याय व्यवस्था और पराक्रम का साक्षी हूं। मैंने प्राचीन वैभव देखा है तो वर्तमान के स्वाभिमान का एक ऐसा सूर्य भी देखा है जो कभी अस्त नहीं हुआ।
1: हां, मैंने भी देखा है उस सूर्य को। उसका उदय 2 मार्च 1902 को मेरी ही मिट्टी से हुआ था। उज्जैनी के गौरवशाली अतीत को पुनः प्रतिष्ठित करने वाले विक्रमादित्य के शौर्य और कालिदास की कल्पना को पुनर्जीवित करने वाले उस सूर्य का नाम था पंडित सूर्य नारायण व्यास।
0: महर्षि सांदीपनि के वंश में उदित उस सूर्य का नाम सूर्य नारायण व्यास ही था। इस सूर्य की ओर जिसने भी देखा, एक नई दृष्टि से देखा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है,
2: व्यास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर कार्य किया। उन कठिन दिनों से निकलकर उन्होंने अपने लिए इतना बड़ा स्थान प्राप्त किया, जो इस बात का साक्षी है कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अगर आगे बढ़ने का प्रयास कर ले, संकल्प कर ले, तो कोई बाधा उसके मार्ग में आ नहीं सकती।
1: प्रख्यात इतिहासकार G.S. करंदीकर उन्हें जीवित विश्वकोश मानते थे। उनके स्वर में स्वर मिलाते पंडित जी के शिष्य प्रोफेसर घनश्याम पांडे।
3: व्यास जी जो ज्ञान अगाध था, वो ज्योतिषाचार्य के अतिरिक्त बड़े साहित्यकार, मुक्तक, कविताएं और इतिहास के बड़े ज्ञाता थे। उनकी कहानियां बहुत ही रोचक होती थी, ज्यादातर पौराणिक कहानियां। तत्कालीन राजाओं के संबंध में बहुत सी कहानियां वह बताया करते थे।

0: पंडित सूर्य नारायण व्यास का शैशव पंचमुखी हनुमान जी के देवालय और महाकाल मंदिर के प्रांगण में व्यतीत हुआ। उनके पिता श्री नारायण व्यास स्वयं संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे, इसलिए संस्कृत और ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान उन्होंने अपने ऋषितुल्य पिता से ही प्राप्त किया। आगे की शिक्षा उन्होंने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में ग्रहण की।
1: जिस समय व्यास जी युवा हुए, उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। एक योद्धा की तरह व्यास जी भी इस संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने क्रांतिकारी लेख लिखे, पर्चे बांटे, पोस्टर छापे और राष्ट्र यज्ञ कैलेंडर प्रकाशित किया। बाद में सेठ गढ़ोदिया डकैती कांड के प्रमुख क्रांतिकारी अभियुक्तों को अपने घर में छुपाया।
0: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद कई बार आकर व्यास जी से मिलते रहे। उन्हीं दिनों भगत सिंह ने जेल में आयरिश क्रांतिकारी डैनियल डैनब्रीन की संघर्ष कथा का अनुवाद किया। व्यास जी ने उसे छपवाकर वितरित कराया। काकोरी कांड के वीरों की सहायता के लिए उन्होंने घर घर जाकर धन एकत्रित किया। अंग्रेजी राज ने उन्हें ऐसे लोगों की सूची में शामिल कर लिया जिनसे सरकार को भय था।
1: क्रांतिकारी कॉमरेड रामचंद्र सोनी।
2: क्रांतिकारियों के साथ में तो उनने इतना बड़ा काम किया है कि जो ठाकुर निरंजन सिंह जो थे वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे क्या, और उनको कैसे उन्होंने उस वक्त रखा, अब इसी से आप पता लगा लीजिए।
0: सन 1942 के आंदोलन के प्रभाव से वे भी अछूते ना रह सके। उन्होंने अपने घर भारती भवन से 42 मीटर बैंड का एक गुप्त रेडियो आरंभ कर अपनी तरफ से भी क्रांति घोष कर दिया।
3: हमें भी अगर अंग्रेजों से आजादी हासिल करनी है तो हर तरह की कुर्बानी देनी होगी। इस समय हम न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख है, न ईसाई, अगर कुछ है तो वो है हिंदुस्तानी। आइए घर से बाहर निकलिए और शामिल हो जाइए आजादी की इस जंग में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
1: व्यास जी का क्रांतिकारी पक्ष जितना प्रभावशाली था, साहित्य पक्ष उससे भी अनूठा। देश की सीमाएं पार कर उनकी ख्याति यूरोप तक पहुंच चुकी थी। 1937 में जब वे इंग्लैंड पहुंचे तो ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने महल में उनका स्वागत किया। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से भी हुई। यूरोप की इस यात्रा के संस्मरण उन्होंने अपनी पुस्तक सागर प्रवास में लिखे हैं। पद्मभूषण शिवमंगल सिंह सुमन इसे यात्रा साहित्य में मील का पत्थर मानते हैं।
4: हम धन्य हैं कि सुरनारायण जी व्यास इतनी बड़ी निधि हमको दे गए, जिसके बल पर उज्जैन सारे राष्ट्र में नहीं सारे विश्व में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर सकेगा। उसके गौरव से हम गौरवान्वित होंगे, सारा विश्व गौरवान्वित होगा।
0: व्यास जी ने 18 वर्ष की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। 1942 में उन्होंने मासिक पत्रिका विक्रम का प्रकाशन आरंभ किया और 1958 तक उसे चलाया। अकेले विक्रम में व्यास उवाच और बिंदु बिंदु विचार शीर्षक से उन्होंने 2538 पृष्ठों के संपादकीय लिखे।
1: व्यास जी गुजराती, मराठी, बांग्ला, संस्कृत और हिंदी के मर्मज्ञ थे। उन्होंने 50 से अधिक ग्रंथों का सृजन और असंख्य ग्रंथों का संपादन किया। वे एक श्रेष्ठ व्यंगकार, कवि, निबंधकार, इतिहासकार तो थे।

0: प्रखर पत्रकार और संपादक भी थे। भारतीय ज्ञानपीठ के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रभाकर क्षोत्रिय।
1: विक्रम का जो संपादकीय है, एक तरफ वो बोल्शेविक क्रांति की बात भी करते हैं, देशी राजाओं की बात करते हैं, देश में महंगाई की बात करते हैं, अंग्रेजी तंत्र की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, तत्कालीन जो स्थितियां हैं उसकी, यानी इतने पक्ष हैं उसके संपादकीय का, आखिरकार 6-8 हजार पृष्ठों में, और पढ़े ज्यादा दोहराया नहीं हमने।
2: वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता।
3: संपादक के लिए जो बड़ा कर्तव्य होता है उसका एक समाज का जो आईना है वो दिखाया जा सके जनता को, और उस समय में जब स्वतंत्रता की प्रारंभिक किरणें आई और उसके बाद किस तरह से देश में जिस तरह से प्रगति हो रही थी, समाज में कुरीतियां रही, विश्वास रहे, गुलामी की एक मानसिकता रही, उससे उबारने के लिए पंडित सूर्यनारायण व्यास ने समाज में जागृति लाने के लिए अपने लेखन का उपयोग किया।
0: पंडित व्यास ने विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम कीर्ति मंदिर, सिंधिया प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान और कालिदास अकादमी की स्थापना की और प्रतिवर्ष होने वाले कालिदास समारोह की नींव रखी। इस समारोह को लेकर पंडित जी बहुत संवेदनशील थे।
4: पंडित जी, लगता है आप आज के समारोह से खुश नहीं है।
5: खुश तो हूँ पर पूरी तरह से नहीं।
4: पर वो क्यों?
5: मैं इसे और बड़े स्तर पर आयोजित करना चाहता हूँ। इसके माध्यम से मैं लोगों में देश के गौरव का भाव जगाना चाहता हूँ।
4: वो कैसे?
5: देखो, ऐसा है, हमारी आजादी की लड़ाई में जिन नेताओं ने भाग लिया है उनमें से अधिकतर विदेशों से पढ़कर आए हैं।
4: हाँ।
5: इसलिए वे भारतीय संस्कृति, दर्शन और कला से अनभिज्ञ है। वे शेक्सपियर तो करते हैं किंतु कालिदास को नहीं जानते हैं।
4: सही बात है।
5: मैं चाहता हूँ कि कालिदास और विक्रमादित्य के माध्यम से वे अपने भारत के गौरवशाली अतीत को जाने और उस पर गर्व करें।
4: पंडित जी, अब आपके मन में क्या है?
5: हम अपने स्तर पर तो कालिदास समारोह मनाते ही हैं, परंतु हमारे प्रयासों से अब चीन और रूस में भी ये समारोह हो रहे हैं।
4: अच्छा।
5: और मैं चाहता हूँ हमारे देश में हर वर्ष अखिल भारतीय कालिदास समारोह आयोजित किया जाए। यही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी इसका धूमधाम से आयोजन हो।
4: ये तो बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी आपने।
5: और इसलिए हम चाहते हैं कि अगले वर्ष इसके उद्घाटन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया जाए।
4: बिल्कुल सही।
2: व्यास जी के विचार का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि कालिदास समारोह एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए।
0: परिणाम ये हुआ कि व्यास जी द्वारा 1928 में उज्जैनी में शुरू किए गए कालिदास समारोह ने 1958 तक आते आते केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कालिदास समारोह का रूप ले लिया। 1958 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था,
6: महाकवि कालिदास की बात करने के बाद कालिदास समारोह का आयोजन करना और इस बात की चिंता करना कि प्रतिवर्ष उज्जैनी में वो समारोह मनाया जाए, इसके लिए किसी सूर्य नारायण व्यास की आवश्यकता थी।

0: उज्जैन के लेखक और पत्रकार डॉक्टर शिव शर्मा।
1: महाकवि कालिदास को उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उनकी स्मृति को अक्षुण बनाने के लिए। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एक संगारिक कवि कालिदास, जो उन दिनों में उपेक्षित हुआ करते थे, उनका अलग जगह

0: गया। वो बताया कि ये विश्व की महान धरोहर महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं।
1: व्यास जी के प्रयासों से सोवियत रूस में महाकवि कालिदास पर डाक टिकट निकला। बाद में उन्हीं के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में भी 1958 में महाकवि कालिदास पर डाक टिकट जारी हुआ।
2: व्यास जी की प्रेरणा से प्रकाश पिक्चर्स ने 1942 में पृथ्वीराज कपूर को लेकर सम्राट विक्रमादित्य फीचर फिल्म का निर्माण किया। इसके अलावा भारत भूषण और निरूपा राय को लेकर उन्होंने कवि कालिदास फिल्म का निर्माण कराया। इन दोनों फिल्मों को दर्शकों ने इतना सराहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने गोल्डन और कवि कालिदास ने सिल्वर जुबली मनाई।

0: कान।
1: फिल्म कवि कालिदास के आरंभ में ही निर्माता ने व्यास जी के प्रति आभार व्यक्त किया।
2: उदिंद्र फिल्म अपने परिवार सहित परिषद के सभी विद्वान सदस्यों और विशेष रूप से उसके सभापति पद्मभूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास का हृदय से आभारी है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारा हर तरह से मार्गदर्शन किया है।
3: व्यास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक तरफ जहां उन्होंने चिंतनपूर्ण लेख लिखे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने हास्य व्यंग की गुदगुदाने वाली अनूठी रचनाओं का भी सृजन किया। ये उनके व्यक्तित्व की विविधता ही थी कि जहां उन्होंने कालिदास और विक्रम पर गंभीर शोध करने वाली संस्था कालिदास परिषद की स्थापना की, तो वहीं उन्होंने हास्य व्यंग के हर वर्ष होने वाले टेपा सम्मेलन को भी जन्म दिया।
1: व्यासाचार्य के उपनाम से उनका पहला व्यंग संग्रह तूतू मैं 1935 में प्रेमचंद ने प्रकाशित किया। इसी नाम से उनके अन्य कई संग्रह प्रकाशित हुए। उनकी व्यंग रचनाएं श्वान प्रबंध, एक और डॉक्टरेट और वसीयतनामा हिंदी व्यंग के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। व्यंगकार पिलकेंद्र अरोड़ा।
4: कई व्यंग इतने पठनीय हैं और कालजयी हैं कि उन्हें बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। जैसे मूर्ति का मसला या आंखों देखी मौत, डॉक्टरेट की डकार, एक उनका व्यंग है मेरी साहित्यिक यात्रा। ये ऐसे व्यंग है कि उनको बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। ये उनके सारे व्यंग शाश्वत थे, यानी वर्ष 1936 में जो व्यंग प्रासंगिक और रंजक थे, वे आज भी उतने ही रंजक और उतने ही प्रासंगिक हैं।
1: अटल बिहारी वाजपेयी उनकी व्यंग प्रतिभा से बहुत प्रभावित रहे।
5: उनके गंभीर लेखन के बारे में, चिंतन के बारे में लोग जानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन व्यंगकार के नाते वो किस तरह से चोट कर सकते थे मगर उस चोट को सहलाते भी जाते थे, ये कला उन्हीं में थी। और सिनॉप्सिस का मैं एक अंश पढ़कर आपको सुनाता हूँ। गधे का ऐतिहासिक सांस्कृतिक अध्ययन, और फिर ब्रैकेट में नीचे लिखा है समाजवादी दृष्टिकोण से।
1: यूं तो पंडित जी ने कई विधाओं में साहित्य सृजन किया है, किंतु काव्यानंद उनका स्थायी भाव था। वे केवल रसानंद की प्राप्ति के लिए कविताएं लिखते थे। सभी कवि गोष्ठियों और कवि सम्मेलनों में उनकी कविताएं चाव से सुनी जाती थीं।
6: काव्य रसिक श्रोताओं, काव्य पाठ के लिए अब मैं ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जिसे आपने जब भी सुना है दिल खोल कर सराहा है। तालियों से स्वागत कीजिए पंडित सूर्य नारायण व्यास का।
7: भाइयों और बहनों, पिछले दिनों हमारे पड़ोसी देश चीन ने हमारी सीमाओं पर आक्रमण किया। इसी पर प्रस्तुत कर रहा हूं यह सिंहनाद। सावधान, सिद्धांतहीन विश्वासहीन ओ चीन, शुद्ध बुद्ध के अनुयायी तुम करते कुटिल मलिन। निकट नाश को किया निमंत्रित, हिम को आज तपाया, राष्ट्र सिंह को

0: भरी नींद से छेड़ा और जगाया। हिमगिरी की चोटी पर चढ़कर आज हमें ललकारा। भारत के सिंहों जागो, यह है हिमशैल हमारा। भारत के सिंहों जागो, यह है हिमशैल हमारा।
1: व्यास जी जीवन में कभी सम्मान के पीछे नहीं भागे, किंतु ये उनका तेजस्वी व्यक्तित्व था कि उनके जीवन में सम्मान की कभी कमी नहीं रही। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें साहित्य वाचस्पति और विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट से अलंकृत किया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी उन्हें कई बार सम्मानित किया। 1958 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया।
2: पंडित जी, अरे पंडित जी, मैंने सुना है कि सरकार सभी स्वतंत्रता सेनानियों की सूची बना रही है। सुना है इनको ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा और सभी को पेंशन दी जाएगी।
3: अच्छी बात है।
2: क्या आप अपना नाम क्यों नहीं लिखवा देते, आपको भी?
3: अरे वो तो ठीक है, पर हमने आजादी के आंदोलन में इन सब के लिए भाग नहीं लिया था। ये हमारी आजादी की लड़ाई थी, हमें आजादी मिल गई, अब ये सब किस लिए? मेरा मन नहीं मानता, मेरी इन सब में कोई रुचि नहीं है।
2: अरे पंडित जी,
3: हाँ, आत्मविश्वास ही सदैव मेरा प्रेरक रहा है। संघर्ष और संकट में भी इसने सदा मेरा साथ दिया है, ये अब भी मेरे साथ है।
2: पंडित जी, सारी दुनिया पुरस्कारों और सम्मानों के पीछे भागती है और एक आप हैं कि आपने मिला हुआ पद्म भूषण सम्मान लौटा दिया, आप समझते क्या हैं?
3: देखो मित्र, आप तो जानते हैं कि मान सम्मान प्रतिष्ठा से मैं सदैव दूर भागता रहा हूँ, पर वो मिलती रही है। उससे अंतर में आनंद अवश्य हुआ, पर उसे मैंने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
2: अरे पंडित जी
3: सुनो, रही बात पद्म भूषण सम्मान लौटाने की, तो सुनो, ये सम्मान मुझे हिंदी और भारतीय संस्कृति की सेवा के लिए दिया गया था, पर अब जब सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग ही नहीं हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने सम्मान लौटा दिया। सीधी सी बात है।
4: व्यास जी का ज्योतिष ज्ञान भी सर्वविदित था। इसका ज्ञान उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था। अपने समय में वे ज्योतिष के सर्वोच्च न्यायालय और ज्योतिष सूर्य कहलाते थे। देश की स्वतंत्रता से पहले वे 144 राज्यों के सम्मानित राज्य ज्योतिषी भी रहे। पूर्व मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी।
5: प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा थी, उसकी दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र का अद्भुत उन्होंने प्रणयन किया, विस्तार किया और उसको शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक दृष्टि से स्थापित किया।
4: पद्म भूषण शिवमंगल सिंह सुमन मानते हैं कि विश्व में भारत के ज्योतिष को स्थापित करने का पूरा श्रेय व्यास जी को जाता है।
6: भारतवर्ष में काल की गणना यहीं से हुआ करती थी। हमारे यहाँ जो यह कर्क रेखा गुजरती है, जो ग्रीनविच का महत्व था वही महाकाल का महत्व था, और इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। इसका सारा श्रेय सुनाम धन्य सूर्यनारायण जी व्यास को।
1: पंडित जी जीवन भर समाज और साहित्य की सेवा करते रहे। अपने घर परिवार के लिए वे समय ही नहीं निकाल पाए। उनकी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी व्यास ने अपने पुत्रों को पंडित व्यास जी की धरोहर संजोकर रखने के लिए प्रेरित किया। उनके सबसे छोटे पुत्र राजशेखर व्यास उनकी धरोहर के सच्चे उत्तराधिकारी बने।
7: वे दार्शनिक और दृष्टा तो थे ही, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, विद्वान थे अपने युग के। उन्हें मालूम था हमारा देश तो आजाद होना है और इसकी वे भविष्यवाणी कर चुके थे आज अखबार में 1924 में कि 47 में भारत आजाद होगा। पर वे जानते थे कि हमारे सारे राजनेता विदेशों से पढ़कर आए और उन सबकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हुई है, इसलिए वे शेक्सपियर तो कहते हैं मानसिक गुलामी से शायद ही मुक्त हो, सांस्कृतिक दासता से शायद ही मुक्त हो। इसलिए वर्ष 28 से पंडित जी ने इस राष्ट्र को कालिदास एक चरित्र दिया, रंगमंच की आधारशिला दी और उज्जैनी में अखिल भारतीय कालिदास समारोह शुरू किया हमें मानसिक दासता से मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक यही बात मुझे लगती उनके विक्रम के साथ है। हमें अंग्रेजी इतिहासकारों ने पढ़ाया कि हम गुलाम, शोषित, पीड़ित, पराजित

0: भूत हारे थके जुवारी रहे हैं, लूटे पिटे लोग। हम 1857 के गदर में हारे, हम अंग्रेजों से हारे, हम मुगलों से हारे। नहीं, पंडित जी ने कहा कि हमारे पास एक चरित्र है विक्रम, जो हमारे पराक्रम का प्रतीक है। और उन्होंने विक्रम के नाम पर मंदिर और मठ नहीं बनवाए, उज्जैनी में विक्रम विश्वविद्यालय का निर्माण करा, विक्रम कीर्ति मंदिर बनाई, विक्रम स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किया, विक्रम पत्र का संपादन किया और हमारे सोए हुए पराक्रम को जगाने का उपक्रम किया। मुझे बराबर लगता है कि आत्मविश्वास से हीन एक पूरी की पूरी पीढ़ी को उन्होंने आत्मविश्वास से भरपूर जीवन देने के लिए विक्रम का नाम लिया।
1: पंडित जी के व्यक्तित्व के विविध आयाम हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय और आजादी के बाद देश के शीर्ष नेताओं, राजनेताओं, विद्वानों, लेखकों, पत्रकारों और कलाकारों से उनके अंतरंग संबंध रहे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल से लेकर मोरारजी देसाई और बाबू जगजीवन राम से उनका गहरा संपर्क रहा। 22 जून 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन पर एक डाक टिकट जारी किया।
2: यहाँ तक व्यास जी का प्रश्न है, ज्ञान और कर्म दोनों का पूर्व समन्वय था। व्यास जी केवल वहीं तक नहीं रुके, उन्होंने और भी संस्थाओं का निर्माण किया। वे स्वयं में एक संस्था थी, उनकी संस्थाएं आज भी उनके नाम की कीर्ति पताका फहराती हुई अपना असर डाल रही है।
3: समस्त विश्व को साहित्य, संस्कृति और ज्योतिष के ज्ञान का प्रकाश देने वाला ये सूर्य 22 जून 1976 को अस्त हो गया। चौंका देने वाली बात यह रही कि ज्योतिष के महापंडित इस कवि ने अपनी मृत्यु का पूरा दृश्य अपने लेख आंखों देखी मौत में बरसों पहले प्रस्तुत कर दिया था। मृत्यु के पूरे भाव 11 वर्ष पहले अपनी एक कविता नाविक में पहले ही व्यक्त कर दिए थे।
4: नाविक मेरे हृदय सिंधु में उमड़ रही है लहरे, तू ले जाता कुछ निकट है, मैं जाता हूँ गहरे। पथ में अगणित भंवर पड़े हैं, आंधी और तूफान, रहने दे जीवन नौका को, अब मत लगा सहारा। इस जगत में एकाकी है जीवन सखे हमारा, इस जगत में एकाकी है जीवन सखे हमारा।
1: कहने को तो मेरे यानी उज्जैनी के प्रांगण में उदय हुआ साहित्य, संस्कृति और ज्योतिष का ये सूर्य अस्त हो गया है, किंतु इसके प्रकाश में मालवा में शिक्षा, संस्कृति और संगीत के जिन गौरवशाली स्तंभों का निर्माण हुआ है, वे युग युगांतर तक इनका गौरव गान करते रहेंगे।
3: मालवा की धरा पर इस सूर्य के प्रकाश में वैभव, पराक्रम और स्वाभिमान के जो पृष्ठ लिखे गए, वे इसके स्वर्णिम इतिहास में सदा सदा के लिए अंकित हो गए। स्वाभिमान का ये सूर्य सदा अमर रहेगा।

अभी आप सुन रहे थे महाकाल नगरी उज्जैनी की सांस्कृतिक चेतना के सशक्त संवाहक पद्मभूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास की 50वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रस्तुत रूपक हमने सूरज को।

0: देखा था का पुनः प्रसारण। वाचन स्वर राजश्री त्रिवेदी और मनोज माइंडकर, नाट्यांश कलाकार मिलिंद देशपांडे, अभिनय श्रीवास्तव, नवीन कुमार गुप्ता और दीपा चतुर्वेदी। प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा, सहायक हरदीप सिंह, प्रस्तुतकर्ता डॉ. संजय सिंह वर्मा। आकाशवाणी इंदौर के सहयोग से केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रथम प्रसारण जून 2018 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया था।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे विशेष रूपक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे उर्दू विभाग का कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: और उसमें मिसरा इतराज़ दिया जाता था कि इस पर शेर कहिए, तो मिसरा इतराज़ तो याद नहीं है मगर एक शेर, अब वो गालबन 9वीं क्लास का मैं स्टूडेंट था या 8वीं का था, तो एक शेर आ गया जहन में, किले के कासिद पयाम यार आया, जिंदगी बोझ थी उतार आया।
1: क्या क्या
0: अब उस जमाने में जो हमारे असाज़ा थे, एक शफीउद्दीन हैदर साहब थे, शेर कहते थे उनका भी, एक होश अजीम आबादी साहब थे और नासिर जैदी साहब थे, तो ये लोग थे और इन्होंने बड़ी हिम्मत अफजाई की, हौसला अफजाई की, वरना भी 8वें 9वें क्लास का स्टूडेंट,
1: जाहिर है अगर 8वीं की जमात का शायर अगर बच्चा ये महसूस करता है कि ये बोझ है और उतार आया है तो हैरानी तो होगी।
0: तो ये उन लोगों की हौसला अफजाई थी, उसके बाद सिलसिला चला और शेर गोई का सिलसिला वहां पहुंचा के फिर कलाम हैदरी साहब गया से मोर्चा और आहंग निकाला करते थे, और उसमें बाज गजलें मेरी छपी, बाज गजलें मशहूर भी हुई, मकबूल भी हुई, और फिर होते होते गोया मैं 72-73 में पटना यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में चला आया, और फिर जो सिलसिला चल रहा है इल्म अदब से वाबस्तगी का, फिर 1976 में मैं मुलाजमत में आ गया वहीं पटना यूनिवर्सिटी में
1: जी।
0: और तब से जो है जो कुछ बुरा भला लिख रहा हूँ जो लिख रहा हूँ।
1: तो ये आपका जो पहला इश्क था वो शायरी से था?
0: जी, इब्तिदा शायरी से थी।
1: इस पर हम शायरी से इश्क पर और दूसरे किस्म के भी इश्कों पे हो सकता है बात करें अगर मौका रहे तो
0: जी।
1: लेकिन आपने जिक्र किया जिन दो शख्सियात का जिन्हें पूरी उर्दू दुनिया आलमी सतह पे जानती है, वो हैं काजी अब्दुल वदूद और
0: कलीमुद्दीन अहमद साहब जी।
1: इन दोनों के बारे में कहा जाता है खुश्क मिजाज थे और बहुत बहुत लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं थे, आपका तजुर्बा कैसा रहा था इन दोनों शख्सियात?
0: असल में आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, हम चाहते भी थे कि ये सवाल आप करें और न करते तो भी मैं कोई सूरत निकालता। कलीमुद्दीन अहमद साहब के बारे में बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं, जैसे उसमें एक गलत फहमी वो भी है कि वो लोगों से घुलते मिलते नहीं थे और बल्कि बहुत कम सुखन थे, यानी यहाँ तक के लोग कहते हैं कि वो आलम सरूर साहब मिलने आए उनसे तो कोई आधा घंटे तक वो कुछ कहते रहे और करीम साहब बस हाँ या ना में जवाब देते रहे, अपनी तरफ से उन्होंने चार जुमले भी नहीं कहे। तो मैं बहुत एतमाद के साथ इसकी तरदीद करता हूँ, लेकिन मैं शायद पहला और आखिरी आदमी था कि मुझको उन्होंने इंटरव्यू भी दिया और वो इंटरव्यू रिकॉर्डेड भी मेरे पास मौजूद है, ताकि ये कोई रिकॉर्ड भी किया मैंने, सनद है, और उसी जमाने में वो छप भी गया था किताब नुमा में, और काजी साहब भी गालबन पहले वो आदमी है, आखिरी नहीं है, और भी लोगों ने उनसे इंटरव्यू लिए हैं कि जिन्होंने मुझको इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू भी मेरे पास रिकॉर्डेड भी है और उसकी तस्वीर भी है। तो असल में बात ये थी, सिर्फ एक बात दोनों के हवाले से अर्ज करूं कि कलीमुद्दीन अहमद साहब जो हैं वो कम आमेज तो थे और कम गो भी थे, मगर वो मौजूआत की बात थी, मुझको ऐसा एक लगता है कि गोया कुछ नफ्सियाती तौर पर वो मेरे जैसे लोगों को या इस तरह के लोगों को अपने इल्म की सतह पर समझते नहीं थे, इसलिए जब आप उनसे अदब पर गुफ्तगू करें या फिर उनकी बातें दोहराएं कि उर्दू शायरी में आशिक के महूम कमर है, गजल नीम वैशी सिंफ सुखन है वगैरह वगैरह, तो वो खामोश हो जाते थे
1: जी।
0: लेकिन मेरा अपना जाती तजुर्बा है कि अगर आप अदब के अलावा दीगर मौजूआत पर उनसे गुफ्तगू करें, मसलन ये कि एक दिन अनबिलीवेबल बात है, लेकिन एक दिन मैं गया तो उन्होंने खुद ही, जैसे ही मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि आपने सुना है दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी कर ली है।
1: अच्छा वाह।
0: तो हमको बहुत हैरत हुई कि भाई कहा कलीमुद्दीन और यानी हमको इत्तला दे रहे हैं इससे मेरी
1: जी, जी।
0: उसके बाद हम बैठ गए। तो अगर आप उनसे फिल्म पर गुफ्तगू करें या अदब पर भी उनकी अपनी तहरीरों के अलावा दीगर मौजूआत पर गुफ्तगू करें
1: जी,
0: तो मेरा तजुर्बा है कि वो करते थे, कम करते हो लेकिन आधा आधा घंटा गुफ्तगू करते
1: थे। ये उनकी शख्सियत का बड़ा दिलचस्प और हैरानकुन
0: पहलू है।
1: एक शख्स इतना एहसास नाकिब जिसे हम कह सकते हैं, कई जुमले उनके मशहूर हुए, आप उन्हें मशहूर कह लें बदनाम कह लें जो भी कह लें, लेकिन उन जुमलों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया, झिंझोड़ा, और अदब के बारे में कई नई इस्तिलाहें और नई तराकीब वजह की गई उन चीजों को डिफेंड करने के लिए भी और उनको आगे पहुंचाने के लिए भी। अच्छा, काजी अब्दुल वदूद साहब के बारे में,
0: काजी अब्दुल वदूद साहब, कलीम साहब तो खैर अदब पर कुछ गुफ्तगू कर भी लेते थे अपनी तहरीरों के अलावा,
1: अपनी तहरीर, ये अच्छी बात,
0: अपनी तहरीरों के अलावा, यानी आप शायरी पर उनको कोई शेर अच्छा लगता था तो तारीफ भी करते थे
1: जी,
0: किसी का शेर यानी इवन बशीर बदर के शेर की तारीफ कर देते थे कि हाँ ये शेर अच्छा है भाई,
1: अगर बशीर बदर सुन रहे होते तो बहुत खुश होते।
0: बहरहाल, लेकिन ये कि काजी साहब जो हैं वो बहुत रख रखाव के आदमी थे और वो मिलते भी थे। मसलन एक वाकया आपको सुनाते हैं
1: जी।
0: کہ میں گیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت بے تکلفی سے گفتگو کرتے تھے دیگر موضوعات پر، چونکہ ہم
1: قاضی عبدالودود
0: صاحب ہم سے

0: अब वो इनकी खास इनायत थी या जो भी थी
1: जी।
0: तो बहरहाल मैं गया तो मैंने सलाम करने के बाद हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप सामने बैठ जाएं, मेरी ख्वाहिश होगी तो मैं खुद हाथ मिला लूंगा। ये जो तंबीह थी
1: क्या कहने?
0: ये अंदाज उनका था अपना, लेकिन अदब के मौजूदात पर वो गुफ्तगु करते थे। कलीम साहब अदब के मौजूदात पर गुफ्तगु नहीं करना चाहते।
1: अच्छा, एक चीज माफ कीजिएगा, मैं तकलाम हो रहा है कि कलीम साहब क्या अदब के मौजूदात पर गुफ्तगु करने से बचते थे या उनकी अपनी तनकीद के हवाले से गुफ्तगु करने?
0: अदब के मौजूदात पर भी गुफ्तगु करने से बचते थे, उससे भी बचते थे, जो मेरा अपना तजुर्बा है।
1: ये वैसे बहुत जानने वालों को या सुनने वालों को इस पर
0: हैरत होगी। हाँ, बेहद हैरानी होगी कि वो समझते हैं कि वो किसी भी मौजू पर गुफ्तगु नहीं करते थे, मगर आप स्पोर्ट्स के मौजू पर उनसे गुफ्तगु करें, फिल्म के मौजू पर गुफ्तगु करें, या शहर में क्या हो रहा है, किसने किसके बारे में क्या कहा है, तो ये सब सुनते थे वो, और जवाब भी देते थे और उसमें हिस्सा भी लेते थे। और काजी साहब उनके मुकाबले में ज्यादा सख्त गिर थे, खाने में, रहने में, पहनने उठने में। मतलब ये कि मैं कई बार जमील मजहरी साहब के साथ या अहमद जमाल पाशा साहब के साथ, मरहूम के साथ, गया काजी साहब से मिलने, तो उन्होंने फौरन जमील मजहरी साहब को टोका कि भाई ठीक से खाइए, तो काजी साहब बहुत इत्मीनान एक रोटी उठाते थे, उसको बड़ा सलीके से तोड़ते थे, और जमील साहब शायर तो उन्होंने टोक दिया कई बार कि भाई जमील भाई ठीक से खाइए बैठ के, या अहमद जमाल पाशा ने कोई गुस्ताखाना जुमला कहा तो उन्होंने उसकी फौरन नोटिस लेते थे।
1: वो मिजाहनगार थे, जाहिर है वो बहुत संजीदा तो रह नहीं सकते,
0: मगर काजी साहब जो है वो बहुत संजीदा रहते थे। ये समझ लीजिए कि वो लूज टॉक करते ही नहीं थे, ये एकदम तय है। बात करते थे, खूब बात करते थे दोनों, बिल्कुल इस मामले में इज्तिमा जिद्दैन कही कि मतलब ये काजी साहब गुफ्तगू की, ये तो 20-20 मिनट गुफ्तगू करते थे अदब पर भी, कलीम साहब अदब पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, वैसे कभी करना पड़े तो करते थे। ये बातें हैं, बाकी कहा जाता है कि काजी साहब की जो तहकीक है वो बहुत ओरिजिनल नहीं है, दूसरों के ऐब निकालने में ज्यादा दिलचस्पी वो लेते हैं, अपनी तहकीक कम करते हैं, इसलिए रजा नकवी भाई साहब ने उनका मतलब अपनी नज्मों में मजाक भी उड़ाया है, और काजी साहब वो नज्में पढ़ते थे और लुत्फ लेते थे। मसलन ये कि ये जो एक हजरत चले आते हैं गोरिस्तान से, ये न समझें आप हैं बेजार अपनी जान से, वो आपने नुक्ते गिने हैं मीर के दीवान के, और 7:05 में या 7:07 में शाद ने तोड़ा था दम गोद ने मुन्नी जान के। और ये तहकीक के मसले, ये मजाक उड़ाते हैं उनका कि मतलब ये तहकीक की किस्म की खुर्दागिरी है, मकाई साहब लुत्फ लेते थे इससे।
1: जाहिर है, देखिए जहन में जो कुछ भी रहा हो, वही साहब की जिस नज्म का आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत उम्दा नज्म है वाकई, कि तहकीक में जो बुनियादी चीज होती है और उसको किस तरह से मिजाह और तंज के पैकर में ढाला जा सकता है, ये बहुत उम्दा कोशिश थी उनकी। ये और बात कि उनके जहन में काजी साहब हो या ना हो एक आजाद, उन्हें एक इंडिपेंडेंट नज्म के तौर पर भी पढ़े हम तो
0: भी लुत्फंदोज हो सकते होते हैं। तो असल में हम यही कह रहे थे भाई इनमान साहब कि वो जमाना ऐसा था कि इतने मशाहिर जमा हो गए थे, इतने नाम कि मसलन जैसे हमने रजा नकवी वाही का जिक्र किया, ये सब हम असर लोग हैं, जमील मजहरी का जिक्र किया भी जो कहा करते थे कि कमबख्त ये मेरा शेर जो है वो मुझसे ज्यादा मशहूर हो गया है कि बकदरे पैमाने तखयल सुरूर हर दिल में है खुदी का,
1: अगर न हो ये फरेब पैहम
0: तो दम निकल जाए
1: तो दम निकल जाए आदमी का। लेकिन जमील साहब इन हजरात से पहले उनका
0: रुखसत हुए,
1: पहले रुखसत हुए
0: नहीं, ये सब कंटेम्पररी ही है, सबसे बाद में रजा नकवी वाही,
1: सबसे बाद में रजा नकवी वाही साहब हुए और
0: ज्यादा उम्र पाई उन्होंने।
1: जी,
0: और कलीम साहब और काजी साहब ये सब थे। कलीम साहब के थोड़ा बाद काजी साहब का इंतकाल हुआ, जमील साहब का भी उसी जमाने में। और एक बात हम और जमील साहब के हवाले से कहा करते हैं, कहीं कहीं शायद इसका जिक्र आया है कि जमील साहब जो है वो तफरीही तौर पर या कहिए कि रिलैक्स होने के लिए जासूसी दुनिया पढ़ा करते थे, और ये खुद मैंने उनको कि वो अपना दोनों पांव उठा के कुर्सी पर बैठ जाते थे, उकड़ू बैठना और जो है जासूसी दुनिया लेके पढ़ा करते थे, और कभी कभी आप उनसे गुफ्तगु कीजिए तो वो उसके हवाले से गुफ्तगु भी कर लेते थे उस नॉवेल के कि इसमें ये हुआ है
1: जी।
0: ये गालिबन बाकी दोनों हजरात के यहाँ, कलीम साहब के यहाँ, काई साहब के हमने नहीं देखा,
1: उनके यहाँ नहीं था। लेकिन अभी मैं पिछले कुछ बरसों का अगर जिक्र करूं तो इसमें इब्ने सफी पर काफी संजीदा लोगों ने, अहम लोगों ने बहुत अच्छी बातें की हैं। और जैसे हमारे यहाँ एक उर्दू में ये ट्रेंड रहा है कि जासूसी अदब को तीसरे दर्जे का अदब, ट्रैश भी समझा जाता है, जबकि मगरबी अदब में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये रियलाइजेशन या ये इदराक काफी बाद हुआ है, चूंकि एक पूरी नस्ल

0: तो मिजाज का जो मैयार है और मिजाज है उसमें जो इब्तिजाल आया है या
1: इब्तिजाल तो आ गया।
0: सतहीपन आया है
1: हाँ
0: वो उससे कतः नजर इंशाइये अब तकरीबन नहीं लिखे जा रहे हैं। इसके क्या असबाब हो सकते हैं?
1: उसकी वजह खास यह है कि लोगों के जहन में डाइवर्सिटी अब रह नहीं गई है। जो आदमी जहां है, जिसको कि एक दोहे में किसी ने कहा है कि गजब तुम्हारी नौकरी, सुबह 8 से 8 और 8 बरस के बीच में दोनों हो गए काठ।
0: क्या
1: तो
0: कहने
1: अब हस्बैंड और वाइफ भी दोनों जो है ना, वो जरा सा तजुर्बा है ही नहीं, तजुर्बा डाइवर्सिफाइड नहीं होगा
0: जी,
1: तो चीजों को आप एक दूसरे से मिलाएंगे कैसे?
0: ऐसा साथ मुर्दा
1: हाँ,
0: हो जाते
1: यानी
0: हैं, शल
1: कैसे
0: हो
1: कहेंगे
0: जाते
1: कि
0: हैं
1: उर्दू के फंक्शंस हो रहे हैं तो गोया पत्तियों पर छिड़काव हो रहा है? एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज नहीं होगा
0: जी।
1: तो इंशाइया क्या लिखिएगा? एक ही नहज पर आपकी फिक्र बह रही है, एक ही
0: जी
1: नहज पर सोच रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में सफर कर रहे हैं। वो डायरेक्शन क्या है वो आपको भी अंदाज है कि किस चीज के पीछे दुनिया भाग रही है।
0: जी
1: तो जब उसके पीछे भागिएगा तो मतलब वो कि बस उसको रख दीजिएगा, ढाक के कहिएगा कि यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती है, सब कुछ यही है, तो फिर दूसरी तरफ कैसे जाइएगा?
0: जाहिर है कि मादियत इंसान को
1: मादियत
0: अपनी तरफ
1: वो
0: खींचती
1: आपने
0: है।
1: ठीक ही पकड़ लिया,
0: वो
1: हमने इशारतन
0: आप
1: कहा।
0: जब आज बच्चे देखिए उनकी तरजीहात में अदब फाइन आर्ट्स
1: नहीं है,
0: नहीं है।
1: नहीं है,
0: आप किसी भी बच्चे को देखिएगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना
1: वो
0: चाहता है, वो
1: बस
0: आईआईटी करना
1: आईआईटी
0: चाहता है।
1: करना चाहता
0: इसमें
1: है।
0: कोई बुराई नहीं है, जो वो चाह रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आर्ट के पीछे कौन आएगा, उसके साथ कौन खड़ा होगा, ये एक बड़ा एक बहरान तकरीबन होता जा रहा है। हालांकि जो बच्चे अब भी फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी रखते हैं या जिनकी तरबियत और जिनकी ज़हनी हम आहंगी फ़नून से है, वो आज भी फ़न के लिए अपने आप को डिवोट करते हैं, वक्फ करते हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है वो भीड़ उतनी बड़ी नहीं है
1: या
0: जैसी
1: उसमें एक
0: दूसरी
1: जुमला
0: जगहों
1: जोड़
0: पे है।
1: दें जो उन लोगों
0: जी
1: के लिए कि और उसमें भी मादी इम्कानात हैं।
0: हैं बिल्कुल।
1: अब यह है कि वो ओवर द नाइट ना हो।
0: हाँ जाहिर है वो एक अलग इशू है जिस पर गुफ्तगू हो
1: हाँ।
0: सकती है।
1: मगर हैं उसमें, लेकिन लोग उधर जा नहीं रहे हैं और ये बहुत तश्वीशनाक बात है, इसलिए कि आर्ट तो आपकी पनाहगाह था,
0: जी
1: जो शायरी हो या अदब हो वो तो आपकी पनाहगाह था, जहां आप दुनिया के आलूदगी से बच के पनाह लेते थे। अब अगर वहां भी पोल्यूशन हो जाएगा या वहां कोई पनाहगाह रहेगी ही नहीं तो कहां जाइएगा?
0: बेहतर, सही सही
1: ये
0: फरमाया
1: सूरत
0: आपने
1: है।
0: बिल्कुल। अच्छा, ये आप एक अहम इदारा है बिहार उर्दू एकेडमी,
1: जी
0: जहां शायद सबसे पहले उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया था, वहां आप हैं और वाइस चेयरमैन की हैसियत से हैं। ये बताएं कि बिहार में जो उर्दू की सूरत हाल है उससे काफ़ी उम्मीदें अलग अलग जगहों पर अलग अलग सूबों में पैदा होती हैं। आज भी हम महफिलों में जाते हैं या किसी सेमिनार में जाते हैं तो ये कहा जाता है कि बिहार में उर्दू ने जो किया है देखिए ये हुआ। ये एक आउटसाइडर व्यू है या आप वहाँ रहते हुए काम करते हुए ये महसूस कर रहे हैं कि वाकई बिहार में जो कुछ हो रहा है उर्दू में वो और कहीं नहीं हो रहा है, या क्या सूरत हाल है, असली सूरत हाल क्या है?
1: इसमें थोड़ा सा इसका जवाब देना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल ये ऐसा है कि बास दूसरी रियासतों के मुकाबले में बिहार में उर्दू की सूरत हाल बेहतर है। और उसकी एक वजह ये भी है कि उसको माश से भी जबान जुड़ गई है। जो उर्दू ट्रांसलेटर्स की और असिस्टेंट ट्रांसलेटर्स की बहालियां हुई हैं
0: जी
1: मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कुछ ना कुछ तो लोग काम कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो उर्दू जबान है, उसकी तालीम है, उस पर असर पड़ रहा है। अब रहा सवाल उर्दू एकेडमी का, तो उर्दू एकेडमी अपनी हदूद में और रिवायती तौर पर रिवायती दायरों में काम करती है। सेमिनार है।

0: सवाल उर्दू एकेडमी का, तो उर्दू एकेडमी अपनी हदूद में और रिवायती तौर पर रिवायती दायरों में काम करती है, सेमिनार है, सिंपोजियम है, मुशायरा है, इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें शक नहीं है, जिलों से भी लोग आते हैं, तुलबा भी रहते हैं। लेकिन एक बात है कि बिहार में सिर्फ उर्दू तशफी बख्श तो नहीं है, मगर तशवीशनाक भी नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि ये होगा कि नहीं हम नहीं कह सकते, मगर ये विशफुल थिंकिंग भी हो सकती है मेरी
1: जी,
0: मगर हम इसको बार बार कहते आ रहे हैं कि अगर उर्दू एकेडमियां अपने बजट का 25-30% भी उर्दू की तालीम के लिए वक्फ कर दें, और वो तालीम भी वो जो स्कूल की सतह से शुरू हो
1: जी,
0: तो बहुत बड़ी तादाद में उर्दू के जो नई नस्ल आ सकती है। क्यों? उसकी वजह है कि जो हमारे लोग हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उनके अलावा भी वैसे लोग भी जो उर्दू के लोग नहीं कहलाते हैं, यानी जो दूसरी
1: जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है,
0: जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है, वो भी उर्दू पढ़ना चाहते हैं
1: बेशक
0: पढ़ना चाहते हैं, मगर उनकी बड़ी तादाद कहाँ पढ़ती है? पब्लिक स्कूलों में पढ़ती है, और पब्लिक स्कूल 10 आदमियों के लिए उर्दू का एक टीचर बहाल नहीं कर सकते। अगर उर्दू एकेडमियां सिर्फ एक काम कर दें कि उर्दू की तालीम का पब्लिक स्कूलों में नज्म कर दें, कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक टीचर दे दें। प्राइवेट तौर पर हमारे यहाँ एक पंजाबी है, उन्होंने प्राइवेट तौर पर पटना के 3-2 बॉयज स्कूलों में, एक गर्ल्स स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में जो सबसे टॉप क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, उसमें उन्होंने अपने खर्च से टीचर दे दिए हैं, एक एक टीचर हर स्कूल में। और आपको हैरत होगी ये जान के तभी लोगों को कि वहां बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम बच्चे भी उर्दू पढ़ रहे हैं।
1: बहुत उम्दा बात,
0: और इसमें कोई सरकारी अदारे का कोई हाथ नहीं है।
1: बिल्कुल, मैं खुद इस बात को मानता हूं कि हम उर्दू वालों में ये एक बुरी चीज है कि हम हर बुराई के लिए किसी और को फौरन मुरीद इल्जाम ठहराते हैं और खुद को मुबर्रा कर लेते हैं। मुझे लगता है कि लेकिन अगर आप जैसे सोचने वाले जहन मौजूद हैं किसी भी इदारे में, तो मैं दुआ करता हूं और मेरी ख्वाहिश है और मैं ये भी चाहूंगा कि आप जब तक वहां हैं, जो इरादा आपने जाहिर किया है, खुदा आपको इस इरादे में कामयाब करे और आपके जो हमकार हैं वो आपको तआवुन करें, और आपको हमारी नेक ख्वाहिशात
0: हैं। हम एक चलते चलते आपको इत्तला दे दें बस एक मिनट में कि उर्दू एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने बहरहाल ये फैसला लिया है, और उसमें महकमा अकलियती फलाह जो है हुकूमत बिहार का, उसका तआवुन भी है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में कम अज कम एक लाइब्रेरी कायम करेंगे जहां कंप्यूटर्स की और जदीद उलूम के साथ साथ उर्दू की किताबें भी होंगी। और उसी तरह से यह भी फैसला करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक स्कूल में जो पब्लिक स्कूल है यानी मिशनरी स्कूल है, उसमें हम उर्दू का एक टीचर देंगे।
1: बहुत उम्र,
0: इसलिए आप दुआ कीजिए कि हम कामयाब हों,
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि जिस बात की तरफ आपने भी ध्यान दिया वो बहुत अहम बात है कि हम सेमिनार करके, मुशायरे करके और शोरा को, अदबा को किताब पर इनाम देके और इमदाद देके छपवाने के लिए वो खिदमत हरगिज नहीं कर रहे हैं जिसकी हमसे तवक्को की जाती है
0: जी।
1: क्योंकि वो किताबें हम छाप के क्या करेंगे जब उन्हें पढ़ने वाला नहीं होगा। बुनियादी चीज ये है कि पहले हम उर्दू पढ़ने वाला, उर्दू को समझने वाला पैदा करें, उसे तैयार करें और उसे हर वो सहूलत दें अगर वो सीखना चाहता है कि एक रीडरशिप तैयार हो। उसके बाद उन्हीं में लिखने वाले भी आएंगे, उन्हीं में मीर गालिब इकबाल और अब्दुल्ला हुसैन और कुरतुल्लाह हैदर भी पैदा होंगे। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल आपने बहुत कीमती वक्त दिया हमें और बहुत अच्छे ख्यालात आपसे सुने, और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह आपको अपने मकसद में कामयाबी हासिल होने का इम्कान है, उसी तरह पूरी उर्दू दुनिया को अपने नेक इरादों में कामयाबी मिले, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामीन, अभी आप रूबरू प्रोग्राम के तहत जनाब एजाज अली अरशद से उनकी ये बातचीत सुन रहे थे। आपसे महवे गुफ्तगू थे जनाब नोमान शौक। प्रोग्राम की तरतीबो पेशकश थी इंतजार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। अपने मेजबान सरफराज आलम को इजाजत दें। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

印度德里广播电台，下面播送一篇特写，题目是德里莫沃尔花园。春天是四个菜季中的

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और आज मेरे साथ हैं
1: आकाश। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में।
0: जी, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है खेलों की बात होगी, खिलाड़ियों की बात होगी, किसने कितने पदक जीते उसकी बात होगी और कैसा रहा भारत का प्रदर्शन उसकी बात होगी। तो ISSF तो है ही, शूटिंग की बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ विमेंस T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उस पर भी आपको रिपोर्ट ज़रूर सुनवाएंगे। फेंसिंग का आयोजन किया गया है इस बार दिल्ली में, तो उस पर क्या खास रहेगा वहाँ से लाइव रिपोर्ट आपको हम ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। बॉक्सिंग है, इसके अलावा फीडे है और एशियंस रिलेज भी है और वॉलीबॉल की भी बात आज हम इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की फीफा वर्ल्ड कप से।

फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। 27 जून तक चलने वाले ग्रुप स्टेज मुकाबलों में हर टीम की निगाहें अगले दौर में जगह बनाने पर टिकी हैं। कुछ टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है, जबकि कई दिग्गज टीमें अभी भी अंक तालिका के जटिल समीकरणों में उलझी हुई है। 28 जून से शुरू होने वाले नॉकआउट दौर से पहले 21 जून को खेले गए 4 महत्वपूर्ण मुकाबलों ने टूर्नामेंट की तस्वीर को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। सबसे पहले बात ग्रुप एच के मुकाबले की, तो अटलांटा के मर्सिडीज बेंज स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से करारी शिकस्त दी। पहले मैच में केप वर्डे के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेलने वाली स्पेनिश टीम इस बार पूरी तरह बदली हुई नजर आई। स्पेन की जीत के नायक रहे मिकेल ओयारज़बाल, उन्होंने पहले गोल में लैमिन यामल की मदद की और फिर महज 4 मिनट के भीतर 2 शानदार गोल दागकर मैच को एक तरफा बना दिया। दूसरे हाफ में सऊदी अरब के हसन अल तांबक्ती के आत्मघाती गोल ने स्पेन की बढ़त को 4-0 तक पहुंचा दिया। इस शानदार जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया और नॉकआउट दौर के बेहद करीब दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं ग्रुप जी के मुकाबले की, जहां लॉस एंजलिस के सोफी स्टेडियम में बेल्जियम और ईरान के बीच खेला गया ये मुकाबला बिना किसी गोल के समाप्त हुआ। केविन डी ब्रुइन और रोमेलू लुकाकू जैसे सितारों से सजी बेल्जियम की टीम पूरे मैच में गोल की तलाश करती रही, लेकिन ईरान की मजबूत रक्षा पंक्ति को भेदने में नाकाम रही। मैच का अहम मोड़ 67वें मिनट में आया, जब बेल्जियम के एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही बेल्जियम की टीम दबाव में आ गई। हालांकि ईरान भी अपने मौकों को गोल में नहीं बदल सका और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इस नतीजे ने ग्रुप जी के समीकरण और भी दिलचस्प बना दिए हैं। ग्रुप एच के मुकाबले में जहां उरुग्वे और केप वर्डे के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला गया ये मैच 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। विश्व कप में पहली बार खेल रही केप वर्डे की टीम लगातार अपने प्रदर्शन से सबको चौंका रही है। स्पेन को रोकने के बाद इस बार उन्होंने 2 बार की विश्व चैंपियन उरुग्वे को भी जीत से वंचित कर दिया। केप वर्डे ने अपने तेज काउंटर अटैक से उरुग्वे की रक्षा पंक्ति को परेशान किया, जबकि उरुग्वे ने अपनी अनुभव के दम पर मुकाबले में वापसी की। दोनों टीमों ने 2-2 गोल किए। इस ड्रॉ के बाद दोनों टीमों की नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। अब बात ग्रुप जी के मुकाबले की, जहां मिस्र ने न्यूजीलैंड पर शानदार जीत दर्ज की। वैंकूवर के बीसी प्लेस स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। मैच की शुरुआत न्यूजीलैंड के पक्ष में रही और 15वें मिनट में फिन सुरमन के गोल से टीम ने बढ़त बना ली, लेकिन दूसरे हाफ में मिस्र ने जबरदस्त वापसी की। 98वें मिनट में मुस्तफा जीको ने बराबरी का गोल किया। इसके बाद कप्तान मोहम्मद सलाह ने 67वें मिनट में गोल दागकर मिस्र को बढ़त दिलाई। फिर 82वें मिनट में ट्रेजेगुएट ने तीसरा गोल कर जीत पर मुहर लगा दी। इस जीत के साथ मिस्र ने नॉकआउट की दौड़ में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली।

फीफा विश्व कप 2026 में अब हर मुकाबला नई कहानी लिख रहा है। ग्रुप चरण फीफा विश्व कप 2026 में अब हर मुकाबला नई कहानी लिख रहा है। ग्रुप चरण अपने निर्णायक दौड़ की ओर पहुंचने वाला है और 27 जून तक चलने वाले मुकाबलों में अंतिम 32 में जगह बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक रही हैं। कई दिग्गज टीमों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो कहीं उभरती हुई टीमें बड़े उलटफेर का सपना देख रही हैं। ऐसे में आने वाले मुकाबले

ना सिर्फ अंक तालिका के समीकरण बदल सकते हैं बल्कि कई टीमों के भविष्य का फैसला भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच होने वाले मुकाबले की, तो डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना इस मैच में अपनी मजबूत स्थिति को और बेहतर बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। लियोनेल मेसी के अनुभव और नेतृत्व के साथ जूलियन अल्वारेज और लाउतारो मार्टिनेज जैसे युवा खिलाड़ी टीम के आक्रमण की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं मिडफील्ड में रोड्रिगो डी पॉल और एलेक्सिस मैक एलिस्टर खेल की गति को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी ओर राल्फ रंगनिक की कोचिंग में ऑस्ट्रिया की टीम अपनी हाई प्रोसेसिंग शैली के लिए जानी जाती है। डेविड अलावा का अनुभव और मार्शल सप्तिजर की रचनात्मकता अर्जेंटीना के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकती है। अब बात ग्रुप के एक और महत्वपूर्ण मुकाबले की, जहां फ्रांस का सामना इराक से होगा। पूर्व विश्व विजेता फ्रांस इस समय टूर्नामेंट की सबसे संतुलित और खतरनाक टीमों में गिना जा रहा है। कप्तान कालियन एम्बाप्पे की रफ्तार और एंटिनो ग्रिज़मैन की रचनात्मकता किसी भी डिफेंस को भेदने की क्षमता रखती है। फ्रांसीसी टीम इस मुकाबले में न सिर्फ जीत दर्ज करना चाहेगी बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल कर अपना गोल अंतर भी बेहतर करना चाहेगी। दूसरी ओर इराक के लिए ये मुकाबला एक बड़ी परीक्षा है। स्टार स्ट्राइकर एमएन हुसैन पर टीम की उम्मीदें टिकी होंगी। इराक की रणनीति संभवतः रक्षात्मक रहने की होगी और वो फ्रांस को गोल करने से रोकने में पूरी कोशिश करेंगे। अगर इराक इस मुकाबले से अंक हासिल करने में सफल रहता है तो ये उनके विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाएगी। अब रुक करते हैं उस मुकाबले की ओर जिस पर दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की खास नजर टिकी होंगी, नॉर्वे बनाम सेनेगल। ये मैच दो अलग अलग फुटबॉल शैलियों और दो बड़े सितारों की टक्कर के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर है नॉर्वे के गोल मशीन एलिंग हॉलैंड, तो दूसरी ओर सेनेगल के अनुभवी स्टार सादियो माने। नॉर्वे की टीम मार्टिन ओडेगार्ड की अगुवाई में मिडफील्ड पर नियंत्रण स्थापित कर हॉलैंड के लिए मौके बनाने की कोशिश करेगी। वहीं सेनेगल अपनी शारीरिक मजबूती, गति और बड़े टूर्नामेंटों के अनुभव के दम पर मैदान में उतरेगा। कालिदू कैलिबाली के नेतृत्व में सेनेगल का डिफेंस हॉलैंड को रोकने की चुनौती स्वीकार करेगा। नॉकआउट की दौड़ को देखते हुए ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। और आखिर में बात करते हैं जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच होने वाले मुकाबलों की। दो अरब देशों के बीच होने वाला ये मैच खेल और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा दोनों दृष्टि से खास माना जा रहा है। जॉर्डन की टीम ने हाल के वर्षों में अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया है। स्टार विंगर मूसा अल्तमारी अपनी गति और ड्रिबलिंग से विपक्षी रक्षा पंक्ति को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। वहीं अल्जीरिया की उम्मीदें कप्तान रियाज महरेज पर टिकी होंगी। तकनीकी रूप से मजबूत अल्जीरियाई टीम मैच की रफ्तार को नियंत्रित करने और मौके बनाकर गोल करने की कोशिश करेगी। जॉर्डन जहां काउंटर अटैक के जरिए चौंकाने का प्रयास करेगा, वहीं अल्जीरिया इस मुकाबले को जीतकर अगले दौर की ओर मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगा।

और अब फीफा के बाद चलते हैं शूटिंग की ओर। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप जो सुहल में आयोजित किया गया है 16 से 26 जून के बीच, जिसमें 70 राष्ट्रीय महासंघों के 800 से अधिक निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं और भारत ने इस प्रतियोगिता में 84 सदस्यीय दल उतारा है और सबसे ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित किया है प्रीतम केंद्रे ने। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक लिया है। जर्मन के सुहल में चल रही आईएसएस जूनियर विश्व कप 2026 में कल भारत के प्रीतम केंद्रे ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। प्रीतम के इस व्यक्तिगत स्वर्ण और एक और रजत के साथ महिलाओं में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में आए कांस्य पदक के साथ सुहल में भारत के पदकों की कुल संख्या 12 हो गई है। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रोमांच रहा। 8 निशानेबाजों के फाइनल में भारतीय एथलीट प्रीतम केंद्रे ने 251.3 का शानदार स्कोर किया और तटस्थ एथलीट तिमोई और नॉर्वे के जेंस ओस्टली को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। पोडियम से चूके पीयूष, एक अन्य भारतीय निशानेबाज पीयूष शर्मा कांस्य पदक से बाल बाल चूक गए। चौथे एलिमिनेशन राउंड के बाद यह ऑस्टली से मात्र 0.1 अंक पीछे रह गए और उन्हें चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा। क्वालिफायर में जो प्रदर्शन रहा उसके लिए पीयूष शर्मा ने 629.0 के स्कोर के साथ तीसरे और प्रीतम केंद्रे ने 628.2 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहे थे। व्यक्तिगत रूप से प्रीतम और पीयूष की बेहतरीन रैंकिंग के बावजूद भारतीय टीम को अयोग्य घोषित कर दिया गया और ये टीम स्पर्धा में ऐसा हुआ जिसकी वजह से टीम के तीसरे सदस्य अभिनव शॉ रहे और

0: जिनके उपकरण ISSF नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए और उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा की अगर बात करें तो अंजलि भागवत, प्रीशा गुप्ता और निथिला क्रिस्टोफर की भारतीय तिकड़ी ने महिला 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में संयुक्त स्कोर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया और इस स्पर्धा में स्वर्ण और रजत दोनों पदक तटस्थ एथलीटों की टीमों ने जीते। अंजलि भागवत का शानदार प्रयास रहा और शानदार स्कोर के साथ क्वालिफायर में सातवें स्थान पर रहने वाली अंजलि भागवत 6 भारतीयों में से फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र निशानेबाज थी। मानवी जैन कट हासिल करने से थोड़ा दूर रह गई और 9वें स्थान पर रही। फाइनल राउंड में अंजलि 6 स्थान पर रही। दूसरे एलिमिनेशन राउंड में यूक्रेन की करीना के खिलाफ शूट आउट हारने के बाद वह पदक की दौड़ से बाहर हो गई। भारत का अब तक का सफर टूर्नामेंट के आंकड़े और पदक तालिका पर अगर नजर डाले तो भारतीय निशानेबाजों ने अब तक इस मीट में 5 स्वर्ण सहित कुल 12 पदक जीत लिए हैं और टूर्नामेंट के अगर पैमाने की बात करें तो जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के इस 5वें संस्करण में 70 महासंघों हिस्सा ले रहे हैं। और अगर इसी जूनियर विश्व कप की अगर हम पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो पिछला संस्करण 2024 में पेरू में आयोजित हुआ था, जहां भारत ने 13 स्वर्ण और 3 रजत और 8 कांस्य सहित 24 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। और ये चैंपियनशिप अब 26 जून तक चलेगी, यानी कि 26 जून को इस चैंपियनशिप की समाप्ति होगी। और अब आगे की खबर के लिए चलते हैं आकाश के पास और जानते हैं क्या हाल है T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप में टीम्स का।
1: ICC महिला T20 विश्व कप 2026 में अब मुकाबले और भी दिलचस्प होते जा रहे हैं। इंग्लैंड की सरजमी पर खेली जा रही इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में हर टीम सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में 21 जून के मुकाबले कई मायनों में अहम साबित हुए, जहां कुछ खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से मैच का रुख बदल दिया और अपनी टीमों को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए के मुकाबले की, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने थे। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए इस महत्वपूर्ण मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही और स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधना जल्द ही 17 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद शेफाली वर्मा ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को गति दी। शेफाली ने सिर्फ 15 गेंदों में 31 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और एक शानदार छक्का शामिल रहा। मध्य क्रम में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 24 रन और दीप्ति शर्मा ने 29 रन का योगदान दिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की अनुशासित गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना पाए। शबनम इस्माइल ने 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए। 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने संयम के साथ शुरुआत की। ताजमीन ब्रिड्स ने 40 रनों की अहम पारी खेलकर टीम को मजबूत आधार दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह मारिजान कैप के नाम रहा। मारिजान कैप ने भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण करते हुए शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने महज 45 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 81 रन बनाए और मैच को पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका की झोली में डाल दिया। भारत की ओर से श्री चढ़नी ने 3 विकेट लेकर संघर्ष जरूर किया। दक्षिण अफ्रीका ने 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। मारिजान कैप को उनके प्रदर्शन 81 रन और 2 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब बात करते हैं ग्रुप बी के मुकाबले की, जहां वेस्टइंडीज और श्रीलंका की टीमें आमने सामने थी। ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज की कप्तान हैली मैथ्यूज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये निर्णय पूरी तरह सही साबित हुआ। श्रीलंका की बल्लेबाजी शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दी। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने लगातार सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। कप्तान चमारी अट्टापट्टू की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। हैली मैथ्यूज ने अपनी ऑफ स्पिन से श्रीलंका के मध्य क्रम को झकझोर दिया और 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। पूरी श्रीलंकाई टीम 19.4 ओवर में केवल 98 रन बनाकर सिमट गई। 99 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेला। हालांकि बीच के ओवरों में कुछ विकेट गिरे, लेकिन लक्ष्य छोटा होने के कारण

0: प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है और हमने रिसर्च में देखा भी है कि जहाँ पे हम जैव उर्वरक यूज करते हैं वहाँ पर हम लगभग 50% तक जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है डॉक्टर संगीता पांडे की, आप जैसी देश की बेटियां जो वैज्ञानिक पदों पर हैं, शोध कर रही हैं, अनुसंधान कर रही हैं, ये वैज्ञानिक सोच हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे, खेत खलियानों तक पहुंचे और वो खिलखिलाएं, किसान की मिट्टी बचे, किसान का स्वास्थ्य बचे, किसान का परिश्रम बचे। तो जब बात आती है मिट्टी की उर्वरता की, तो मिट्टी की उर्वरता पे सीधे सीधे अगर पूछा जाए कि जैव उर्वरक का क्या प्रभाव पड़ता है।
0: एक्चुअली मिट्टी की उर्वरकता जो है ये नेचुरली ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या हुआ है कि हमने जब ये रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग शुरू कर दिया है तो इनका जो पॉपुलेशन है वो गड़बड़ा गया है, मतलब अब वो है ही नहीं, तो इसीलिए हमें ये ऊपर से डालने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर हम एक जो स्वस्थ मिट्टी की बात करें तो ये जो जैव उर्वरक है वो प्राकृतिक रूप से ही मिट्टी में उपलब्ध होते हैं। तो जैसे कि कोई भी आप जहाँ की मिट्टी लीजिए,

0: जहाँ पे बहुत दिनों से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आप देखेंगे कि ये सभी जो जीव हैं वो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये जो जैव उर्वरक हमने बनाए हैं, ये जो सूक्ष्म जीव है कहाँ से लिए हैं, हमने इनको मिट्टी से ही निकाला है और फिर लेबोरेटरी में इनका संख्या बढ़ा के एक फॉर्मुलेशन बना के हम फिर फार्मर को पहुंचा रहे।
1: बिल्कुल, यानी कि मिट्टी की उर्वरता निश्चित रूप से अगर हमें बचाए रखनी है तो जैव उर्वरकों का प्रयोग करना होगा। और इसी बातचीत में चलते हुए ये एक और प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि अगर हम जैव उर्वरकों को रोजगार की दृष्टि से देखें कि हमारे जो युवा साथी हैं, किसान भाई बहन हैं, कहीं ना कहीं रोजगार की संभावना भी कृषि में तलाशते हैं, तो जैव उर्वरक और एवं रोजगार इनको आप किस प्रकार से जोड़ेंगे?
0: जैव उर्वरकों में रोजगार की बहुत बड़ी संभावना है और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे 70% जो हमारी आबादी है वो किसी न किसी तरह से किसानी में लगे हुए हैं, तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि जो हेल्दी प्रैक्टिस है, जैसे कि अच्छे तरीके से जो खेती करना होता है जिसमें कि हम जैव उर्वरकों का उपयोग करते हैं, अगर उसमें रोजगार की संभावना ढूंढे, जैसे आपने जीवामृत और इन सब चीजों का नाम सुना होगा, तो जैसे कि कई जगह, बहुत जगह ये यूज हुए, बहुत जगह डेमो दिया गया और देखा गया कि ये बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो जीवामृत क्या है, ये सूक्ष्म जीव ही है, तो इनका क्या हुआ है, जैसे आप क्या कर सकते हैं, मतलब अपने गाँव में भी मान लीजिए एक कोई प्रोग्रेसिव युवा एक ये ले सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि वो अच्छे अच्छे जो बायो फर्टिलाइजर के जो स्ट्रेन है वो ले ले और वो अपने गाँव में ही वो उसको मल्टीप्लाई करके सभी को दे सकता है। और इसकी विधि बहुत ही आसान है, इसकी IRI में हमेशा ट्रेनिंग होती रहती है, ये वेबसाइट पे आता रहता है कि कैसे हम अपने खेतों में ही बायो फर्टिलाइजर का बड़े स्केल पे बना के और हम बांट भी सकते हैं।
1: बिल्कुल, यानी कि जैव उर्वरक मिट्टी की उर्वरता बचाएंगे, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, हमारे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को बनाएंगे, रोजगार की भी इसमें अपार संभावनाएं हैं। आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
2: साथियों, मिट्टी को सोना बनाने का जो उपाय इस कार्यक्रम में बताया वो बहुत ही खास है। अभी आप सुन रहे थे बातचीत जैव उर्वरकों का उपयोग और मिट्टी की उर्वरता, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता पांडे। आप वैज्ञानिक हैं NBPGR में नई दिल्ली से, और इनसे बात कर रहे थे अमित तेवतिया।
3: और इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं हरेंद्र नागर की आवाज में ये रागिनी।

0: भाई हमारे मन की बात इस रागनी ने कह दी, और अब आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं एक और दिल की बात जो हमारे शरीर, मन, हमारे खेत, हमारे परिवार और जहान से जुड़ी हुई है, अन्न से जुड़ी हुई है, रोटी से जुड़ी हुई है।
1: तो कलाकार हैं प्रकाश सिंह भाटी और उनके साथ ही लेकर आए हैं ये रागनी।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रकाश सिंह भाटी और साथियों को। इसी के साथ आज का ये ग्राम संसार कार्यक्रम आप यहीं पर
1: संपन्न होता है और सुनने वाले हमारे जो भाई बहन हैं उनको हम राम राम, राम करते राम। हैं और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को है, अब हिंदी में समाचार सुनिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर का पार्टी में स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। दमकल कर्मी, पुलिस कर्मी और जिला शासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और निकासी अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश

0: के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: मुख्यमंत्री अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौट आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस भयानक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बातार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से तेसेग बटमुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADAK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को राम राम। जी हाँ, सांझ का समय है और अब आपके लिए बहुत सारी जानकारी भी है और जानकारी के साथ साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी, और आपको मौसम की भी जानकारी देंगे क्योंकि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसी पर किसान की जिंदगी निर्भर करती है, दिनचर्या और समय निर्भर करता है। तो फिलहाल जानकारी की बात करते हैं।
1: तो जानकारी हम दिलवाएंगे कार्बन फार्मिंग और मृदा में कार्बन सिंक बढ़ाना, और इस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर RPL यादव, जो कि हेड हैं IFFDC गुरुग्राम में। आइए जानते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार,

0: स्वस्थ रहने के लिए आपको शरीर में जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता होती है, और उसी तरीके से हमें अपने खेतों से अधिक उत्पादन लेने के लिए मृदा में भी जिन जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है तो उसके हिसाब से आप अधिक उत्पादन ले पाते हैं। लेकिन मृदा में कार्बन का भी बहुत बड़ा महत्व है, धीरे धीरे इसकी मात्रा कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है, तो उससे भी उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। कार्बन को एकत्र करने पे सरकार भी जोर दे रही है, और कार्बन का फसलों के उत्पादन पे या इसका क्या महत्व है इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर RPS यादव जी, जो कि इफ्को में कार्यरत हैं और मृदा वैज्ञानिक के तौर पर भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर साहब, हम ये कार्बन की बात करते हैं, कार्बन सिंक, कार्बन बढ़ाओ प्रणाली या इस तरीके से एकत्रीकरण कार्बन का, ये क्या है?
1: सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि कार्बन होता क्या है।
0: जी
1: हमारी जो मिट्टी है उसमें आमतौर पर 1 से 1.5% कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थितियों में अगर आप मृदा परीक्षण के आधार पर देखेंगे तो ये घट करके 0.3 और 0.2 रह गया है। ये हम सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे शरीर में जो प्राण तत्व होता है उसी तरह से ये ऑर्गेनिक कार्बन हर एक मिट्टी के लिए, मृदा के लिए वो एक प्राण तत्व के रूप में है। अब बराबर ये प्राण तत्व कम होता जा रहा है, जैसे कि हमारे किसान भाई देखते हैं कि अगर 40 साल 45 साल पहले की बात करें तो खाद डालते थे और 1 किलो खाद डालने से करीब 13-14 किलो अनाज पैदा होता था, और ये आज की स्थिति में घट करके 3 और 2.5 किलो रह गया है।
0: डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कार्बन का अनुपात मृदा में, ये धीरे धीरे कम क्यों होता जा रहा है, क्या
1: बहुत
0: कारण है?
1: बहुत सही बात है, क्योंकि यही जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कारण है जिससे कार्बन का जो स्तर है वो घटता जा रहा है, तो मैं सारे किसान भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप देखते हैं कि किसान भाइयों की जो आदत है खेत में जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं जितनी जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा और कई 2 गुना 3 गुना खाद डालते रहते हैं रासायनिक खाद। उसके कारण क्या होता है कि हमारी जो जमीन की जो जिसको हम लोग भौतिक अवस्था बोलते हैं उसमें उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। भौतिक अवस्था में अगर हम देखें तो उनके अंदर अम्लीयता आती है, उनके अंदर पानी रोकने की क्षमता होती है वो कम होती है, जो धीरे धीरे से हमने जमीन में कार्बनिक पदार्थ को तो डाल नहीं रहे, सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। इसके साथ साथ पिछले 40-50 सालों में हमारी जमीन के अंदर ये लगातार जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो घटता जा रहा है। तो मेरा किसान भाइयों से यही कहना है कि जब तक हम अपनी जमीन में संतुलन नहीं बनाएंगे, खाद देने की जो प्रक्रिया है उसमें नहीं सुधार करेंगे, तो ये लगातार और घटता जाएगा और हम सबके लिए एक चुनौती होगा, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आपको अनाज चाहिए
0: जी।
1: और आपकी जमीन है वो भी कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम जब तक कार्बन सिंक नहीं करेंगे, अपने कार्बनिक जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको नहीं बचाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आने वाला समय हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है।
0: तो डॉक्टर साहब, कार्बन सिंक करने के लिए कौन कौन सी ऐसी कृषि क्रियाएं हैं जिनको किसान भाई अपना सकते?
1: अभी हमारे जो देश में भी ये सोच आ रही है कि जो कार्बन घट रहा है उसको हम कैसे बढ़ाएं, तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हमारे किसान भाई जितना भी रासायनिक खाद डालते हैं उसको मृदा परीक्षण के आधार पर ही डालें, ज्यादा न डालें। नंबर एक तो इसका बहुत सारा दुष्परिणाम हो रहा है। दूसरा, अपनी जमीन में बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हम लोग कहते हैं कि एक ही फसल, गेहूं है तो गेहूं है, धान है तो धान है, एक ही फसल लेते हैं, तो अपनी फसल का फसल चक्र अपनाएं। क्रॉप रोटेशन अपनाने से ये होगा कि जो हमने अगर गेहूं की फसल की है, इस बार हमने दलहनी अनाज की फसल की है, तो हमें दलहनी फसल लानी पड़ेगी, तिलहनी फसल लानी पड़ेगी, नहीं तो हर फसल एक जमीन के स्तर से अपना खाद लेती रहेगी, पोषण लेती रहेगी और नीचे की जमीन में उसका उपयोग नहीं होगा। आप देखते हैं कि दलहनी फसलों के अंदर जड़ों में गांठें होती हैं, उन गांठों के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो उनका जो काम होता है कि जो हमारी जमीन के अंदर जो फास्फोरस पोटास मिला है उसको घोल करके या मोबिलाइज करके पौधों को तक लाके देते हैं। दूसरा, हमारी जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको भी ला करके पौधों को देते हैं। उसके साथ साथ जब वो मरते हैं या जड़ें सड़ती हैं तो वो अपने आप को भी एक कार्बन की तरीके से जमीन को सौंप के जाते हैं। एक तो हमारा दलहनी फसलों का इनका क्रॉप रोटेशन करें, दूसरा बहुत सारे हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनका हमें किसान भाइयों को उपयोग करना पड़ेगा। बहुत सारा अभियान चल रहा है बायोचार, बायोचार जिसमें कि जो हमारा क्रॉप बेस्ड होता है उसको हम धुआं रहित तरीके से जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती उसे हम जलाते हैं और फिर उनको मिला करके जमीन में लेके जाते हैं। तो ये कुछ तरीके

0: है साथ साथ एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स। अगर हमारी खेत में खेती पेड़ों के साथ करेंगे तो पेड़ों से हमें जो पत्तियों का मिलेगा उन पत्तियों को मिलाकर के जमीन में डालेंगे तो वो कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये कुछ तरीके हैं। अगर अभी बरसात आने वाली है और इस बरसात के आने से पहले अभी हमारी बिल्कुल तैयारी है, खेत एकदम खाली पड़े हैं, तो अभी सही समय के किसान भाई उसमें जो उनके पास गोबर की खाद है या उनको ऑर्गेनिक खाद या बायो फर्टिलाइजर डालने हैं या डिकम्पोजर उनके पास है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि जो हमारी फसल का अवशेष रह जाता है उसको किसान भाई उठा के बाहर फेंक देते हैं या जला देते हैं। यही इसको हम कैसे प्राण तत्व में बदलें, उसके लिए बायो डिकम्पोजर बहुत अच्छी चीज़ है। और इसका अगर हम किसान भाइयों से ये निवेदन है कि उसका घोल बना करके और छिड़काव करते हैं तो 40-45 दिन में जितना भी आपका कूड़ा कचरा होता है उसको सबको जमीन में मिला देता है और वो एक ऑर्गेनिक मैटर के तौर, ऑर्गेनिक कार्बन के तौर पर हमारी ज़मीन को उपलब्ध होता है। उसके मिलाने से एक तो हमारी ज़मीन भी नहीं ख़राब हो रही और जो हम जला रहे थे वो भी, उससे भी बचा जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हमारे किसान भाई ये बचा सकते हैं। दूसरा और मेरा आपसे कहना है कि अभी एकदम खेत खाली हैं और किसानों को गहरी जुताई, जैसे हम लोग पहले कहते थे, आजकल गहरी जुताई कोई नहीं करता, सरफेस पे जुताई कर रहे हैं। तो गहरी जुताई करने से जो नीचे के जो बैक्टीरिया थे हानिकारक, वो मर जाएंगे और एक सोलर, जिसको हम लोग कहते हैं सोलराइजेशन जमीन का होगा, जिससे अवांछित जीव जंतु मर जाएंगे और अच्छे जीवाणु उनको नई तरीके से ब्रीदिंग करना, नई तरीके से उनके अंदर जो सांस लेने की प्रक्रिया वो पूरी होगी
1: और मृदा की जल धारण क्षमता भी,
0: मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ने से ही ये सारे चीजें परिवर्तन होगा। क्योंकि मृदा के अंदर जो कठोरपन आ गया है तो उस कठोरपन के कारण मृदा के अंदर आप देखते हैं कि पानी अंदर जमीन में जाता ही नहीं, सरफेस पे ही रहता है, क्योंकि हमारी जमीन हार्ड हो गई है, बहुत सख्त हो गई है।
1: एक्चुअली जो ये रोटावेटर आया ना, रोटावेटर से केवल ऊपर ऊपर जुताई होती है
0: जी।
1: पहले कल्टीवेटर और मिट्टी पलट हल से करते थे, जब मिट्टी नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती थी, ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती थी।
0: रोटावेटर का जो उपयोग किया जा रहा है मुख्य तौर से जितने भी हमारी हरी खाद है या जो क्रॉप रेजिडू, उसको जमीनों मिक्स करने के लिए, उसको खेत के जुताई से उसका संबंध नहीं है। क्योंकि अगर उसको ज्यादा पलटने के लिए तो आपको डीप प्लॉइंग करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर की जितनी भी घास कचरा या गोबर की खाद या हरी खाद या जिस तरह से आपने किया, उसको ऊपर की सरफेस में मिलाने के लिए कल्टीवेटर का उपयोग करें, ना कि उसको जमीन के अंदर।
1: तो कल्टीवेटर का प्रयोग करें।
0: यस, कल्टीवेटर और मोल्ड वोल्ड प्लाउ जिसको बोलते हैं, डीप प्लाउ करते हैं, वो समर में करना चाहिए। और समर में नहीं कर रहे हैं हमारे किसान भाई, क्योंकि उन्होंने एक फसल कटती है दूसरी फसल की तैयारी कर लेते हैं
1: जी।
0: तो जमीन को एकदम रेस्ट ही नहीं दे रहे, उनकी व्यवस्था है जो उसको बिल्कुल खराब करके रखा है। तो उसमें जब तक हम लोग नहीं सुधार करेंगे तब तक ये जीवांश जो कार्बन है वो हमारी जमीन में नहीं बढ़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था एग्रो फॉरेस्ट्री का
0: जी,
1: तो एग्रो फॉरेस्ट्री द्वारा किस तरीके से कार्बन सिंक बढ़ाया जा सकता है?
0: जैसे कि बहुत सारे पौधे हैं जो कि हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, तो अगर हम खेत की मेड़ों पर, अगर हम किनारे किनारे पे पेड़ लगाएंगे और बीच में हम खेती करेंगे, एक ये तरीका है। दूसरा क्या हम लोग किसान भाइयों को बोलते हैं कि अगर आपने 8 मीटर की लाइन पे अगर आपने पौधे लगाए हैं, पूरी एक लाइन लगाई है, उसके बाद खेती कर रहे हैं, सबसे फायदा यह है कि उनकी जो पत्तियां हैं उनको आप जब छांटते हैं, काटते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो उनका जो मटेरियल आता है
1: जी,
0: पत्तियों को हम फिर सड़ा करके अपनी जमीन के अंदर मिला सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे से पेड़ कम हो रहे हैं। तो जब तक हम इस तरह के पौधों को नहीं लगाएंगे अपनी जमीन पे, हमारे किसान भाई चाहते हैं कि हमें गोबर की खाद मिले या पत्तियों की खाद मिले, लेकिन पेड़ ही नहीं है तो पत्ती की खाद मिलेगी कहां से
1: जी।
0: तो जब तक हम ये एग्रो फॉरेस्ट्री को अपने किनारों, खेत के किनारे में या बीच में नहीं लगाएंगे, तब तक वो आपके लिए पदार्थ नहीं मिलेगा और आप उसको नहीं लगा सकते। तो अगर जिन किसान भाइयों के ऑलरेडी खेतों पे पौधे लगे हुए हैं तो उनकी जब कटाई छटाई करते हैं उनको जलाए नहीं, उनको फेंके नहीं, उनको अच्छी तरह से सड़ा करके जिसमें आप बायो डिकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं और उसको जमीन में डालें, जिससे कि हम कहते हैं कि बैक टू सॉइल, क्योंकि जो भी हमारा जमीन से हमने लिया था पुनः उसको हम जमीन में डालें, जिससे कि हमारी मृदा का, हमारा जो एक श्रेय था उसको हम वापस करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जितना भी हम जमीन से ले रहे हैं उसको हम वापस अपनी मृदा को दें, तभी वो हमारे लिए लगातार अन्न पैदा करती रहेगी।
1: तो डॉक्टर साहब, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इफ्को क्या प्रयास कर रही है?
0: इफ्को ने हमेशा भूमि को एक प्राथमिकता के तौर पर रखा है और शुरुआत से ही हमने बैलेंस फर्टिलाइजर पे काम किया है। और अभी जैसे आप देख रहे हैं कि हमने नैनो फर्टिलाइजर्स का भी लेके आए हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इफ्को ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के साथ मिलकर के नीम की 6 वेराइटीज तैयार की है और इन 6 वेराइटीज में 2 तरीके के, कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम हो रहे हैं। तो ये जो नीम की वैरायटी हैं उनमें बहुत जल्दी फल आते हैं और फल से फिर हमें तेल मिलता है। तेल के साथ साथ उसके अंदर जो मात्रा है तेल की वो करीब 42 से

0: अधिक परसेंट है, और एक एजरेक्टिन कंटेंट जिसको हम कहते हैं कि पेड़ों में कीटाणु नाशक जो ताकत है वो 2000 ppm से ज्यादा है। और हम ये भी काम कर रहे हैं कि किसानों को हर साल करीब 10 लाख से ज्यादा पेड़ हम बांटते हैं। और अभी हमारा अभियान चल पड़ा है कि जो भी किसान भाई पेड़ लगाना चाह रहे हैं, अभी से हम नीम के पौधे, हमारी पूरी तैयारी हो रही है और वो गांव-गांव में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये इस बरसात में मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि इफ्को के द्वारा तो ये पौधे दिए ही जाएंगे, लेकिन अपने स्तर से भी पौधे तैयार कराएं, लगाएं। बहुत सारे कार्यक्रम में पौधों को हमारे किसान भाई ले जाते हैं लेकिन उनकी देखरेख नहीं करते तो उनका परिणाम नहीं आता। तो मैं ये कहता हूं, अगर पेड़ लेके जा रहे हैं तो उनकी रखवाली भी करिए, वो आपके लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे। जो भी पेड़ मिल रहे हैं आप जरूर अपने उनको लगा करके अपने खेत पे लगाइए।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि नीम के अलावा और भी तो पौधे लगाए जाते हैं,
0: तो बहुत सारे पौधे हैं जो कि अभी आप देखेंगे, एक मदार प्लांट जिस पौधा बोलते हैं या जिसको मिलिया डोबिया इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत अच्छा पौधा है और बहुत फास्ट ग्रोथ है। और सबसे अच्छी उसके साथ बात क्या, किसान भाइयों को डर ये रहता है हम अगर खेत में पेड़ लगाएंगे तो हमारी फसल कम हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर धारणा यह है कि छाया से फसल कमजोर हो जाएगी। लेकिन ये जो मिलिया डूबिया जो पौधा है, FRI से कई वैरायटी ऐसी निकली हैं जो कि खेती के साथ हम लोग एग्रोफॉरेस्ट्री में उसको बहुत अच्छी तरह से अपना सकते हैं। दूसरा, उसका जो प्रभाव है, जब हमारी फसल खड़ी होती है रबी की तब उसमें पत्तियां नहीं होती, तो किसान भाइयों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसके बाद जब पत्तियां आती हैं, समर में बहुत पत्तियां आती हैं, उनको छांट करके हम जमीन के साथ बहुत अच्छी तरीके से उनको मिला सकते हैं। और इनके ये भी कहा जाएगा कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करते हैं, तो मिलिया डूबिया को जरूर कॉर्पोरेट करें। दूसरा, एक सूबबूल, सूबबूल के साथ बहुत अच्छी बात है कि उसके पास उसको आप जानवरों को भी खिला सकते हैं, तो उनसे जो फोलियज होता है और फास्ट ग्रोथ होता है और अगेन उनकी भी जो पत्तियां आती हैं उनको जमीन में मिला करके हम बहुत अच्छी तरह से काम ले सकते हैं। और मिलिया डूबिया में 5 साल की उसकी साइकिल होती है, 5 साल में आप उसको काट करके दोबारा भी उसके रोपण कर सकते हैं। और 5 साल में जो आपको लगता है, एक एग्रोफॉरेस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि बरसात कम होती है तो फसल पे नुकसान होता है, लेकिन जब एग्रोफॉरेस्ट्री होती है जहां पेड़ लगे हैं तो उनके ऊपर उसका प्रभाव कम होता है। आने वाले समय में हमारे किसान भाई सुन रहे हैं कि अल नीनो का असर आने वाला है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल है वो हमारे सबके लिए एक जीवन रेखा के तौर पे है। हमें सभी किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जहां भी उनके पास जो भी उपलब्ध पौधे हैं उनको जरूर एग्रोफॉरेस्ट्री में डालें, और जो नुकसान गर्मी के कारण होने वाला है वो पेड़ उसको कम करेंगे और आपका जो एक लॉस है उसको कहीं कहीं तरीके से एग्रोफॉरेस्ट से मीट आउट किया जा सके।
1: जी डॉक्टर साहब, काफी आपने विस्तार से बताया, लेकिन जब हम पेड़ लगाते हैं मेड़ पे या कहीं दूसरी जगह तो उसके नीचे भी कई फसलें ऐसी हैं जिनको उगाया जा सकता है, जैसे अदरक हो गई, हल्दी हो गई,
0: वो एक एग्रोफॉरेस्ट्री का पूरा एक सिस्टम है कि अगर छाया में लगा, आपने घने पेड़ लगाए तो छाया में भी क्या लगा सकते हैं। तो हर एक जगह अलग अलग, अगर आप साउथ में देखते हैं तो वहां पेड़ों के साथ आप काली मिर्च को लगाते हैं जिससे उसमें चढ़ के जाती है, जैसे अदरक हल्दी की कह रहे हैं। बहुत सारा मिट्टी के ऊपर डिपेंड, अगर मिट्टी आपकी हल्की है
1: जी,
0: तो उसमें ये चीजें नहीं चलेंगी, अगर मिट्टी आपकी अच्छी है तो छाया वाली जगह अदरक हल्दी इस तरह की चीजों को लगा करके भी हम लोग पैदावार ले सकते हैं।
1: तो इससे भी कार्बन सिंक बढ़ेगा।
0: कार्बन सिंक बढ़ने के पीछे, क्योंकि हमने ये देख रहे हैं कि कहीं उनमें खाद नहीं डाल रहे, नेचुरल तरीके से हो रहा है, तो जो डिकम्पोजिशन हो रहा है या पेड़ों की पत्तियां जा रही है, तो निश्चित रूप से आपकी जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी।
1: डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो समुद्र है उसमें कार्बन सिंक सबसे ज्यादा है, तो समुद्र से बहुत सी चीजें निकाल के कैसे ऐसे उर्वरक बनाए गए हैं, उनका प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा?
0: क्योंकि आप देखते हैं समुद्र में बहुत शैवाल है, ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, ब्लू एल्गी होती है, और उसको देखने के बाद ये पता चला कि उनका जो रस निकलवा करके दिखवाया, जिसको हम सागर का के नाम से प्रमोट कर रहे हैं, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, अब उनके पास बहुत सारे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, उसके छिड़काव करने से, उसको जमीन में मिलाने से दो तरीके से सागर का मिल रही है, एक तो तरल में भी है, दूसरे दानेदार भी है। तो उसके उपयोग करने से हमारे जमीन के अंदर प्राकृतिक तौर से ही उनके अंदर कार्बन बढ़ता है, और जो केमिकल फर्टिलाइजर के दुष्परिणाम होते हैं उनको भी वो कम करने में सहयोग होती है। तो मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि बहुत सारे सागर का जो, जिसको हम लोग सीवीड एक्सेस करते हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग संस्थाएं बेचती हैं, इफको उसको सागर का के नाम से बेचती है, तो उसका जरूर उपयोग करें। उसके उपयोग करने से हम अपनी मृदा को हेल्दी और स्वास्थ्य बना सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, मुख्य उद्देश्य यही है कि मृदा को किस तरीके से स्वास्थ्य बनाया जाए, चाहे उसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाया जाए, उसमें कार्बन सिंक बढ़ाया जाए, या जो भी हमारी फसलों को पोषक तत्वों की जरूरत होती है उनको बढ़ाना ही मुख्य उद्देश्य है।
0: पोषक तत्वों की उपलब्धता एक अलग मुद्दा है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो देखते हैं कि हमने यूरिया दे दिया तो सारी चीज

0: हमने खाद दे दी, नहीं, यूरिया से सिर्फ नाइट्रोजन ही मिलता है, वो भी आप देखते हैं कि 15-20% से ज्यादा उसकी उपलब्धता नहीं होती है। हमारे किसान भाइयों को ये धारणा बदलनी पड़ेगी कि यूरिया ही एक केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, उसके लिए बहुत सारे आपके डीएपी है, पोटास है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, सल्फर है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी आदमी को हम रोटी रोटी खिलाते रहे उसके लिए और भी दूसरी चीजें नहीं लाएं तो वो स्वस्थ नहीं हो सकता, इसलिए मृदा को स्वस्थ रखना है तो हमें इन सब चीजों को भी डालना पड़ेगा, संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ाना पड़ेगा।
1: जी डॉक्टर आरपीएस यादव जी, आप किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दे कि किस तरीके से मृदा में कार्बन सिंक बढ़ाया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत ही खास जानकारी अभी हमारे साथियों ने सुनी, और कार्बन फार्मिंग और मृदा में कार्बन सिंक कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आरपीएस यादव, और इनसे बात कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: और आइए अब हम सुनवाते हैं उपदेश श्री श्रीपाल मार्शल की आवाज में।

0: जी, श्रीपाल मार्शल ने कितना अच्छा भजन सुनाया, और ये हमारी संस्कृति भाव और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। और अब जल्दी से मौसम की जानकारी दे देते हैं, आगामी 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम के वक्त आपको आंधी तूफान और बिजली चमकने की घटनाएं देखने के लिए मिलेंगी। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब जल्दी से आपको बता दें कि
1: किसानों के लिए जो हम सलाह देने की बात कर रहे हैं कि कैसे वो ध्यान रखें, धान की नर्सरी में बकाना बीमारी के हमले पर लगातार नज़र रखने की सलाह दी जाती है, और अगर कोई लक्षण दें तो देखें अगर अपनी फसल में तो उसके लिए इंतजाम कर लें। और बारिश के अनुमान को देखते हुए किसानों को ये भी सलाह दी जाती है कि वो खड़ी फसलों और सब्जियों की नर्सरी में किसी भी तरह का स्प्रे ना करें। दाल वाली जो फसलें हैं और सब्जियां हैं उनका उनमें नर्सरी में पानी की सही निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा किसानों को ये भी सलाह दी जाती है कि वो मिर्च, बैंगन और अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर लें। शेड नेट का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जाती है, जिससे कि कीटों से फैलने वाली बीमारियों को कम करने और स्वस्थ पौधे तैयार करने में मदद मिले। धूप से भी बचाने का आपको ध्यान रखना होगा।
0: जी, तो ये थी जानकारी मौसम की और मौसम के साथ कृषि उपायों की। इसी के साथ आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हम दोनों को आज्ञा दीजिए, राम राम।
1: और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:30 हो चुके हैं। अब सुनिए गजल पर आधारित कार्यक्रम गजलों के। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको बताएं, गजलों के बादशाह जगजीत सिंह, उन्हें कोई नहीं भूल सकता। उनकी जो आवाज है, जो गाने की शैली है, उसमें हर कोई आज भी रमा हुआ है, वो चाहे कहीं भी हो। लेकिन आज भी पूरी दुनिया उन्हें याद करके उनके गजलों को गुनगुनाते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये गजल।

जगजीत सिंह की आवाज़ हो तो फिर गज़ल अपने आप खूबसूरत हो जाते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है

मोहब्बत अगर करते हो तो बताया ना करो, मोहब्बत जो करते हो बताया ना करो, छिपाते रहो मुस्कुराते रहो, अगर बता दिया तो याद रखना जनाब, ये इश्क की दास्तां किसकी जुबां से क्या निकले, इश्क की कहानी क्या बन जाए, किसे है पता। इश्क करने वाले हमेशा डर डर कर इश्क करते हैं, दुनिया से बचते और बचाते हैं, और इश्क वालों का डर वाकई में उन लोगों के दिलों से पूछिए जिनकी दास्तान दुनिया में जाहिर हो गई। फिलहाल जगजीत सिंह की आवाज़ में एक और गज़ल।

शाम-ए-गम, तन्हा हम, और क्या चाहिए जब आवाज़ जगजीत सिंह की हो और हाथ में वो चाय के कप जिसे याद करते हुए बैठकर हम गज़ल सुनते हैं। और आवाज़ ने वो जादू कर दिया कि गज़ल के शाम को बेहतरीन बना दिया। गज़लों का ये सिलसिला हर रोज़ आप सुनते हैं 7:30 पर। और अब वक्त ख़त्म हो चला है। गज़लों के इस कार्यक्रम से मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार, अपना अपना ख्याल रखिएगा।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 7:45 होने को है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: PLI है ना?
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली एलिवेटेड रिंग रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। सरकार ने 23 सरकारी सेवाओं को समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल किया। रोहिणी में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 35 वाहनों को स्वच्छता बेड़े में शामिल किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा नियंत्रक और महालेखा

0: निरीक्षक ऑडिट के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया और आईआईटी दिल्ली ने निजी बैंक संस्थान के साथ मिलकर दो आधुनिक प्रयोगशाला की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने राजधानी में यातायात जाम कम करने और निर्बाध यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली एलिवेटेड रिंग रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार ने बताया है कि रैंप और इंटरचेंज को मिलाकर इस पूरे नेटवर्क की कुल लंबाई 80 किलोमीटर होगी। शुरुआती चरण में मेटकॉफ हाउस से डीएनडी फ्लाईवे तक लगभग 25 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। निर्बाध यातायात के लिए इस रूट पर सिग्नल फ्री कॉरिडोर और यमुना नदी पर दो नए पुल बनाए जाएंगे। सरकार के अनुसार यह कॉरिडोर रिंग रोड पर प्रतिदिन चलने वाले 5 लाख से अधिक वाहनों के सफर को सुगम बनाएगा। सुचारू यातायात से वाहनों के रुकने का समय कम होगा, जिससे यात्रा का समय घटेगा। यह दिल्ली के प्रमुख हिस्सों के बीच आवागमन और राजधानी की ओवरऑल कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: दिल्ली सरकार राजधानी में सड़क प्रबंधन व्यवस्था को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नो योर रोड परियोजना शुरू करने जा रही है। इस पहल के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की सभी सड़कों को एक विशिष्ट क्यूआर कोड से जोड़ा जाएगा। सरकार ने बताया कि इस क्यूआर कोड की मदद से नागरिक सड़क से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा सड़क के निर्माण, अंतिम मरम्मत और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसियों से जुड़ी जानकारी भी आसानी से उपलब्ध होगी। सरकार के अनुसार परियोजना के अंतर्गत करीब 2,500 क्यूआर कोड 4 चरणों में लगाए जाएंगे, जिससे सड़क संबंधी शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनेगी। दिल्ली सरकार ने 23 सरकारी सेवाओं को समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल किया है। यह निर्णय दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अधिनियम 2011 के अंतर्गत लिया गया है। इस व्यवस्था में शामिल होने के बाद सरकारी अधिकारियों को इन सभी 23 सेवाओं के आवेदन का निपटारा एक निश्चित और सीमित समय के भीतर ही करना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से आम नागरिकों के साथ साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को लाभ मिलेगा। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत श्रम विभाग में फैक्ट्री योजना स्वीकृति 15 दिनों में और दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण केवल एक दिन में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिजली मीटर से संबंधित आवेदन और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि खाद्य व्यवसाय के लिए राज्य लाइसेंस के लिए स्थानीय निकाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र 60 दिनों में जारी किया जाएगा, साथ ही होटल पंजीकरण या संचालन अनुमति 60 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 35 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता बेड़े में शामिल किया। इस अवसर पर श्री वाही ने कहा कि इन वाहनों के शामिल होने से रोहिणी क्षेत्र के कूड़ा प्रबंधन का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि स्वच्छता बेड़े में हाइवा ट्रक, जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली, इम्पर इत्यादि वाहनों को शामिल किया गया है, जिनकी मदद से क्षेत्र में कूड़ा उठाने के कार्य में तेजी आएगी। महापौर प्रवेश वाही ने आज पश्चिमी क्षेत्र के मादीपुर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विशेष स्वच्छता अभियान का नेतृत्व भी किया। इस अवसर पर श्री वाही ने स्वच्छता कर्मियों के साथ मिलकर क्षेत्र में सघन सफाई अभियान चलाया और नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने में सक्रिय सहभागिता की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन भागीदारी से ही स्थायी रूप से सुनिश्चित की जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान श्री वाही ने मादीपुर स्थित वीर सावरकर पार्क में कराए गए सौंदर्यकार और नवीनीकरण कार्यों का भी उद्घाटन किया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC

0: ने अपने कचरा प्रबंधन और स्थिरता पहलों के अंतर्गत कॉपरनिकस मार्ग स्थित सांगली अपार्टमेंट को अनुपम कॉलोनी घोषित किया है। परिषद ने बताया कि यह सम्मान पर्यावरण के प्रतिकूल तौर तरीकों, वैज्ञानिक तरीकों से कचरा प्रबंधन और टिकाऊ भविष्य के लिए समुदाय की मजबूत भागीदारी को देखते हुए किया गया है। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष केशव चंद्र ने बताया कि इस कॉलोनी में कचरे को अलग अलग श्रेणियों में एकत्र करने के लिए 5 विशेष डिब्बे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू कचरे और अन्य अपशिष्ट के संग्रह के लिए 4 अतिरिक्त डिब्बों की भी व्यवस्था की गई है। श्री चंद्र ने इसके लिए कॉलोनी निवासियों को बधाई दी।
1: सर्वप्रथम आप सबों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये 8वीं कॉलोनी है जो कि अनुपम कॉलोनी घोषित हो रही है। हम जो रूल्स हैं उससे भी ज्यादा बढ़ के काम कर रहे हैं और ये इसीलिए संभव है कि रेजिडेंट्स का 150% सहयोग रहता है। तो मैं समो की तरफ से, और ये प्रथम सर्विसेज कॉलोनी है जो कि जिन्होंने ये डिस्टिंक्शन अचीव किया है।
0: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सरकार द्वारा असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में व्यापक स्तर पर पारिस्थितिक इको रेस्टोरेशन वृक्षारोपण कार्यक्रम और वन्यजीव संरक्षण संबंधी विभिन्न पहलें संचालित की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
2: श्री सिरसा ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य दिल्ली की पारिस्थितिकी क्षमता को मजबूत करना, क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्स्थापन करना और देशी जैव विविधता का संरक्षण करना है। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण अभियान देशी और रिज क्षेत्र के अनुकूल प्रजातियों पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक योजना, उपयुक्त प्रजातियों का चयन और दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित किया जा रहा है। श्री सिरसा ने आगे बताया कि दक्षिणी रिज क्षेत्र में 10 लाख से अधिक देशी पौधों का रोपण दिल्ली के हरित आवरण को मजबूत करेगा। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए अभयारण्य में 218 जल स्रोत विकसित किए गए हैं ताकि ग्रीष्म ऋतु और जल संकट की परिस्थितियों में वन्यजीवों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि इन जल स्रोतों को वन्यजीवों के आवागमन मार्गों के समीप रणनीतिक रूप से विकसित किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: दिल्ली भाजपा इस महीने की 26 तारीख को आपातकाल काला दिवस पर जन जागरण बैठक करेगी। यह जानकारी दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने दी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष भाजपा 25 जून को आपातकाल विरोधी जन जागरण बैठक का आयोजन करती है, लेकिन इस वर्ष यह बैठक 26 तारीख को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर जंतर मंतर में आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी ऑडिट के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस फैसले से ऑडिट प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के हित में अदालत में इस मामले का बचाव किया था। श्री सूद ने बताया कि न्यायालय के इस फैसले के बाद सीएजी ऑडिट मामले की पूरी प्रशासनिक कमान उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु के हाथों में आ गई है।
3: बिजली कंपनियों का इसके विरोध में हाईकोर्ट जाना, ये अपने आप में साबित करता है कि बिजली कंपनियां और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार मिली हुई। आज सीएजी ऑडिट से इस मिलीभगत का उजागर हो गया है और हम दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार पारदर्शिता के, ट्रांसपेरेंसी के सबसे ऊंचे मानकों को अपनाते हुए सुनिश्चित करेगी किसी भी दिल्ली वासी पर एडिशनल बिजली का बोझ न पड़े। ये अपने आप में दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार नाकाम थी।
0: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने आज एक निजी बैंक संस्थान के साथ मिलकर 2 आधुनिक प्रयोगशाला की शुरुआत की है। इनमें विनिर्माण से जुड़े अनुसंधान के लिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग लैब और जीव विज्ञान से जुड़े अनुसंधान के लिए बायो इनोवेशन लैब शामिल है। आईआईटी दिल्ली ने बताया कि इन सुविधाओं का उद्देश्य बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में स्टार्टअप और रिसर्च के विकास को तेजी देना है। उन्होंने बताया कि ये सुविधाएं छात्रों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए मददगार होंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में मालवीय नगर और सैदुला जाब हादसों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इन परिवारों को 10-10 लाख रुपए के अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दुख की इस घड़ी में हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है।

विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331048, 0112371717। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी की गृह पत्रिका समाचार भारती के 13वें संस्करण का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह पत्रिका सूचनात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक पत्रिका है। महानिदेशक ने कहा कि समाचार भारती रचना का मंच है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आने वाले समय में इससे और अच्छी पत्रिकाएं निकलेंगी। चीन में रिले चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन कर कई पदक अपने नाम किए हैं। प्रतियोगिता में टीम ने महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एशियन रिले चैंपियनशिप जीतने पर देश की बेटियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इन युवा चैंपियंस ने भारत को गर्व करने का एक और यादगार पल दिया है और नई पीढ़ी को सपने देखने की प्रेरणा दी है। उनका जबरदस्त प्रदर्शन नारी शक्ति और एक ऐसे युवा देश के बढ़ते आत्मविश्वास का जश्न है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली एलिवेटेड रिंग रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। सरकार ने 23 सरकारी सेवाओं को समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल किया। रोहिणी में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 35 वाहनों को स्वच्छता बेड़े में शामिल किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ऑडिट के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया। और IIT दिल्ली ने निजी बैंक संस्थान के साथ मिलकर 2 आधुनिक प्रयोगशाला की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। समय हो चला है फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका का। गीत मालिका इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती, और चुनिंदा गीत कुछ आपके लिए। आइए सुनते हैं और शुरुआत करते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में।

फिल्म लावारिस से आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को। कहते हैं कि मोहब्बत करने वाले मोहब्बत अगर कर लिए तो फिर चाहे लाख तूफान आए या फिर कहें कि लाख सितम कोई करे, ये मोहब्बत कम नहीं होती। गीत में भी कुछ इसी तरीके से कहा गया है। आइए सुनते हैं इसकी।

0: सनम तेरी कसम, इस फिल्म से सुना आपने इस गीत को?
1: सर
0: आशा भोसले की। कहते हैं कि मोहब्बत में नाज नखरे खूब उठाया जाता है और नाज नखरे करने वाले को मनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी भी नहीं।

बिन बात के नाराजगी और कभी अपने आप में इतराने की मर्जी, यही देखने को मिलता है हर जगह। तो फिर गीतों में भी इसे सुनते हैं कि कौन सी नाराजगी और क्यों है नाराजगी और फिर इसे मनाया कैसे जा रहा है। आइए सुनते हैं इस गीत को।

फिल्म लगान से आपने उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में इस गीत को सुना। कई ऐसे गीत भी बने हैं जहां में जहां पर मोहब्बत, प्यार और साथ ही साथ कुछ हंसी ठिठोली भी हो रही है। गीतों में कई ऐसे गीत हुए हैं जो सारे सिचुएशन को, सारे समय को अपने अंदर समेटने के बाद फिर उसे बनाया गया। और फिर ये तो देखिए, इतना कुछ, इतनी चीज़ों के समावेश के बाद भी वो गीत हिट है। क्यों हिट है? क्योंकि उसके बोल, उसके गायक, उसकी धुन, सभी ने कमाल ही कर दिया। और ऐसे गीत जो हम कभी कभार ही सुनते हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। उन्हीं गीतों में से एक गीत ये भी है।

लव स्टोरी से आपने सुना इस गीत को आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में। गीतों का देखिए इतना खूबसूरत सा ये सफर, जिसमें गानों को इतना खूबसूरत बनाया गया, जिसमें एक चुलबुलापन, साथ में प्यार मोहब्बत और इतनी खूबसूरत धुन। इन्हीं गीतों में से एक गीत ये भी है जहाँ बहुत शांत और ध्यान से इस गीत को गाया गया और धुन इसमें जिसका चयन किया गया वो बहुत ही खूबसूरत है। जमाने का फर्क है लेकिन गीत को बहुत खूबसूरती से गाया गया है। सुनते हैं इस गीत को।

श्रेया घोषाल और सोनू निगम की स्वर में आपने सुना इस गीत को फिल्म परिणीता से। गीतों में एक गीत वो भी आया जहां अगर कोई महबूबा सज सवर कर चलती है और उसे कोई कह दे कि ये ऐसा करके तुम कहां जा रही हो तो गीत कैसे बनेंगे, क्योंकि यहां तो नाराजगी भी आ सकती है लेकिन इस गीत में मोहब्बत को बहुत खूबसूरती से बताया गया है। गीतों के बोल भी खूबसूरत और थोड़े हटकर हैं। सुनते हैं इस गीत को।

जलबीन मछली नृत्यबीन बिजली, इसी फिल्म से सुना आपने लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को। कहते हैं कि मोहब्बत करने वाले बहुत जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते, और जब मोहब्बत की बात आए तब खुद कैसे भरोसा कर ले, क्योंकि पूरे जीवन की बात है। और फिर इस गीत में बताया गया कि कैसे कोई उन पर भरोसा कर सकता है। गीतों के बोल भी खूबसूरत और गीत भी हिट हैं। सुनते हैं इस गीत को।

और गीत मालिका फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये आप हमें मेल करके हमें बता सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि वक्त जो है वो यही कह रहा है कि फिल्म संगीत अब यहीं पर थम जाए, और यही होने वाला है क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। मुझे पूजा भारती को इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति, आखिरी नगमा आपके लिए, इसी वादे के साथ कि अगली मुलाकात जल्दी ही होगी। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अब सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय

0: जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए। मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए

0: पास हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
2: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बाघुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
3: वित्त मंत्री डॉक्टर शपथ दसगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे।

0: न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूँ। मैंने

0: इंद्र ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर 94.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 91 points to close at 77,094, while Nifty jumped 90 points to settle at 24,103. In the forex market today, the rupee depreciated by 35 paise to close at 94 rupees 68 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1.2% up at 1,49,360 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.3% higher at 2,39,260 rupees per kilogram a short while ago. With Intakhab's report, Lalema Aneja Dang for Akashwani News.
1: On to sports. In shooting, India added four more medals at the ISSF Junior World Championship, including a gold medal by teenager Pritam Kendre at Suhul in Germany, to strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. In the FIFA World Cup 2026, Argentina will take on Austria in Group J fixture tonight at Arlington in US. The match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. Earlier this morning, Egypt beat New Zealand 3-1 in Vancouver to register their first ever World Cup victory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive fire at Lucknow Coaching Centre in Uttar Pradesh claims lives of 15 people. Chief Minister Yogi Adityanath orders high-level inquiry. Prime Minister Narendra Modi says India is world's fastest growing economy and emerging as a reliable global power. Six Lok Sabha MPs from Shiv Sena UBT join Eknath Shinde-led Shiv Sena. Indian Railways approves deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometres of East Coast Railway. UK Prime Minister Keir Starmer announces resignation amid turmoil in Labour Party. At ISSF Junior World Championship, Indian shooters add four more medals. And in FIFA World Cup, Argentina to take on Austria in Group J fixture at Arlington tonight. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलब हुई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत है और हमारा मुल्क एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट ने एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर तवील रास्ते पर ऑटोमेटिक रेलगाड़ी तहफ़ुज़ाती निज़ाम कवच शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी में जारी टूट फूट के दौरान इस्तीफा दे दिया है। ISSF जूनियर आलमी चैम्पियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने प्रीतम केंद्रे के हासिल करदा सोने के एक तमगे समेत 4 मजीद तमगे जीत कर फहरिस्त में आला मकाम हासिल कर लिया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में आग लगने के एक अलमनाक हादसे में 15 अफराद की जानें तलब हुई हैं, जिनमें से ज़्यादातर की उम्र 16 से 25 बरस के दरमियान थी और ये तालिब इल्म थे। यह हादसा आज से पहर उस वक्त पेश आया जब अलीगंज में पुरानिया इलाके की एक दुकान के ऊपर वाक़े एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसके सबब तलबा में बेचैनी पैदा हो गई। 6 तालिब इल्मों को KGMC लखनऊ में दाखिल कराया गया है। ज़्यादातर अमवात घुटन के सबब हुई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: बताया जा रहा है कि ये आग इंस्टीट्यूट की इमारत के अंदर लगी और तेजी के साथ फैल गई और लोग अंदर फंसे रह गए। ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जहां कोचिंग सेंटर, गेम जोन और शोरूम थे। आग बुझाने वाले अमले की टीमें, पुलिस अहलकार और जिला इंतजामिया के अफसरान जाए हादसा पर पहुंचे और राहत और बचाव की कार्रवाई शुरू की। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। आग बुझाने वाले अमले के अफराद ने दीवार को तोड़ कर और इमारत में दाखिल होकर लोगों को बचाया। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रिजेश पाठक ने कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर मुश्तमिल आला सतह की एक टीम इस मामले की तहकीकात करेगी और آگ لگنے کی وجہ کا تعین کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے

0: कि मुस्तकबिल में इस तरह के अलमनाक हादसे न हों।
1: घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी भविष्य में न घटे इसके कड़ी कार्रवाई करें।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: वो अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों के अपने दौरों को बीच में ही छोड़कर लखनऊ वापस आ गए। उन्होंने जाए हादसे का मुआयना किया और अस्पताल में जख्मियों से भी मुलाकात की। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
3: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में वफात पाने वाले अफराद के तई अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने महलुकीन के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। जख्मियों 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत है और ये एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में कई स्कीमें मुल्क को अव्वलियत देने के मकसद के साथ शुरू की गईं। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही।
4: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: शिवसेना लीडर और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना यूबीटी ग्रुप के 6 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट की उनकी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शिंदे ने मेंबरान पार्लियामेंट संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाव साहब वागचोरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश निम्बलकर की शिवसेना में शमूलियत का खैर मकदम किया। जनाब शिंदे ने कहा कि इन 6 मेंबरान पार्लियामेंट की शमूलियत उस तहरीक के दूसरे मरहले की अलामत है जिसका आगाज जून 2022 में उस वक्त हुआ था जब शिवसेना के 40 मेंबरान असम्बली ने बगावत की थी। उन्होंने कहा कि इस बगावत का मकसद शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे के नज़रियात को महफूज रखना और पार्टी के हिंदुत्व के उसूलों का तहफ्फुज करना था।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
3: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत 100 से ज्यादा मुल्कों को दिफाई आलात बरामद कर रहा है और वो इस शोबे में खुद कफील बनता जा रहा है। नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क की मुसल्ला अफवाज ने सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया जो भारतीय शहरियों की हलाकत के जिम्मेदार थे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत एक बाख्तियार भारत की तामीर के तई पुरअज़्म है और ये काम सलाहियतों और सकाफत दोनों पर जोर देकर ही मुमकिन है। इस मौके पर जनाब सिंह ने ताकीदन कहा कि हजारों बरस से मुल्क की सकाफत इंसानियत को रास्ता दिखाती रही है। उन्होंने भारतीय संतों की सताइश की कि उन्होंने शहरियों के माबैन कौमियत के जज्बात को बेदार किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल की वजारत दिफा में डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल अमीर बारम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजारत दिफा ने बताया कि जनाब बारम ने जनाब सिंह को भारत इसराइल खसूसी कलीदी शराकत दारी के मजमू दायरा कार के तहत भारत इसराइल दिफाई तआवुन को वसत देने के तई इसराइल के अज़म से वाकिफ कराया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने उलान बाटा में आज मंगोलिया के अपने हम मनसब बदसितसक बतमुंक से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस तबादला ख्याल से भारत और मंगोलिया के दरमियान कलीदी साझेदारी की गर्मजोशी

0: पतंजलि सेज योगश्चित्त वृत्ति निरोधः मीन्स द सेसेशन ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड. योगा हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग मेंटल पीस एंड इमोशनल वेलबींग. टुडे यंग पीपल आर फेसिंग एकेडमिक प्रेशर, कैरियर अनसर्टेनिटीज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस एंड कॉन्स्टेंट डिजिटल एंगेजमेंट. दीज फैक्टर्स कैन लीड टू स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड मेंटल फटीग. योगा हेल्प्स बाई कामिंग द माइंड, इम्प्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस एंड एनहेंसिंग इमोशनल रिलायंसेस. प्रैक्टिस सच एज प्राणायाम, मेडिटेशन एंड स्पेशली रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक योग निद्रा हेल्प रेगुलेट स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस एंड ब्रिंग ग्रेटर क्लैरिटी एंड बैलेंस. योगा टीचेज अस नॉट ओनली हाउ टू मैनेज एक्सटर्नल चेंजेस बट ऑल्सो हाउ टू कल्टिवेट इनर स्टेबिलिटी एंड पीस. दैट इज वाई इट इज इंक्रीजिंगली बींग रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड एज ए इफेक्टिव टूल फॉर मेंटल वेलबींग.
1: Mr. Rahul, thank you very much for sparing your valuable time and giving us such insightful thoughts. Thank you, sir.
0: Thank you so much. Thank you.
2: You were listening to a discussion on International Yoga Day, celebration of Bharat's ancient knowledge for global well-being. The participants were Rahul Singh Chauhan, yoga expert, Morarji Desai National Institute of Yoga, and Sarabjit Kaur, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Spotlight.
4: استمعنا أيها السادة إلى برنامج سبوتلايت والآن نقدم لحضراتكم الحديث حول الشعر العربي والهندي.

من عدل والعنينا شبعنا من عناهم ورثوينا.

0: एनडीयू के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई है, 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में खरीद एजेंसियों और उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद की समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य खरीद में तेजी लाने, पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बाजार में जरूरी दखल को मजबूत करना था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
3: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh.

तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज़ में आपने सुना इस गीत को फिल्म बाबुल से। आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ।

दिले नादान तुझे हुआ क्या है। फिल्म मिर्ज़ा गालिब से आपने सुना इस गीत को, सुरैया और तलत महमूद की आवाज़ में। और अगर बात करें पुराने गोल्डन एरा की फिल्म संगीत की, कुछ गीत ऐसे हैं जो हम सब अभी भी गुनगुना रहे हैं। और अभी आपने जिन भी गीतों को सुना वो वाकई बहुत ही खूबसूरत थे। इन्हीं खूबसूरती में एक और गीत ने चार चांद लगा दी, वो ये है।

शमशाद बेगम की आवाज़ में आपने सुना इस गीत को फिल्म आर पार से। फिल्मों में, गीतों में एक अलग सी कशिश है, क्योंकि ये है गोल्डन एरा के फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे पूजा भारती के साथ।

गीतों में हर एक बात को बता दिया गया। और ये देखिए ना, गीतों का जब सफ़र ये शुरू होता है तब हर एक गीत अलग है, हर एक गीत का जो उसकी कहानी है वो अलग है, उसके बोल, उसकी म्यूज़िक, धुन, सब कुछ अलग है और सारे के सारे गाने कर्णप्रिय हैं। अभी आपने जिस गीत को सुना वो लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ में सुना, अजीब लड़की से। सुन रहे हैं आप गीत सुनहरे गोल्डन एरा की फिल्म संगीत मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। आई श्रोताओं, सुनते हैं अगला गीत।

गीतों का सिलसिला चलता जा रहा है और वक्त भी बढ़ता जा रहा है। अभी आपने जिस गीत को सुना वो छैया फिल्म से था, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ में। आइए अगला गीत सुनते हैं, कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा के फिल्म संगीत।

0: जाए।
1: सुरैया के स्वर में आपने सुना इस गीत को फिल्म दिल लगे से। आई श्रोताओं, जब पुराने गीत छिड़ ही गए हैं तो कुछ वो भी गीत सुने जो तरत मोहम्मद और सुरैया ने साथ में गुनगुनाए। आइए सुनते हैं इस गीत को।

मन धीरे धीरे गाए रे। आपने सुना इस गीत को सुरैया और तलत महमूद की आवाज में। सुनते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम गीत सुनहरे में अगला गीत।

आपने सुना लता मंगेशकर और शमशाद बेगम के स्वर में इस गीत को सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम गोल्डन एरा गीत गीत सुनहरे पूजा भारती के साथ। आइए श्रोताओं सुनते हैं अगला गीत, पुराने लेकिन तरोताजा।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बरसात से आपने सुना इस गीत को। गीतों का ये सिलसिला आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि गोल्डन इरा के गीत है जिसमें शब्द का चयन बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है, जिसके धुन बिल्कुल आराम से बनाए गए हैं और जिन्होंने अपने स्वर दिए उसकी खूबसूरती एक अलग ही है। आइए गोल्डन इरा फिल्म संगीत का अगला सुनहरा गीत कौन सा है सुनते हैं।

मदर इंडिया से आपने सुना इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में, सुनहरे गीत गोल्डन एरा के गीत संगीत आप सुन रहे हैं मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और गीत संगीत का ये सफर जहां धुन स्वर और बोल तीनों का संगम लाजवाब हो तो फिर गीत क्यों ना खूबसूरत लगे। तो गोल्डन एरा के गीत के यही तो कमाल है। अगला गीत आपके लिए इसी एरा के

फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना इस गीत को। लाजवाब थे ना ये गीत। ऐसे ही तो कितने सारे गीत हैं उस ज़माने के, आप किसी भी गीत को सुन लीजिए, सारे के सारे लाजवाब, क्योंकि तभी तो उन्हें गोल्डन एरा कहा गया था, क्योंकि वहाँ गीतों का जो सफ़र शुरू हुआ वैसा सफ़र न कभी आया और ना ही कभी आएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त के लोग भी तो बहुत गोल्डन थे, जिन्होंने खूबसूरत धुन बनाए, खूबसूरत स्वर दिए और बोल अति खूबसूरत। उसी ज़माने के इस गीत को आइए सुनते हैं।

फिल्म ताजमहल से आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को। पाँव छू लेने दो फूलों की इनायत होगी, क्या वर्ड है, क्या शब्द हैं। शब्दों का चयन कितना सोच समझ कर किया गया है, एक एक शब्द। शर्म हमसे जो करोगी तो मुसीबत होगी, इतने खूबसूरत शब्द। सारी अदा, सारे वक्त का तकाजा, सब कुछ बयां करते हैं ये गीत। धुन ऐसे जो कानों को सहला कर चले जाए। इसके गीतों के खूबसूरती का क्या कहना। गोल्डन एरा के गीत तो सुन रहे हैं आप गीत सुनहरे में, मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ।

गोल्डन एरा के गीत आप सुन रहे थे मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। जी हाँ, वक्त ख़त्म हो चला है, आखिरी नगमा आपका इंतज़ार कर रहा है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 2 बजने को है, अब हिंदी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष

की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण

0: घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्रों द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने ग्रुप जे के एक मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोलों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का दर्जा हासिल कर लिया है। ग्रुप जे के एक अन्य मैच में फ्रांस का मुकाबला इराक से होगा जो भारतीय समयानुसार अब से कुछ देर बाद 2:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and PM Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the PM's National Relief Fund for the next

0: अभी आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप गीत संगीत। 3 बजने को है, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने, पीड़ित परिवारों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष

0: इनकी सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्र द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. CM Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary, Home, will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and PM Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the PM's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Meanwhile, UP government has ordered a high-level inquiry into the incident. After inspecting the scene, meeting with the victims' families at King George's Medical University, Lucknow, and inquiring about the well-being of the injured, Chief Minister Yogi Adityanath convened a high-level meeting. Expressing outrage over the incident, he directed the strictest possible action against those responsible. Following CM's instructions, a special investigation team was formed to investigate the incident. Its members are tasked with submitting

0: श्रोताओं, AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर गीत और गजल का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 4 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

त्रिशिव पुरेश सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नमाल ने।

0: इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हो चला है 4:20 और 15 सेकेंड। ये वक्त है कार्यक्रम नाद ब्रह्म का, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए SR जानकी रमन की प्रस्तुति।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने एस आर जानकी रमन की प्रस्तुति सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून 2026। सुबह के 4:53 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पांच बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप भद्रासन और अश्वत्थासन के बारे में जानेंगे। 5:20 का वक्त होगा देशभक्ति गीतों का।

5:30 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी, जबकि 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार और 6:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का।

0: 6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना, वहीं 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन, और इसमें आज आप सुन पाएंगे भगवान महावीर के उपदेश। रामचरितमानस का वक्त होगा 6:45 का। छह पचपन पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7:00 का समय होगा हिंदी में समाचार का, जबकि 7:05 का वक्त होगा अंग्रेजी में समाचार का। संगीतिका, जी हाँ, इस कार्यक्रम का आप आनंद उठा सकते हैं 7:10 पर। और अब आपको बता दें सुबह के 5 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामित अभियुक्तों और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इसके लिए विशेष जांच दल गठित की गई है और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
3: भारत जो कर रहा है

0: वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ

0: प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के तहत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। FIH प्रो लीग के तहत लंदन राउंड के पहले मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। 2024 में चीन के हुलूनपुर में हुई पश्चिम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये पहला मुकाबला होगा। फीफा विश्व कप 2026 में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में फ्रांस और इराक के बीच खराब मौसम के कारण मैच रुका हुआ है। हाफ टाइम तक फ्रांस 1-0 से आगे था। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Taking swift action after the tragic fire incident in Lucknow, which claimed the lives of 15 students, the police have registered a case against 6 individuals and arrested 4 of them last night. 4 officials from the Lucknow Development Authority, Fire Department and Electricity Department have also been suspended following directives from CM Yogi Adityanath. In connection with the fire incident in Lucknow, Aliganj police have registered an FIR under relevant sections of the BNS and the Uttar Pradesh Fire Service Act against 6 accused and other responsible persons. The building where the tragic fire broke out yesterday had been issued a demolition order in 2016 over unauthorized construction. However, the order was revoked in less than 2 months. Meanwhile, the state government has ordered a high-level inquiry into the fire incident. A special investigation team, SIT, was formed to investigate the incident and its members will submit their report within 7 days. At least 15 people, mostly students aged 16 to 25, died in the tragic fire yesterday afternoon. The fire broke out at an animation coaching center operating above a shop in the Purania area of Aliganj, triggering panic among students. 9 students were injured and have been admitted to King George's Medical University, Lucknow. Most of the deaths were caused by suffocation. PM Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized that the nation-first spirit has guided India's achievements over the last decade. He noted that current decisions and actions are foundational for the country's future for centuries to come. The PM also recalled his recent participation in the G7 summit, where he observed that global leaders acknowledge India's unwavering commitment to the nation-first principle. The Hajj Committee of India has started inviting applications from prospective pilgrims for Hajj 2027. Releasing the policy, Minority Affairs Minister Kiran Rijiju yesterday said applications can be submitted online through the Hajj Committee of India portal and the Hajj Suvidha app, making the process more flexible, simple and accessible. Indian embassy in Doha has announced that Qatari authorities have confirmed the deaths of 12 Indian nationals in the Ras Laffan incident Sunday night. In a social media post, the

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक ले। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों

की उंगलियों को हाथों से पकड़ ले। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आए, जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारे कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते